उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, बस आपको है इसे थोड़ा ठीक से समझना। जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो कभी घमंड ना करना, और जब उतर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा संभल कर है चलना।

0: किशोर कुमार जी की आवाज में अभी अभी आपने सुना कोरा कागज था मन मेरा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:41 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।
1: हंसो मत, बोलो

उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, थोड़ा ख्याल अपनी जमीन का भी रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन पर तुमको नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन पर नीचे, सारी जिंदगी कोई हवा में नहीं रहता। 5:45 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। ये सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

शक संवत 1948 के अश्वनी मास की 10वीं तिथि के तदनुसार 2 अक्टूबर सन 2026 इस समय सुबह के 5:54 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। 6:55 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। ठीक 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर दस मिनट का समय रहेगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात का। 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। ठीक 8 बजे होंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुन सकेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। कुछ ही देर बाद 6 बजने वाले हैं। सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने

0: 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, pro-active and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office but by public service. The nation is paying homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In her message on Gandhi Jayanti, President Draupadi Murmu said, Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. She paid tribute to Mahatma Gandhi and said his life and ideals are widely respected across the world. She expressed confidence that India is advancing towards the goal of Vikasit Bharat by 2047. A Sarv Dharm Prarthana Sabha will be held at Mahatma Gandhi Samadhi at Rajghat in New Delhi

मोर की इस वीला में 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की

बनती है। साथियों, दोनों महापुरुषों का जीवन एक मिसाल है और दोनों की जीवनी युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन और वंदन करें बापू के प्रिय भजन के साथ।

साथियों, प्रार्थना जहां हमें ये एहसास दिलाती है, ये विश्वास दिलाती है कि इस विशाल सृष्टि में हम उस परम शक्ति की कृपा और प्रेम के पात्र हैं, वहीं ये हमें अपने आप से, हमारे भीतर की उस आवाज़ और एहसास से भी जोड़ती है जिसे हम

सच ही तो है साथियों, जब दुनिया की राहें अनजानी लगने लगें, तब प्रभु का दर ही वो स्थान है जहां इस मन को सच्चा सहारा मिलता है। 6:26 और 5 सेकंड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों कहते हैं कि बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, और जो प्रेम हो जाए उस परम शक्ति से तो फिर छूटे आत्मा के सब बंधन। 6:30 पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों, कहते हैं कि जब सिर पर ईश्वर की कृपा का हाथ हो तो मुश्किल राहें भी मंजिल की ओर ले जाती हैं, और ईश्वर तो करुणा के सागर हैं। भक्ति, भक्ति वो नाव जिस पर सवार होकर मन जीवन को शांति, प्रेम, दया और करुणा के सुंदर सुखद सफर पर ले चलता है। आइए कुछ पल संसार की उलझनों से दूर होकर अपने भीतर उतरने की कोशिश करें। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण।

साथियों, कहा गया है कि रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण और अर्पण में। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना, इसे अयोध्या कांड से दिया गया था। और इसी के साथ कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, क्योंकि अब संस्कृत

हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे और समाचारों के उस पार आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात में 7:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभा हो रही है। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। इससे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। शास्त्री जी किशोरावस्था में ही देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे और वर्ष 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने लोगों को अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने, अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी देश की आवश्यकता के अनुसार सुधारों पर काम करना चाहिए। नई दिल्ली में कल संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को नमन किया है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक दिवसीय विश्व कप 2027 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप का आयोजन 2 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच किया जाएगा। भारत अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

साथियों कहते हैं कि जीवन में बदलाव हमें दर्द जरूर देता है, ये बात सही है, लेकिन यही दर्द हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। और जीवन में आगे भी वही व्यक्ति बढ़ता है जो अपने इस दर्द को अपनी शक्ति में, अपने संघर्ष में बदलना सीख लेता है। 7:24 पर यह है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड और गोल्ड स्टूडियो से गोल्ड सुप्रभात में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और आगे बढ़ते हुए आपको हम ये बात जरूर बताना चाहेंगे

0: क्योंकि आज वैसे तो राष्ट्रीय अवकाश है और हम सभी जानते हैं कि आज पूजनीय बापू और श्रद्धेय शास्त्री जी की जयंती है और आज उन दोनों की समाधि यानी राजघाट और विजय घाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर कुछ यातायात प्रबंधन कुछ बदलाव किए गए हैं और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को ध्यान में रखकर आगे निकलिएगा और बढ़िएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और आपको ये बताते हैं कि आज कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके साथ रहेंगे। तो 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली का पहला सेगमेंट लेकर आपके साथ रहूंगी मैं और उसके बाद 9:10 पर स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा और 9:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे सेगमेंट में रिखा होंगी आपके साथ। और आज का दिन बहुत खास है, आज बापू की और शास्त्री जी की जयंती तो है ही है, उसके साथ साथ आज डॉक्टर शंकर शेष की भी जयंती है और आज पुण्यतिथि है के कामराज की। इन सब के बारे में हम बात करेंगे म्यूजिकल दिल्ली में। और आज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है और 2 से 8 अक्टूबर के बीच में एंटी अनटचेबिलिटी वीक भी मनाया जा रहा है और वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाया जा रहा है। तो इन सब के बारे में जानेंगे हम म्यूजिकल दिल्ली के पहले और दूसरे सेगमेंट्स में। और 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर होगा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद और 11:25 पर प्रोग्राम तस्वीर में हम आपको आज गुजरात में पोरबंदर और अहमदाबाद लेकर चलेंगे। 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर। दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज अभिनेत्री आशा पारेख जी के बारे में बात करेंगे। दोपहर 2:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम संगीत.com और शाम 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी में आज की कहानी होगी नैना रॉन्ग नंबर। शाम 6:30 आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा। रात 8:10 पर मधुरिमा। रात 10:30 हर सिंगार और रात 11:40 पर गीत मेरे मन मीत। और आज का दिन खिली धूप के साथ आपका स्वागत करता रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और एक और गीत के साथ फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। इसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे और उसके बाद 8:45।
1: हम जिस प्रकार का जीवन चाहते हैं, अपना व्यवहार और मनोदृष्टि बदल कर उसका निर्माण करना हमारे हाथ में है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ पवित्रता है वही निर्भयता है। गांधी जी की ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो व्यक्ति को अच्छे बुरे ज्ञान को सही रूप से प्रदान कर सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अहिंसा और सत्य की शक्ति से महात्मा गांधी ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज का ये दिन हम बापू को समर्पित करते हैं और उनके सिद्धांतों को याद करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, अर्थात शांति, अहिंसा, करुणा और सत्य। बापू सत्य के सभी सद्गुणों को आधार मानते थे। उनका मानना था सत्य बोलना चाहिए, जीवन के सभी पहलुओं में सत्य की तलाश करनी चाहिए और ईमानदारी और निष्ठा से जीवन जीना चाहिए। बौद्ध धर्म की प्रार्थना के साथ शुभारंभ होगा कुछ एक पलों में। बापू ने एक बेहतरीन समाज और देश के निर्माण के हर पहलू को साथ साथ काम किया। बापू ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर संयम और करुणा दोनों का अनुपालन करने की सलाह दी और स्वयं उनका पालन करके मिसाल कायम करते हुए नेतृत्व प्रदान किया। आइए सम्मिलित होते हैं सर्वधर्म प्रार्थना सभा में। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की प्रार्थना।

राजघाट परिसर में आगमन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। हौले कदमों से चलते हुए आगे बढ़ते हुए बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंच चुके हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपने पुष्प लिए, गुलाब की पंखुड़ियां ली, अपने श्रद्धा पूर्वक नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर बापू की समाधि की परिक्रमा कर रहे हैं। बापू कहा करते थे, मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूँ, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूँ। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म में पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, सभी का अभिवादन किया, हाथ जोड़कर सभी को नमन किया और हाथ जोड़ अतिथियों का भी स्वागत किया और राजघाट परिसर से प्रस्थान कर गए।

0: प्रार्थना।
1: हाय प्रार्थना, तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है। हे मेरे
0: परमेश्वर
1: ईश्वर, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि है।
0: तेरी।

0: ज्ञानी ओ आलोक पुत्र अज्ञानी।
1: मैं उसी शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आप मेरा विश्वास कभी ना डगमगाए। ईसाई धर्म की प्रार्थना।
2: मसीह का पवित्र सुसमाचार। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिख्यात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंखें बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लटकर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने भैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं।

0: जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन।
1: आवास और शहरी मामलों के मंत्री और राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बापू को अपनी श्रद्धा सुमन आज यहाँ अर्पित किए। और अब हिंदू धर्म की प्रार्थना अर्थात पवित्रता के साथ की गई अर्चना।
0: ओम

भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम।

सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवह निनयन।

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणताः नियतास्मता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय।

0: प्रभाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम् जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: हमेशा सभी से अच्छी और मीठी बातें किया करें ताकि सामने वाला शख्स आपसे हमेशा खुश रहे। इस्लाम धर्म की प्रार्थना।
2: इन्नवल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या ये नेमत नहीं है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हमारा जिस्म, डीएनए एक लिविंग कोड, 86 अरब न्यूरॉन्स वाला दिमाग, आ ब्लड पंपिंग हार्ट, बीमारियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम। सवाल यह है कि ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल नेटवर्क के साथ जिंदगी हमें किस मकसद के लिए मिली? वमा खलकना समा वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा लाइबीन। और हमने आसमान और जमीन में और जो कुछ उनके दरमियान है इसको सिर्फ एक खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। मतलब ये दुनिया टाइम पास नहीं है, एक डिजाइन सिस्टम है। हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए ये जिंदगी मिली है। इबादत एक पूरी जीवन शैली का नाम है। अगर पूरा जीवन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें, हराम से बचें, हलाल अपनाएं, तो हमारा हर कदम इबादत बन जाता है। सिर्फ इबादत करना ही लाइफ पर्पस नहीं है बल्कि अच्छाई, जस्टिस, सच्चाई, नेक अमल, खुद को बेहतर बनाना, नेचर के खिलाफ ना जाना, इंसानियत निभाना और अपने क्रिएटर को पहचानना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें हर चुनौती, हर बदलाव में आजमाए के अमल के हिसाब से कौन बेहतर है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसं व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या इंसानों ने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ लौटना नहीं है? याद रखो, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदही तय है। ये संसार एक टेस्ट ग्राउंड है जहाँ हमारी हर चॉइस, हर स्ट्रगल, हर दर्द हमारे फाइनल स्टेटस को तय करती है। इसीलिए हमें जिम्मेदारी, इख्तियार, अमानत, इल्म व शऊर के साथ जस्टिस, इस्लाह और भलाई कायम करने का हुक्म दिया। और ये ख्याल कि मुझे अपने क्रिएटर के पास जाना है, जवाबदेह होना है, ये जीवन के हर छोटे बड़े फैसले को मुतासिर करता है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लअब व इन्नद दाअल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। और ये दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है और बेशक आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। काश सब ये बात समझ लें। लोगों को गुमान है कि ये यूनिवर्स तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ये तो बस अपने आप ही वजूद में आ गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर यूनिवर्स एक इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स कौन है? अगर कोड है तो कोडर कौन है? अगर डिज़ाइन है तो डिज़ाइनर कौन है? अगर ये रूल्स हैं तो रूल्स मेकर कौन है? यकीनन अल्लाह है। और हमारा इस दुनिया में आना भी कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्योर पर्पस है। इसीलिए इबादत के साथ साथ गौर व फिक्र करने की भी दावत दी गई है। अफला तअक्लून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? अफला यंजुरून, क्या तुम गहराई से नहीं देखते? अफला यस्माउन, क्या तुम सुनते नहीं? अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते?

0: लिहाजा कामयाब जिंदगी सिर्फ इल्म, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, दौलत, वेल्थ, शोहरत हासिल करना नहीं है, बल्कि जिंदगी के इस इम्तिहान में अंत तक एक बहुत बड़ी जवाबदेही के लिए खुद को तैयार करना है और अपनी सलाहियतों को इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। यही इस आयत वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यही इस आयत का अजीम पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: जैन धर्म का मुख्य वाक्य अहिंसो परमो धर्म, यही बाबू का कथन भी। जैन धर्म की प्रार्थना।
2: सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासिनम, अहिंसा जयतु शासिनम। ॐ नमो अरिहंताणं, ॐ नमो।

छायानं नमो लोए सव साहूना एसो पंच नमो कारो सव पाव पनासिनो मंगलानंच सवे सिंह पढ़े महावै मंगलं ओं भूर्भुवः स्वः तस्

आचार्य सुशील गुरुवे नमः। भारतवर्ष सिद्धा जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धं मम दिशन्तु। चैता भारतवासं चक्रवर्ती महीडियो

0: अर्हम गाए जा ओम, अर्हम गाए जा, अर्हम नरहम ग ग करके, अर्हम ग ग करके मन को विमल बनाए जा ओम, अर्हम गाए जा। सिद्धेश अरिहंते शरणं पवज्जन्ति, सिद्धे शरणं पवज्जन्ति, साहु शरणं पवज्जन्ति, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जन्ति। चार शरणे दुख हरणे और इन शरण।
1: राजघाट में आगमन भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन जी का। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, अहिंसा ही धर्म है। आपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रणाम।

किया, नमन किया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, गुलाब की पंखुड़ियों अर्पित की, पुनः नमन किया, प्रणाम किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बापू की समाधि की परिक्रमा की। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उनकी हर भूल को उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने परिक्रमा की, पुनः प्रणाम किया, नमन किया,

वे हाथ मोरा बेली ही बोर बेली पेरूर गेदोल को वाप वे हाग बोरा वे हू एली वे हाय गोली वे सु

0: ने सभी का अभिवादन किया और राजघाट परिसर से प्रस्थान कर गए।
1: Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen.
2: Russian Parsi prayers.
0: अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य, यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। पारसी धर्म की
2: प्रार्थना। के खुदा बरखल फरिश्ता दे इन हस्त के जरतोस्त ओवर दे हस्त दिन दिन ए जर्थोस्त दीन और मस्त दादे जर्थोस्त स्पीतमान यथाउ वैर्यो यथा रथुस असा चित अचा वंगयोस दस दामनिंगो शौत्र नाम इंग्योस मस्दाय शौत्रम चा औराय आयम दरेगोप्यो ददत वास्तारेम यथाउ वैर्यो यथा रथुस असा चित अचा वंगयोस दस्ता मनिंगो शौत्रेन नाम इंग्योस मस्ताय शौत्रेम चा औराय आयम दरेगोप्यो ददर वास्तारेम अशेम भव वैष्टेम अस्ति उस्तास्ति उस्तामाय यत अशाय वैष्टा अशेम। नाउ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश मे औरा मस्द बी प्लीज इन द नेम ऑफ गॉड द बेनिफिशिएंट द फॉरगिवर द काइंड May there be praise for the name of Auramazda, who has always existed, exists, and will always exist. One of his name is God, the beneficent spirit, the most spiritual among the spiritual ones. One of his name is Auramazda, the omniscient Lord.

0: is the Lord, great, mighty, wise, creator, nourisher, protector, supporter, righteous, forgiver, holy dispenser of all powerful good justice. In Hindi, it is anuvad in Hindi. Parmeshwar ke naam par jo atyant dayalu, shamashil aur krupalu hai, Aura Mazda ke naam ki stuti ho, jo anadi kal se vidman hai aur anant kal tak vidman rahenge. उनका एक नाम है परमेश्वर दयालु आत्मा जो सभी आध्यात्मिक सबसे अधिक आध्यात्मिक है. उनका एक नाम है औरमज़दा स्वर्गना प्रभु. वह प्रभु है महान शक्तिशाली बुद्धिमान सृष्टिकर्ता पालनहार रक्षक समर्थक धर्मी क्षमाशील सर्वशक्तिमान और न्याय के पवित्र दाता. आमीन.
1: संपूर्ण संसार का एक ही ईश्वर है और वही सर्वत्र व्याप्त है. सिख धर्म की प्रार्थना.
2: नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए मेरे राम राय मेरे राम राय

अपे करने हारा, चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। खुद पावे ता नाम जप पावे, सुख तेरा दिता ली है मेरे राम राय, मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रही है। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, कहा बेकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपे सर डालाए, कहा बेकुंठ जय कीर्तन तेरा, हुआ पे सर डालाय। सिमर सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन हो निहाला, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। खुद पावे ता नाम जप पावे, सुख तेरा दिता ली है मेरे राम राय, मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रही है। मेरे राम राय, मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रही है। जो पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिताली है। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वार।

0: गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अरिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: अहिंसा आत्मिक बल का प्रतीक है। हिंसा त्याग कर हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। गांधी विचार।
2: Continue to ask God to give me the strength not to be angry with my accusers, but to be prepared even to die at their hands without wishing them ill. I claim that Hinduism is all inclusive. Religion can be defended only by the purity of its adherents and their good deeds, never by their quarrels with those of other faiths. For God-fearing man, all religions are good and equal. Only the followers of different religions quarrel with one another and thereby deny their respective religions. The essence of true religious teaching is that one should serve and befriend all. I learned this in my mother's lap. Free India will be no Hindu Raj. It will be Indian Raj. Based not on the majority of any religious sect or community, but on the representatives of the whole people, without distinction of religion. Hindi Anuvad, Gandhi Vichar. मैं सभी धर्मों के महान संतों और पैगंबरों में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा कि वह मुझे सहनशीलता दे, ताकि मैं उनके प्रति क्रोध न रखूं जो मुझे गाली देते हैं, बल्कि उनका भी अहित ना सोचते हुए उनके ही हाथों मरने को तैयार रहूं। मैं दावा करता हूं कि हिंदुत्व सबका समावेश करने वाला है। धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों के आचरण की पवित्रता एवं नेक कामों के द्वारा ही की जा सकती है। अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा करके कतई नहीं की जा सकती। भगवान से डरने वाले लोगों के लिए सब धर्म अच्छे और समान हैं। विभिन्न धर्मों के मानने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो वे अपने अपने धर्म को ही नकारते हैं। सच्ची धार्मिक शिक्षा का सार यही है कि इंसान सबकी सेवा करें और सबके साथ मैत्री रखें। मैंने यह अपने माता की गोद में सीखा है। स्वतंत्र भारत हिंदू राज नहीं होगा, वह भारतीय राज होगा जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर आधारित नहीं होगा, अपितु धर्मों में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी लोगों के प्रतिवेशियों का राज होगा।
1: गंधर्व महाविद्यालय की प्रस्तुति बापू का प्रिय भजन।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राजघाट परिसर में बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए आपके साथ हैं श्री मनोहर लाल।

बापू को नमन किया, पुष्प गुच्छ अर्पित किए, पुनः प्रणाम किया, नमन किया, पुष्प अर्पित किए और बापू की समाधि की परिक्रमा की। बापू कहा करते थे, आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं और आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने परिक्रमा की, नमन किया, अखंड ज्योति प्रज्वलित है उन्हें भी नमन किया। सभी को नमन करते हुए आगे बढ़ रही है। सर्वधर्म प्रार्थना सम्मिलित, सभी को उन्होंने नमन किया, सभी अतिथि गणों को नमन किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया सभी का और अपना स्थान ग्रहण किया।

और अब बापू की प्रिय रामधुन। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सभी को नमन किया, हाथ जोड़ अभिवादन किया और अतिथियों को भी नमन किया, हाथ जोड़ अभिवादन किया सभी का और राजघाट परिसर से प्रस्थान कर रही हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राजघाट परिसर से प्रस्थान कर रही हैं।

0: पूज्य बापू का स्वप्न पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना, राजघाट समाधि समिति द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का शुभारंभ बुद्धिस्ट प्रार्थना से और समापन रामधुन से हुआ। प्रार्थना सभा में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं प्रीति मोहन, कार्यक्रम अधिशासी सचिन कुमार, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, हेमराज मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
1: अभी आप गांधी समाधि राजघाट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रही थी प्रीति मोहन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 20 मिनट होने को हैं। चार
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश

पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एविएशन के सिक्योरिटी अमल को ज्यादा सहल और तेज रफ्तार बनाने की खातिर कई असलाहत शुरू की हैं। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिद अरब अमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तेल अवीव जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। दिलेर भारतीय पायलट स्मित मच्छार को इलाज के लिए अबूजबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिले कबूल हल निकालने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने खवातीन के रिकर्व तीर अंदाजी टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का अहतमाम किया गया।

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फूल नजर किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अमन और अदम तशद्दुद का महात्मा गांधी का पैगाम दुनिया के कई हिस्सों में जंग और महाजाराई के माहौल में और भी ज्यादा इफादियत रखता है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की जिंदगी और उनकी नजरियात को दुनिया भर में बहुत एहतराम की नजर से देखा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर कहा है कि महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी सदाकत, अदम तशद्दुद, रवादारी और खिदमत का नमूना रही है। जनाब मोदी ने कहा कि बापू की तालीमात हर दौर में इंसानियत की राह दिखाती रहेंगी। जनाब मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की कि महात्मा गांधी का लाफानी पैगाम हम वतनों को बेहतर समाज और विकसित भारत की जानिब पेशकदमी में रहनुमाई करता रहे। बाबाए कौम महात्मा गांधी का योम पैदाइश मनाने के लिए गुजरात में कई सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल पोरबंदर में महात्मा गांधी की जाय पैदाइश कीर्ति मंदिर में एक दुआया जलसे में शिरकत करेंगे। इसी तरह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भी सभी मजहबों के दुआया जलसे का अहतमाम किया गया है। पूरी रियासत में बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई की मुहिम भी चलाई जा रही है। इधर रियासती सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर खादी और पॉली वस्त्र तैयार करने पर 30% की खसूसी मार्केट तरगीबी इमदाद का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ये फैसला मुल्क के लिए खादी, फैशन के लिए खादी, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए से मुताबिकत रखता है, जो 31 दिसंबर 2026 से नाफिज होंगे। इस माली तरगीब का फायदा सीधे गाहकों तक पहुंचेगा, जिन्हें सरकारी खादी फरोख्त मराकज पर खसूसी रियायत मिलेगी। आने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान मकामी मसनूआत की फरोख की हौसला अफजाई के लिए गुजरात के बड़े शहरों में खुसूसी खादी नुमाइश और फरोख्त मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: आज गांधी जयंती के मौके पर पूरे मुल्क में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जा रहा है। इनमें हुक्मरानी की बड़ी तब्दीली वाली असलाहत और इकदामात पर गौरखोज किया जाएगा, जिनका मकसद पंचायतों को मुस्तहकम बनाना, अवामी खिदमात में बेहतरी लाना और मुल्क के देही इलाकों में मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। देही तरक्यात की वजारत ने कहा है कि इन खसूसी प्रोग्राम ग्राम सभाओं के साथ साथ अवामी मनसूबे की मुहिम 2026-27 सबकी योजना सबका विकास का भी आगाज किया जा रहा है। वजारत के मुताबिक मजकूरा मुहिम के तहत ग्राम पंचायतें लोगों की शमूलियत और शवाहिद पर मबनी मनसूबाबंदी के जरिए माली साल 2027-28 के लिए अपने अपने ग्राम पंचायत तरक्याती मनसूबे तैयार करेंगी।

0: अवामी मंसूबे की मुहिम पर मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में 2018 से अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके ज़रिए पंचायतों को जामे मरबूत और शमूलियत वाले तरक्याती मंसूबे मुरतब करने में सहूलत होती है। 2,55,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें अपने अपने मंसूबे तैयार करके इन्हें ई ग्राम स्वराज पर अपलोड करती हैं। ग्राम सभा में होने वाले तबादले ख्याल से शहरियों और मुकामी नुमाइंदों को सरकार की अहम स्कीमों और इकदामात के फ़ायदों और इनके नफाज का जायज़ा लेने का मौका मिलेगा। साथ ही वो मुकामी ज़रूरियात और किसी तरह की कमी की निशानदेही कर सकेंगे और अपने अपने गाँव की तरक्की के लिए तरजीहात के बारे में गौर व फिक्र कर सकेंगे। आज ही साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के 122वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1904 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए थे, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। लाल बहादुर शास्त्री कम उम्र में ही मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में शामिल हो गए थे और उन्होंने 1921 में अदमताउन तहरीक में हिस्सा लिया। मुल्क की आज़ादी के बाद वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने से पहले शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कौमी राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल विजय घाट जाकर गुलहाए अकीदत नज़र किए। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर विजय घाट जाकर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खुसूसी सीरीज़ के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि स्कीम के ज़रिए किस तरह इस नज़रिए को अमली शक्ल दी गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: रामेश्वरम में नव तामीर शुदा पामबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समंदरी पुल है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 6 अप्रैल को रामनवमी के पवित्र दिन किया था। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये रामेश्वरम की पवित्र धरती के लोगों को मुबारकबाद देने का मौका है।
2: The new Pamban bridge to Rameswaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
1: इससे पहले तारीखी पामबन श्रीलंका तक तिजारती कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से तामीर किया गया था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मदुरई डिवीजन के रेलवे अफसर ने बताया कि पुल के ढांचे की हिफाजत के लिए सिर्फ 99 अप्रोच गर्डर्स की तामीर में ही 3,000 टन से ज्यादा फौलाद का इस्तेमाल किया गया है। IIT मद्रास और IIT बॉम्बे के माहिरीन ने नवंबर 2024 में इस डिज़ाइन की जांच की। पामबन पुल उन बड़े समंदरी तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रहा जिन्होंने धनुष कोड़ी को तबाह कर दिया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम कर रहे लोगों के लिए हवाबाजी के हिफाजती तरीक़ेकार को आसान और सहल बनाने के लिए सिलसिलेवार इस्लाहात शुरू की हैं। नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने और कारोबार में आसानी से मुतालिक इस्लाहात के बारे में मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन तब्दीलियों का मकसद तरीक़ेकार को आसान बनाना और सिक्योरिटी के आला तरीन मेयार को बरकरार रखते हुए जवाबदेही पर मबनी हुक्मरानी की जानिब मुंतकली है। वजारत ने बताया कि BCAS ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के तरीक़ेकार को आसान बनाया है। ये तरीक़ेकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्तों, दस्तावेजात दाखिल करने, डिजिटल जांच और वेरिफिकेशन, डिजिटल इजरा और चेहरे बायोमेट्रिक तस्दीक को मुमकिन बनाता है। ये सिस्टम सभी 169 हवाई अड्डों पर मुश्तरका प्लेटफॉर्म के तौर पर नाफिज किया जा रहा है। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तलबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। तफ्तीशकार मस्कूरा प्रवास के कॉकपिट में भारतीय पायलट इस्मत मच्छार पर ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट के हमले के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। इससे कबल सऊदी अरब के हुकाम ने इस वाक़े की इब्तदाई छानबीन की थी। मस्कूरा हवाई जहाज को बुध के रोज वहाँ के तबूक शहर में इमरजेंसी हालात में उतारा गया था। वजारत खारजा ने कहा है कि वो फलाई दुबई प्रवास के बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन इस्मत मच्छार की सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब में तबूक के एक अस्पताल में इब्तदाई इलाज मुआलजे के बाद कैप्टन इस्मत को तिब्बी देखभाल और उनकी सेहतयाबी की खातिर अबू जबी ले जाया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय सफीर ने अस्पताल में कैप्टन इस्मत से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इससे कबल सफीर मौसूफ ने उनके अरकान खानदान से भी मुलाकात की थी और उनकी सेहतयाबी और खैरवाफियत के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। वल्दाई फोरम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ बातचीत के दौरान जंग के खात्मे का मौजू बाकायदगी से उठाते रहे हैं और उन्होंने पुरअमन तस्फिये में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। सदर पुतिन ने भारत की सिफारती पोजीशन को गैर जानबदाराना करार देते हुए कहा कि वो मुखासिमत के खात्मे में गहरी दिलचस्पी रखता है। मिजोरम में कल सियालसुक के नज़दीक एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। इनमें पीआईबी इम्फाल के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एंगम पामे, डीडी न्यूज आइजोल के डायरेक्टर नामपी बो मारिनमई और सीबीसी आइजोल के एमटीएस एच लियानवाला शामिल हैं। ये लोग जिस कार में जा रहे थे वो खाई में जा गिरी। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णो ने सोगवार कुंभों से ताजियत का इजहार किया है। एशियाई खेलों में भारतीय ख्वातीन की रिकर्व तीरंदाजी टीम ने अपना पहला सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। भारतीय टीम ने आज खेले गए सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में आलमी चैंपियन जनूबी कोरिया को 3-5 से शिकस्त दी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से मगरबी बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में 3 साल रॉयल बंगाल शेरनी की कामयाब मुंतकली। मगरबी बंगाल के पहले शेरों के तारुफ नो प्रोजेक्ट का आगाज है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से फ्लाई दुबई वाकये में लोगों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट की सताइश की खबर को नुमाया जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय पायलट स्मित मच्छार ने 9/11 जैसा सानहा होने से बचा लिया। इसी अखबार ने दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम के नफाज से मुतालिक खबर को खसूसी तौर पर जगह दी है। इसके तहत PUC नहीं तो ईंधन नहीं का उसूल नाफिज किया जा रहा है और इसके नफाज के लिए दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर महकमे ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक खुद कार सिस्टम लगाया गया है। वहीं दूसरे अखबार ने महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में पिकनिक पर गए 8 तलबा की बुहर अरब में डूबने से मौत की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। यह हादसा जुमेरात के रोज़ रायगढ़ ज़िले के दीवे आगार में पेश आया।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एविएशन के सिक्योरिटी अमल को ज्यादा सहल और तेज रफ्तार बनाने की खातिर कई असलाहत शुरू की हैं। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तलबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। दिलेर भारतीय पायलट इस्मत मच्छार को इलाज के लिए अबू जबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

जी हाँ दोस्त, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जिसे 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रस्ताव के अनुसार शुरू किया गया। ये दिन शिक्षा और लोगों में जागरूकता के जरिए अहिंसा का संदेश फैलाने और शांति, सहनशीलता, समझ और अहिंसा की संस्कृति की इच्छा को पक्का करने का एक मौका है। और आज उसी अहिंसा के पुजारी श्रद्धेय बापू को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं हम। साथ ही हम मना रहे हैं आज धरती के लाल बहादुर शास्त्री जी की 122वीं जयंती। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था, और वो केवल 1.5 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया, और संघर्ष इस तरह उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। लेकिन इसी संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ा रोल निभाया, और अपनी 30 वर्षों से अधिक की समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी उदार

निष्ठा और क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़ संकल्प, सहनशील और जबरदस्त आंतरिक शांति वाले और आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच एक ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वो न केवल दूरदर्शी थे बल्कि वे देश को आगे प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले प्रथम व्यक्तियों में भी शामिल रहे। और आज इन दोनों महान विभूतियों को याद कर उन्हें नमन कर रहे हैं हम 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर 8:51 और 6 सेकंड। ये है म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और साथियों, आज दोनों ही जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं उनके समाधि स्थलों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर कुछ डायवर्जन्स किए गए हैं, कुछ खास ट्रैफिक इंतज़ाम किए गए हैं। और बार बार ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप कुछ सड़कें, कुछ मार्ग जिन्हें डाइवर्ट किया गया है उनका इस्तेमाल करने से बचें। ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें उस तरफ, और अगर निकलना ही पड़े तो फिर आप दिल्ली मेट्रो या फिर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आप बाहर निकलें तो इन रोड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर निकलें तो आपको भी आसानी होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 8:52 पर म्यूजिकल दिल्ली के साथ किशोर दा की आवाज में बेहद खूबसूरत एक गाना खास आपके लिए।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा, और हर साल 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है दोस्तों अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह यानी एंटी अनटचेबिलिटी वीक, जिसका उद्देश्य है समाज में जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के अंत और समानता की बात बड़ी प्रमुखता से कही गई है, और किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अब अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जाएं तो फिर सितंबर 1932 को याद कीजिए, जब पुणे की यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध उपवास रखा था, जिसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। आज उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम अस्पृश्यता का हर तरह से विरोध करते हैं और सभी को एक समान रूप से अपनाने की भारतीय संस्कृति में पूरा विश्वास रखते हैं।

आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ फिलहाल म्यूजिकल दिल्ली से आपसे लूंगी इजाजत, क्योंकि वक्त बस इतने की ही इजाजत दे रहा है। और रेखा आ चुकी है स्टूडियो में। म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट आपके साथ रहेगा 9:45 से, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब हम जानेंगे देश और दुनिया का हाल समाचारों के जरिए। तो अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए फिलहाल अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्य

0: कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीव जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एरोस्पेस क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। पदक तालिका में भारत 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarv Dharm Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi.

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 9:10 और पूरे 11 मिनट हो चुके हैं और आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा का 15वां भाग पुनः प्रसारण।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: नमस्कार, विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में आप सभी का स्वागत। विकास की दौड़ में आज दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा करना। भारत ने इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर शक्ति, जैव ईंधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जलवायु अनुकूल विकास को अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान गुजरात में जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए, प्रधानमंत्री सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और मिशन लाइफ जैसी पहलों तक हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव सामने आए हैं। गुजरात का चारण का सोलर पार्क देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में सहयोग कर रहा है और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की सौर क्रांति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है, ऊर्जा सुरक्षा में स्वच्छ ऊर्जा की क्या भूमिका है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान, तकनीक, नीतियों और जनभागीदारी का किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आनंद शर्मा। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: और आइए सुनते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत क्या कुछ कर रहा है और अभी तक क्या कुछ किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से।
5: भारत में सौर ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बड़े सोलर पार्क से लेकर घरों की छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार लगातार हो रहा है। भारत की इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किया गया आईएसए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को गति देना और तकनीक, निवेश, क्षमता निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देश के भीतर सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में भी पिछले एक दशक में बड़ी वृद्धि हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट हो चुकी थी। वर्ष 2014 में ये क्षमता लगभग 2.8 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा का विस्तार केवल अधिक बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है, इसका संबंध ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से भी है। साथ ही रूफटॉप सोलर के विस्तार से परिवार बिजली की लागत कम करने और कुछ मामलों में अतिरिक्त बिजली से आय अर्जित करने में भी सक्षम हो रहे हैं।
2: आनंद शर्मा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहलें बहुत चर्चा में रही हैं। गुजरात के इस अनुभव ने देश की जलवायु और ऊर्जा नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या गुजरात का जो ये मॉडल था ये देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है?
3: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये विजनरी स्टेप था, और वो भी 2009 में, जब शायद इतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी नेशनल और ग्लोबल लेवल पर, उस समय एक स्टेप लेना और एक ऐसे डिपार्टमेंट का गठन करना जो कि ग्लोबल वार्मिंग, मिटिगेशन, अडेप्टेशन मुद्दों पे जिसने एक लीड रोल निभाया, और एक उसी विभाग के अंडर जो है उन्होंने अपना एनर्जी का डिपार्टमेंट है, गुजरात एनर्जी डिपार्टमेंट, उसकी भी स्थापना की, और वो आज एक पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है, वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल है। करीब करीब वहाँ पर आप देखेंगे तो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी आज जनरेट की जा रही है, और 2000 मुझे लगता है 30 तक उसका टारगेट शायद 150 गीगावाट का है, और 2050 तक 300 गीगावाट का है। और उसी की देखरेख में, उसी की पहल को देखते हुए अन्य स्टेट जो है, केरल भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है भारत जिस तरह से सौर ऊर्जा में, गुजरात ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल मोदी जी, उनके अंडर जो विजनरी स्टेप लिया था, वो एक मतलब कि इस समय जो दिख रहा है कि उस समय जो स्टेप लिया था, आप सोचिए कि इस समय जब लड़ाइयाँ शुरू हुई खासकर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और हमारी एनर्जी जो है पेट्रोल डीजल ये सब प्रभावित हुआ है, तो अब समझ आ रहा है कि देखिए उस समय जो लिया हुआ स्टेप है कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। तो वो एक बहुत ही विजनरी स्टेप था, और मुझे लग रहा है आज इसको हम और मतलब जैसे कहते हैं गति लानी होगी, और उसके लिए भी सरकार जो है पूरा सब्सिडी दे रही है, के साथ साथ जो उसके लिए इंटरेस्ट जो है 5-6% पे इंटरेस्ट पे पैसा भी मिल रहा है सोलर पैनल लगाने का। और आपने जैसे कहा पीएम सूर्य घर, करीब करीब 1,00,000 घर जो है वो इसको लगा चुके हैं, और मुझे लगता है टारगेट शायद 1 करोड़ जी से ज्यादा घरों का है आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ सोलर पंप्स, वो एक बहुत फायदा हुआ किसानों को। कई बार क्या होता है आपके ग्राउंड में पानी तो है मगर आपके पास डीजल नहीं है उसको निकालने के लिए पानी के, सोलर पंप है तो आप खास कर सिंचाई कर पाएंगे फसल को उस समय जब आपकी लंबे समय से बारिश नहीं होती है। तो आपको ये देखिए ये जो एनर्जी सिक्योरिटी मिली उससे आपको फूड सिक्योरिटी में भी फायदा हो रहा है
2: जी।
3: तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं कहूँगा, और अन्य कंट्रीज को एग्जांपल दिया जा रहा है जहाँ यूरोप और चाइना इवन उनकी पूरी इकोनॉमी कोल बेस्ड है, और खासकर लड़ाई के बाद उन्हें पूरा कोल पे आ गए, और वहीं इंडिया जो पहले शायद 5-7 साल पहले हम भी यही बात कर रहे थे, पर अब हमने शिफ्ट होके सोलर पे आ गए, तो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात होगी ये, क्योंकि हमें जीरो कार्बन पे आना है मिनिमम, और नेचुरली कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपकी तो क्लाइमेट चेंज में मिनिमम होगा या कम हो जाएगा। तो और यदि वो होता है तो हैजार्ड्स कम होंगे तो आपके जो पैसा और उससे जो नुकसान होता है और वो रिलीफ में जो पैसा आता है वो बचेगा, और वो पैसा फिर डेवलपमेंट में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से,
2: और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये फुल साइकिल आपने चर्चा की। आनंद शर्मा जी, 25 सालों का अनुभव सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और जो अनुभव वहां से उन्होंने इकट्ठा किए उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने लागू किया, और उसके जो परिणाम हैं आज हम वो देख रहे हैं। हम कई देश में, शहरों में, कई राज्यों से जब गुजरते हैं तो घरों की छतों पर लगा हुआ सोलर पैनल इस बात की गवाही देता है। आज कई राज्य हमारे, कई शहर जो हैं, जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है। और आपने अभी जिस पूरी एक साइकिल की बात की देश के विकास में किस तरीके से लोगों की बिजली की बिल में जो बचत हो रही है वो पैसा अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ावा दे रहा है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका कि ये क्या जो सोलर पैनल हैं घर घर में कहाँ तक हम पहुँचे हैं, और आगे 5-10 साल में हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं?
3: नहीं देखिए, बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि पूरे वर्ल्ड लेवल पर चले तो इंडिया की प्रोग्रेस सराहनीय है, और कुछ स्टेट जो है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये पहला स्टेप गुजरात में लिया गया तो गुजरात तो बहुत जबरदस्त कर रहा है। आपने अभी एक वो पार्क की बात करी, वो उसके अभी खेवड़ा जो है सोलर पार्क है वो तो बहुत जबरदस्त, उसके कहते हैं 30 गीगावाट, जो कि एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई थर्मल पावर प्लांट उतनी एनर्जी जनरेट करने वाला है, और जो कि करीब करीब मुझे लगता है 5,300 एकड़ में फैला हुआ है, और आपने आप में शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एक जनरेशन वाला रीजन होगा। तो एक ये बहुत बड़ी पहल है, और आपने भी सही कहा कुछ दिनों में ये गुजरात जो होगा सरप्लस स्टेट में होगा। और वो यही नहीं कर रहे, उसके साथ साथ उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ शुरू कर दिया है, मतलब कि पानी भी होगा

0: ये जरूर देखने चाहिए और वार फुटिंग पे ये काम होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये होता है तो हम लोगों की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल की वो करने के लिए वो भी खत्म होगी, और जब एनर्जी सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा और आप एक सुपर पावर भी बन पाएंगे।
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में जो सौर ऊर्जा की क्रांति हुई है, काफी घरों की छतों पर अब हम देखते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है और हर घर लगभग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब ये नहीं है कि बिजली आएगी गांव में पोल लगेगा तब होगा, लोग बड़े आराम से उसको लगा रहे हैं और सरकार सहयोग कर रही है। तो इन 12 वर्षों में अगर सिर्फ सोलर पैनल की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कहां से कहां हम पहुंचे हैं?
0: एक समय ऐसा आ रहा था कि नेचुरली आपको मालूम होगा कई प्रदेशों में तो बिजली आती ही नहीं थी, और आती भी थी तो मात्र 3-4 घंटे रहती थी। अब क्या है, लोग इंडिविजुअल अपने यहाँ जब से लगाने लगे हैं तो उनके पास अब घर में बिजली भी आ रही है, और नेचुरली बिजली होगी तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़ेगी आपकी, और साथ साथ आपके सोलर पंप हैं, आप पानी भी निकाल पाएंगे तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक समय भी ये बात हो रही थी कि ऑफ द ग्रिड, मतलब आपको मेजर ग्रिड से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सोलर पैनल लगाइए और अपनी बिजली खुद पैदा कीजिए, और अब जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो फिर बात हो रही है कि ये वाली जो ग्रिड है ऑफ ग्रिड नहीं, इसको मेन ग्रिड से, मतलब आप खुद तो अपने घर का खर्चा निकालेंगे ही बिजली का और बेचेंगे भी सरप्लस को, तो अब ऐसी स्थिति आ रही है कहीं जहां ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन ग्रिड।
1: मतलब आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं निशुल्क, और साथ ही पैसे भी कमा रहे हैं।
0: पैसे भी कमा रहे हैं,
1: बिल्कुल। आनंद जी, आपसे एक सवाल और है कि जलवायु परिवर्तन जो है आज केवल पर्यावरण का विषय ही नहीं रहा, बल्कि कृषि, जैसा भी आप बता भी रहे थे, कृषि है, स्वास्थ्य है, जल संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है।
0: जी,
1: भारत में बदलते मौसम के पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए, कहीं बहुत तीव्र गर्मी है तो कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, इन सबको देखते हुए जलवायु अनुकूल विकास की क्या आवश्यकता है और मौसम विज्ञान विभाग इस दिशा में किस प्रकार से योगदान कर रहा है?
0: देखिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात हो रही है वो एक बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जो कि कंबाइन करती है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू रियलाइज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये दोनों चीजों को अलग अलग नहीं मानते हैं, कह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करेंगे आप तो यू विल बी बिल्डिंग रेजिलियंस इन द सोसाइटी, मतलब कि अडेप्टेशन है एक तरफ आपका मिटिगेशन है, और ये साथ में जुड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो बेसिक गोल तो क्या है कि हमें, यदि आपको क्लाइमेट एक्शन जो है उस पर मेजर फोकस है, और क्लाइमेट एक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन में मीन्स है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, नेचुरली आपको ये तो मालूम ही होगा, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सबको बड़े घर चाहिए, कारें चाहिए, रहन सहन की और सहूलतें चाहिए, तो जब आप ये प्रोवाइड करते हैं तो आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन करते हैं, और उसके चलते जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज से नेचुरली जब क्लाइमेट जल्दी से बदलेगा और जबरदस्त बदलाव आएंगे तो चरम सीमाएं, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कभी सूखा होगा, कभी फ्लड होंगे, कभी हीट वेव होगी, तो ये सब करने के लिए, इसको बचने के लिए हमें मिटिगेशन बड़ा जरूरी है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करें, यानी कि हमारा जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हमें आगे चलना है, मिटिगेशन आ गया ये पहला। दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है जहां भी कोई रिस्क है, समुद्र के पास है, गुजरात की बहुत बड़ी कोस्ट है या ज्यादा पूरा इंडिया में इतनी, वहां पे सी लेवल राइज का खतरा लोग कह रहे हैं, साइक्लोन का खतरा रहता है, तो ये जो खतरे हैं उसमें कहाँ रिस्क है वो रिस्क को जानना, और उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यदि आप सही समय पे, आपको रिस्क मालूम है और आप हजार्ड को प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसकी वार्निंग जनता को देते हैं, उनको समय पे हटा देते हैं, तो जान माल आप बचा लेंगे, और यदि आप ये कर लेते हैं तो वही बात होगी, आपका पैसा बच गया, वही पैसा आप डेवलपमेंट में जाएगा जो कि रिलीफ में जा रहा था पहले। तो यही अडेप्टेशन और मिटिगेशन है, और जब अडेप्टेशन मिटिगेशन ढंग से होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, हर बार हैजार्ड आएगा, आपने प्रेडिक्शन नहीं किया, हजारों जाने जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उजड़ेगा और आपका पैसा रिलीफ में जाता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखनी की, जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हमारी चॉइसेस होनी चाहिए, यानी कि ये है कि ऐसा ना हो कि हम घर बना रहे तो वो उसके चलते क्या हुआ, घर ऐसी जगह पे बना दिया कि वो हजार्ड बाढ़ में बह गया। तो आपस में इन सब में लिंक्स होने चाहिए अक्रॉस द पॉलिसी, मतलब हाउसिंग, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक को फिक्स करते हुए हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो आपस में एक इंटेग्रेटेड वो रहना चाहिए, मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि क्लियर इंप्लीमेंटेशन जो है गैप है उसको क्लियर करना है। अभी क्या है कि कई चीजें तो हम बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उनको, बट उसको अभी शायद उसका कार्यान्वयन करने की बहुत स्कोप

0: है हमारे पास, और यदि वो हम करते हैं तो ये गैप जो है हमारे गोल में और एक्शन में अभी थोड़ा गैप है, उसको पूरा करना होगा।
1: आनंद शर्मा जी, सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर उपकरणों का जो निर्माण है, इस क्षेत्र में भी भारत ने काफी प्रगति की है। पहले हम इसे आयात करते थे, अब उत्पादन तो हो ही रहा है, और इसके उत्पादन में जो सामान लगता है, जो उपकरण लगते हैं, उसका निर्माण भी हम घरेलू स्तर पर कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से आप अभी बात कर रहे थे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि ऐसा था, अभी हम कुछ साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले, तो एक्चुअली जितने भी सोलर पैनल थे हम सब लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, और इम्पोर्ट कर रहे थे वो तो एक चीज़ थी। उसके बाद में जब से फिर ये चला आगे को, तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सवाल आया कि भाई दिन में तो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और रात को तो नहीं है, तो इसको स्टोर कहाँ करें एक्स्ट्रा को? तो उसके लिए बैटरीज की बात आई, लिथियम बैटरी, वो भी हम कहाँ से इम्पोर्ट कर, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, तो हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लग जा रहा था। अब यह है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है अब हमने ये सोलर पैनल्स इंडिया में बनने लग गए हैं, और ऐसे ही बैटरीज भी बनने लग गए हैं, मगर फिर भी आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लिथियम हमें जो है उसके लिए, और सिलिका जो कहते हैं हमें इसके लिए चाहिए सोलर पैनल्स की, इन दोनों पे आज भी हमें निर्भर होना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। तो वो निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी, इनोवेटिव कहते हैं हमें टेक्नोलॉजीज और डेवलप करनी पड़ेंगी स्टोरेज के लिए, और पैनल्स बनाने के लिए भी हमें मतलब सिलिका से जो है जो उस पर डिपेंडेंस है उसको खत्म करना पड़ेगा। यदि वो हम खत्म कर पाते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह की हमारी भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, तो हम शीघ्र ही उसमें भी मतलब कि अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे सामने में, और ऊर्जा में तो डेफिनेटली आ ही चुके हैं, और ये तो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। सिर्फ हमें जो दो करने की जरूरत है वो यही है कि लिथियम के जो बैटरीज हैं वो भी हम पूर्ण अपने मतलब कि खुद ही सेल्फ रिलायंट हो जाएं उसमें भी, और पूरे पैनल को बनाने से लेकर उसके जो उसमें जो सिलिका जो भी पार्ट लगते हैं उसमें भी हम पूर्ण सेल्फ रिलायंट होना हमें जरूरी है अभी।
1: और आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में मिशन लाइफ क्या है।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और तकनीक के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कचरा कम करना, ई कचरा कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, और टिकायु खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। मिशन लाइफ के तहत देश भर में अब तक 40 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 7,30,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए देश भर में 12 लाख से अधिक इको क्लब भी मिशन लाइफ के तहत काम कर रहे हैं। मिशन लाइफ का संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। मिशन लाइफ इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, और टिकाऊ जीवन शैली को जन भागीदारी से जोड़ता है।
1: आनंद शर्मा जी, इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में आम नागरिकों की दैनिक आदतों, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ उपभोग की कितनी भूमिका हो सकती है, और इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में मौसम विभाग और पर्यावरण जागरूकता की खास तौर पर क्या भूमिका आप देखते हैं?
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव था, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जो आपका COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहाँ ये इन्होंने ये इनिशिएटिव जो था लिया था, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, और इसका बेसिकली जो मेन है टू प्रमोट माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिड्यूस माइंडलेस कंजम्पशन। तो अभी समय क्या हो रहा है, माइंडलेस कंजम्पशन हो रहा है, जबकि होना चाहिए माइंडफुल कंजम्पशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और साथ में रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी। दूसरा है कि अभी तक हम कर रहे थे यूज एंड थ्रो, यूज करो और थ्रो करो, और उससे क्या हो रहा है, गार्बेज और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। तो उसको अब चेंज कर दिया है सर्कुलर इकोनॉमी में, यानी कि आप कचरा भी पैदा करेंगे तो उसको सेपरेट भी करेंगे और उसको आप रीयूज करेंगे। जैसे कि आपका वेस्ट निकल गया बायोमास, उससे आप बायोमास से अपना एनर्जी निकाल ली, आपने उससे आपने कहते खाद बना ली, आपने उसको मल्च की तरह यूज कर लिया खेती में, ये बहुत सारे बेनिफिट हो गए उससे, बायोगैस बना लिया आपने। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में सब आ रहा है, और उसमें पूरे एकदम जैसे कहते हैं ना SOP बनी है बड़े अच्छे ढंग से, कि हर चीज़ को मॉनिटरिंग भी हो रही है, और उसमें जॉब भी क्रिएट होंगी और आपका वेस्टेज भी मिनिमम होगा, और ये प्रमोट करता है

0: इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को, और इसमें फोकस क्या है, फोकस है आपका प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि हर जो नागरिक हो वो एक जिसे कहते हैं ना एक्टिवली प्ले करेगा कि भाई मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रो प्लैनेट पीपल, वो इसका मेन फोकस है। तो उसमें आपने पूछा कि मौसम विभाग और पर्यावरण इनका क्या रोल हो सकता है इसमें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आज की आ रही है वो ये आ रही है कि जो ज्यादातर लोग एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस है, एयर कंडीशन स्कूल है, एयर कंडीशन मॉल है, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन कार है, तो वो नेचर से जो है हमारी प्रकृति से कट ऑफ हो गए। इसको मैं इसको कहता हूँ नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर हो गया कि उसको प्रकृति में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है बाहर, तो जब वो पता ही नहीं तो वो उसको कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसको पता ही नहीं मेरी यमुना नदी खराब हो चुकी है, मेरे लैंडफिल इतने ऊंचे ऊंचे हो गए। पहले उसको कनेक्ट करना है, किताबी ज्ञान से ये लोग सीख नहीं पाएंगे पर्यावरण के बारे में, उनको फील्ड में ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक चीज। दूसरी बात, जब कनेक्टेडनेस कैसी होगी, जब उनको समझाना पड़ेगा भी देखिए आप जब एक्स्ट्रा कोई पॉलिथीन लेते हैं या एसी कोई आप कहते हैं करना चाहिए, आपने 18 डिग्री पे लगा के रखा है, यदि आप उसको 24 डिग्री पे करके रखते हैं, बिजली बचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपको ये भी बताना चाहिए बिजली कहां से आ रही है,
1: और आप अपना स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं,
0: स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, एवरीथिंग इज लिंक्ड, बिल्कुल स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं आप। और जब आपने, और इसको ये मालूम होना चाहिए पॉलिथीन कहां जा रहा है, ये नदी में जा रहा है, फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो फिश वगैरह में जा रहे हैं, उसी को लोग खा रहे हैं, तो कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनको ये सारा कनेक्टेडनेस जो है इकोसिस्टम की, इकोनेस आइसोलेटेड नहीं है, पूरा कनेक्शन है, ये जब हम समझाएंगे और बताएंगे वही पॉलिथीन को आप जला रहे हो तो फिर CO2 गैस निकल रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, और आप पिछड़ते रहेंगे क्योंकि आपका सारा पैसा तो कहते इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा आपका, फिर आप उसी में पैसा लगाओगे तो नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल, नई यूनिवर्सिटीज आप कैसे खोलेंगे।
1: बिल्कुल,
0: ये कनेक्टेडनेस जब लोगों को ये समझ आ जाएगी सिंपल भाषा में कि भाई हाँ ये तो मुझे तो प्रो प्लैनेट पीपल बनना है,
1: बिल्कुल
0: मुझे है ना, मेरे को धरती पे अपना बोझ कम से कम करना है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम कितना पानी डेली यूज कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका डेली वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लोग नहीं बता पाते, कोई कहता 10 लीटर, कोई कहता 50 लीटर, जबकि वो 500 लीटर कर रहे हैं, तो वही जो है ना
1: वो दे आर नॉट माइंडफुल, उसके बारे में माइंडफुलनेस
0: जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइंडफुलनेस लेके आनी है उनमें, कि उनको रियलाइजेशन हो कि भाई हम कर क्या रहे हैं। आजकल के दिखा होगा जो बच्चे हैं हर उठाते हैं फोन से सामान पे सामान आ जा रहा है, और आप देखेंगे तो दिन भर में इतना कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा वो कचरा, वो सारा फिर वो आप जला देंगे कहीं ले जाकर, सेग्रीगेट तो सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारों ने बड़ा अच्छा कर दिया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वही उनको समझाना है ये फेंकना नहीं है, इसको रिसाइकल करना है, और काफी इसमें पहल हो रही है, काफी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, आजकल तो कपड़े भी मिलते हैं आपको बोलते हैं रिसाइकल्ड है ये कपड़ा, या ये बैग है जो रिसाइकल्ड हो रहा है, मगर इसमें एक और भी ध्यान रखना है कि ग्रीन वॉशिंग ना हो, कि बोल रहे हैं कर नहीं रहे, करना है, करके दिखाना, क्योंकि अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है।
1: आपने सही कहा, पॉपुलेशन बड़ी है, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, इसकी टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग है, कहां अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड, और कहां केरल, और कहां जम्मू कश्मीर, कहां गुजरात, कच्छ, इतना बड़ा देश है। अब ऐसे इतने बड़े भौगोलिक देश में एक्सट्रीम वेदर्स की भी समस्या है, कहीं हीट वेव है, कहीं अत्यधिक वर्षा है, बाढ़ है, कहीं चक्रवात है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका सार्वजनिक जीवन में जो अनुभव रहा है उस पर चलते हुए उनके नेतृत्व में इन सब चीजों पर खास तौर पर ध्यान देना शुरू किया है। हमने ये भी देखा था एक वक्त पर कि IMD, आप वहां रहे हुए हैं एक बड़े पद पर, IMD जब कहती थी कि बारिश होने वाली है, बारिश होती नहीं थी, और उनके कई सारे जो पूर्वानुमान होते थे वो या तो सटीक नहीं होते थे या कई बार गलत साबित होते थे, लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि पूर्वानुमान की सटीकता सही रही है, समयबद्धता में सुधार हुआ है, आम नागरिकों तक चेतावनी भी समुद्री इलाकों में बड़े समय से पहुंच रही है। IMD ने ये कैसे किया, क्या रणनीति है
0: इसमें? बहुत सारी चीजें आप किसी से पूछेंगे मीडिया से तो एक एक्सेलेंट फोरकास्ट मेरी, चाहे वो मैं कर्नाटका में था, चाहे मैं सिक्किम में था, चाहे मैं देहरादून में था, दिल्ली में था, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके पीछे सब कुछ है कि निरंतर प्रयास, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी पिछले 15 साल में तो बहुत तेजी आई है इन प्रयासों में, पर पहले भी प्रयास हुए हम लोगों को, जो जिस तरह से मतलब सुपर कंप्यूटर 87 में आ गया था, उसका एक मेजर रोल रहा, सबसे मेजर रोल रहा, क्योंकि उससे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर दे नहीं रहा था, फिर सुपर कंप्यूटर मिला, और सुपर कंप्यूटर के चलते जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन शुरू हुआ, उसने एक बहुत बड़ा रोल लाया। दूसरा सैटेलाइट जो आए, सैटेलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, डॉपलर वेदर रडार आ गए, मगर इनके नंबर कम था डॉपलर वेदर रडार का, सैटेलाइट में भी कुछ इतने सेंसर्स नहीं थे जितने हम मौसम विभाग को चाहिए थे। फिर वो जब बोला गया और बीच में तो ये

0: पिछले 10-15 साल में इनमें बहुत भयंकर तेजी आई, यानी कि मतलब काफी पैसा इसमें गया और नए सुपर कंप्यूटर्स लिए गए, नेटवर्क को बढ़ाया गया। डॉपलर वेदर रडार जो है मेरा ख्याल अभी 25-30 लग चुके हैं और मेरा ख्याल 100 इनका नंबर पहुंचने की बात हो रही है अगले कुछ 1-2 साल के अंदर। तो इसमें निरंतर प्रयास हो रहे हैं और बिल्कुल सही है कि आज से 25-30 साल पहले लोग बोलते थे ऐसा कि भाई मौसम विभाग जो बोलता है गलत, पर अब नहीं है। अब काफी सालों से 15-20 साल से ये धारणा बदली है और रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत लोगों की जानें बच रही हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी जो प्रयास हैं ये हमारे जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी सोसाइटी को रेजिलिएंट बना रहे हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि और मानसून का कितना महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के वितरण, तापमान और मानसून के व्यवहार में होने वाले बदलाव किसानों के लिए क्या चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, कृषि मौसम सेवाएं, जिला स्तर के पूर्वानुमान और समय पर सलाह किसानों को इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं और क्या नई तकनीक और IMD लेकर आ रहा है।
0: ये सवाल बहुत बढ़िया है। आपको एक तो मालूम है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और ये कहा गया कि भाई इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी पौधों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, वाटर सिक्योरिटी का भी इशू होगा, भाई नेचुरल जहां बारिश नहीं वहां सूखा पड़ेगा। मगर उसके विपरीत आप देखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स। आप देखिए हालांकि इस साल थोड़ा प्रोडक्शन में कमी हो सकती है क्योंकि एल नीनो ईयर था, मगर उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से मौसम आधारित कृषि सलाह लोगों को मिल रही है, जिस तरह से कहते हैं ICR ने ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज डेवलप करी हैं, तो इन सब का एक मेजर रोल रहा है। अब जैसे एग्जांपल है, समय समय पर यदि किसान को मौसम आधारित सलाह मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अभी ये बारिश आने वाली है तो हम किसान भाइयों को बोलेंगे देखो किसान भाइयों आपकी फसल जो तैयार पड़ी है 3 दिन में बारिश आने वाली है तो आपकी तैयार फसल को काट के सुरक्षित स्थान पर रख लो, तो नुकसान बच गया उसका। ऐसा ही है, मान लीजिए किसान को इस समय फसल है उसमें फ्लावरिंग आ रही है जैसे महाराष्ट्र में और बारिश मान लीजिए आने वाली है, तो आप कहोगे किसान भाइयों को देखिए भाई बारिश आने वाली है तो आप सिंचाई को टाल दीजिए, तो आपका सिंचाई का पैसा बच गया। सिमिलरली बारिश आने वाली है और आपने मान लीजिए आप फर्टिलाइजर और केमिकल लगाने वाले हैं तो हम उन्हें कहेंगे नहीं भाई बारिश आने वाली है आप फर्टिलाइजर और केमिकल अभी ना लगाएं नहीं तो वो पानी से बह जाएगा। तो ये जो मौसम आधारित कृषि सलाह है इसने बहुत फायदा किया है और यही एक कारण है कि वी आर एबल टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर यील्ड्स। नहीं तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही तो यही कहा गया था कि भाई एपिडेमिक्स होंगे, और यही नहीं क्योंकि हम समय समय में उनको बता दे रहे हैं कि अब ये मौसम जो है अनुकूल हो गया है पौधे पे बीमारी आने का, तो आप मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए मगर स्प्रे मत करिएगा अभी, जब वो थ्रेशहोल्ड से बढ़ जाएगा तो हम बताएंगे आपको जब स्प्रे करना है आपको, और हो सकता है कि मौसम पौधे के लिए अनुकूल हो जाए और बीमारी जो पेस्ट होता है उसके लिए विपरीत हो जाए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्प्रे करने की। तो केमिकल स्प्रे को भी बचा रहे हैं हम लोग, और वही स्प्रे जो केमिकल के पानी में जाते हैं मच्छी में जा रहे हैं फिर लोग उसको खा रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है। मौसम आधारित जो कृषि सलाह है उससे हम किसान का पैसा बचा रहे हैं, लोगों की हेल्थ बचा रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं।
1: और देखिए भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना हुई। आज ये सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार और विकासशील देशों में निवेश और तकनीक सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जिसका हम लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। यूरोप के कई देश अगर आप देखें जैसे डेनमार्क, तो वहां पर पवन ऊर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है और उससे ऊर्जा पैदा की जा रही है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जैव ईंधन और परमाणु ऊर्जा जैसे जो विभिन्न स्रोत हैं इनका संतुलित मिश्रण कितना जरूरी आप मानते हैं? क्या पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं?
0: नहीं, उसमें भी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, मगर हम सोलर एनर्जी पे ज्यादा हमने मतलब कि उसमें अचीवमेंट है हमारी। और बिल्कुल आपने सीखा कि हमें मिश्रित चाहिए, हमें सोलर एनर्जी भी चाहिए, हमको विंड एनर्जी भी चाहिए, हमको ओशन वेव से भी एनर्जी जनरेट करना है, जियो थर्मल एनर्जी को भी एक्सप्लॉइट करना है, बायोफ्यूल्स को भी एक्सप्लॉइट करना है। यदि हम ये सब कर पाते हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 2009 में गुजरात क्लाइमेट सेंटर से लेकर 2015 में जो हमारा COP 21 हुआ था पेरिस में, वहां ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वो एक बहुत ही दूरदर्शिता थी उसके अंदर, और मुझे लगता है 140 कंट्रीज उसके मेंबर है जिसे सनशाइन कंट्रीज कहते हैं, और बिल्कुल उससे काफी बल मिला और हमें लीडरशिप एक मिली। और अब भारत सरकार जो है बिल्कुल बायोमास पे जो है पूरा फोकस है उनका, बायोफ्यूल्स, फिर वही मैंने कहा कि वो जो प्लांट्स लगाए जाएंगे मार्जिनल लैंड्स पे लगाए जाएंगे और जो एनर्जी क्रॉप्स होंगी जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा था, उसके साथ जो आपकी यूज कुकिंग ऑयल है आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमीथेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें मल्टी जिसे कहते हैं प्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, सिर्फ एक पे निर्भर नहीं होना है। सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी जितने पॉसिबल है उसको एक्सप्लॉइट करना है और टू द मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए।

0: ग्रीन एनर्जी चाहिए और हमारा टारगेट है टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो इमिशन, ये हमारा गोल है।
1: सौर ऊर्जा में तो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्या विंड एनर्जी के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं भारत में?
0: नहीं, चुनौतियां देखिए सोलर एनर्जी में तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, पूरे एक कोने से दूसरे कोने सनशाइन रहता है,
1: ब्राइट
0: सनशाइन रहता है, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मगर विंड एनर्जी को हर जगह नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको वहां पे विंड तेज चलेगी वहीं लगाया जा सकता है, या तो कुछ कोस्टल सिटीज हैं या फिर पहाड़ों के ऊपर आपको, और इसके लिए ये अगेन मौसम विभाग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पास विंड एटलस है, सोलर एटलस है, जहां बताया जाएगा आपका कि भी कहां आपको लगाना है कहां नहीं लगाना है। सोलर एनर्जी के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है, विंड के लिए कोस्टल सिटीज पे लग सकता है, और कोस्टल सिटीज में भी हमें ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे तो वहां साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन आएगा तो वो नेचुरली बहुत तेज होगी स्पीड, 150-200 की, तो उखाड़ भी सकता है। मगर हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम विंड स्पीड जो 250 आती है करीब, तो उससे जो है ज्यादा की ताकत का हमें वो स्ट्रक्चर वहां खड़ा करना है, जिससे कि वो आ भी जाए तो रेजिलियंट होगा, वो टूटेगा नहीं।
1: विंड एनर्जी के लिए हवा की स्पीड एक आमतौर पर कितनी होनी चाहिए?
0: देखिए कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो होनी ही चाहिए, तो वो आम ज्यादातर जगहों पे आपको नहीं मिलती है, वो आपको कोस्टल सिटीज में मिलेगी, या हाइट, जैसे जब हाइट ऊपर जाते हैं हम लोग तो विंड स्पीड बढ़ती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और यदि आप 12 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो हवाएं चल रही हैं 150 किलोमीटर की स्पीड से, जैसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे तो पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, वो रेजिस्टेंस होता है तो विंड स्पीड कम हो जाती है, और जहां खुला इलाका होता है तो वहां विंड स्पीड ज्यादा होती है।
1: तो हेडविंड और टेलविंड जो होता है वो 80-100 बहुत आम
0: बात है। और आपने देखा होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जेट स्ट्रीम का डिस्कवरी हुई थी, कि जब अमेरिकन प्लेन्स जब कहते हैं जा रहे थे, कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो वो फास्ट जा पा रहे थे, मगर जब वो ईस्ट से वेस्ट लौटते तो उनको ज्यादा समय लगता था, तो उन्होंने देखा क्यों हो रहा है, क्योंकि विंड उनको जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट जाने में मदद करती थी उनको, और जब आते थे तो अगेंस्ट,
1: जब भी हेडविंड होगा तो वो ज्यादा वक्त लगेगा। आनंद शर्मा जी, विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगले दशक में भारत की हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी को एकीकृत कर, यानी इंटीग्रेट करके भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सकता है?
0: नहीं, बिल्कुल कर सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने लीडरशिप तो ली, और एक और भी ध्यान रखिए, आज से 1000 साल पहले भी भारत जो था, देश जो था, हमारा जिस तरह का कल्चर था, हम लोग कंजर्वेशन में, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन में लीडर थे
1: जी,
0: पर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, और अब फिर दोबारा से हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लीडरशिप का रोल अब निभा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, हम डेफिनेटली जो है इस, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ने का प्रयास हो, उस सब में हम बिल्कुल कहते हैं सक्षम हैं। मगर हाँ, प्रयास ये है कि लोगों को, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब तक हम पर्यावरण से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको ये समझाएंगे नहीं पूरे साइकिल को कि किस तरह से काम करता है, और ग्रीन वॉशिंग ना हो, मॉनिटरिंग रेगुलरली हो और इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके लिए आपको जितनी सब्सिडी देनी है सब्सिडी दीजिए, टैक्स रिलीफ देना है टैक्स रिलीफ दीजिए, मगर हर कॉस्ट पे हमको पर्यावरण को बचाना होगा, कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी,
1: हर कॉस्ट पर पर्यावरण को बचाना होगा, और तभी हम विकसित भारत 2047 की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा केवल भविष्य की जरूरत नहीं बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद शर्मा जी, आप अतिरिक्त महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

आपकी दोस्त आशरेखा क्रिस्टल वॉइस। 9:45 और 56 सेकंड हो चुके हैं और आज हर जगह आपको स्वच्छता अभियान तो नजर आ ही रहे होंगे, लेकिन सच पूछो तो या सच कहूं तो स्वच्छता कोई एक दिन मनाने वाला उत्सव नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे हर दिन जुड़े हैं और हर दिन इसके लिए काम करते हैं। दोस्तों, स्वच्छता सिर्फ झाड़ू लगाने का नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक संस्कार है। जैसे हम रोज अपने मन को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने घर और अपने आसपास को भी साफ रखना चाहिए। सोचकर देखिए, जब सुबह उठते ही आपको अपना कमरा साफ सुथरा मिलता है तो दिल कितना खुश हो जाता है ना। वहीं खुशी जो है दोगुनी हो जाती है जब हम अपने आसपास गली मोहल्ले को, शहर को भी साफ रखते हैं, और ये खुशी जो है वो हम अपने आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं। स्वच्छ भारत का सपना किसी एक का नहीं है, हम सबका सपना है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पानी को जमा ना होने देना, ये छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। याद रखिए, गंदगी सिर्फ बीमारियां लेकर आती है, लेकिन सफाई से आती है सेहत, सुंदरता और सम्मान। तो आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम ना गंदगी करेंगे और ना गंदगी करने देंगे, है ना। तो दोस्तों, जब बात हुई है स्वच्छता की तो स्वच्छ भारत मिशन को कैसे हम भूल सकते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे भोजन और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही स्वच्छता के बिना स्वस्थ जीवन भी संभव नहीं है। गंदगी से मक्खी, मच्छर, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। जहां सफाई है वहां बीमारी जो है वो कोसों दूर रहती है। साफ सुथरी जगह पर मन जो है वो शांत रहता है, खुश रहता है। गंदी जगह पर बैठने से नकारात्मकता आती है, जबकि साफ जगह पर सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब कोई विदेशी हमारे देश में आता है और उसे सड़क पर कचरा दिखता है तो हमारे देश की छवि खराब होती है। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत ही हमारी पहचान है और यही सम्मानित जीवन की नींव भी है। भारत सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन, जो एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान भी है। भारत में खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, खुले में जो लोग शौच करते हैं उनको रोकना, वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन करना, ये सभी इसके लक्ष्य थे। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक यानी 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का लक्ष्य रहा, लेकिन आज भी हम इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आदतों में सुधार नहीं करते हैं। अगर हर इंसान ये सोचने लगे कि भाई पूरा भारत हमारा अपना घर है, तो फिर ये समस्या हल हो सकती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 6 लाख से अधिक गांवों में खुले शौच में शौच मुक्त उन्हें घोषित किया गया, खुले में शौच से मुक्त उन्हें बनाया गया। गांवों को ODF प्लस बनाने की कोशिश की गई, यानी कि शौच मुक्त बनाने की कोशिश की गई। जहां खुले में लोग इसके लिए जाते थे उसे रोकने की कोशिश की गई और नए शौचालयों का निर्माण किया गया ताकि ये समस्या दूर की जा सके, जिसमें हर तरह के कचरे का प्रबंधन किया गया। और अगर मैं बात करूं शहरी स्वच्छ भारत मिशन की, तो शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। शहरों में 100% ठोस कचरे यानी सॉलिड वेस्ट का वैज्ञानिक संग्रह और प्रसंस्करण करना, मैनुअल जो हाथ से मैला ढोने वाली जो प्रथा है उसे पूरी तरह समाप्त करना और लोगों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाकर इसे एक बड़े स्तर पर लाया गया, पहुंचाया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए गंदे पानी और खुले में शौच से होने वाली बीमारियों में कमी भी आई इसकी वजह से। और इसके अलावा जो गीला या सूखा कचरा होता है उसे अलग अलग पुनर्चक्रण पर जोर दिया गया ताकि उसको निपटान किया जा सके। ये सभी इस मिशन के तहत काम किए गए और धीरे धीरे भारत स्वच्छता की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पूरी तरह हम तब बढ़ पाएंगे जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। तो आज ही अपनी सोच बदलिए। छोटा सा रैपर भी अगर आप सड़क पर फेंकते हैं तो 100 बार सोचिए कि क्या ये करना सही है, नहीं ना, तो उसे हमेशा डस्टबिन में डालिए और फिर देखिएगा कि हम इस मिशन से कैसे अपने भारत को स्वच्छ बनाकर आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो चलिए फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ, उसके बाद कुछ और भी बताऊंगी आज के दिन जो खास है।

और अब वक्त बहुत कम बचा है तो जल्दी से आपको ये बता दूं कि आज का दिन बहुत खास है। क्यों खास है ये तो आप जानते ही हैं, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और इसके अलावा भी इतिहास में बहुत कुछ दर्ज है। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की पुण्यतिथि भी आज ही के दिन होती है और वो भारतीय राजनीतिक में किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देश की सेवा की। मरणोपरांत साल 1976 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा आज का दिन जाना जाता है प्रसिद्ध हिंदी नाटककार और साहित्यकार डॉक्टर शंकर शेष की जयंती के तौर पर। हर साल 2 अक्टूबर को यह मनाई जाती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1933 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। और अगर मैं बात करूं तो उन्होंने प्रयोगधर्मी और चर्चित नाटक भी लिखे हैं। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय किया है। बहुत से ऐसे नाटक हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे एक और द्रोणाचार्य, महाभारत और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को जोड़ता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत नाटक, फंदी जो कि 1971 में उन्होंने लिखा, घरौंदा जिस पर फिल्म भी बनी, रक्त बीज, खजुराहो का शिल्पी, कोमल गंधार, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिनके लिए उन्हें जाना जाता है और उनके पात्र बहुत ही खास हुआ करते थे उनके नाटकों में। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, न्याय प्रणाली में कमी और मध्यम वर्ग के आर्थिक

रोशन को अपने नाटकों का मुख्य विषय बनाया। और अगर मैं बात करूं तो घरौंदा फिल्म जो थी वो उनकी कहानी पर आधारित काफ़ी लोकप्रिय फिल्म रही। और बी आर चोपड़ा की प्रसिद्ध फिल्म आज की आवाज़ भी डॉक्टर शंकर शेष के नाटक कांच के घर पर आधारित थी। तो आज हम डॉक्टर शंकर शेष की भी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आज हम इस हफ्ते में वाइल्ड लाइफ वीक भी मना रहे हैं, तो आज इसके बारे में भी आपको बता दूं, 2 से 8 अक्टूबर तक ये वीक मनाया जाता है, ये सप्ताह मनाया जाता है भारत में हर साल राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह के तौर पर जाना जाता है। और इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके संरक्षण और जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करना। हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक ये आयोजित होता है और पहली बार इसे 1957 में मनाया गया था। इस दौरान देश के कई राज्यों में चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय उद्यानों में बच्चों और आम नागरिकों के लिए मुफ्त प्रवेश या विशेष छूट दी जाती है। जागरूकता बढ़ाने के लिए पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिताएं, रैलियां, वॉकथॉन जैसे कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, जितना अधिकार इस धरती पर इंसानों का है उतना ही बाकी जीवों का भी। लेकिन जब धीरे धीरे जंगलों को नष्ट करके इंसान बाकी जीवों से उनका घर छीनने लगता है तो जीवों की अस्तित्व पर खतरा धीरे धीरे मंडराने लगता है। और आज जरूरत है हमें ये समझने की कि सुरक्षा और संरक्षण कैसे किया जाता है, और इसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। वैसे अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है तो बहुत सारी बातें तो नहीं कर पाऊंगी म्यूजिकल दिल्लगी के सफर में, तो इतना ही पर एक गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। और फिर से मुलाकात होगी 10:30 बजे लेकर दिल का मेल बॉक्स। इस बीच आप सुनेंगे विश्व दर्पण, न्यूज और वर्ल्ड न्यूज, बहुत सारी चीजें हैं, हिंदी अंग्रेजी में समाचार और वर्ल्ड न्यूज सब कुछ सुनेंगे आप। लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए, मैं लेती हूँ विदा म्यूजिकल दिल्लगी से।

वृंदावनी गोप गौरणी देवनिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस पोरिसिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को

0: श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरीकॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के नित्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के लिए 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 71 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। महात्मा गांधी जयंती के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बंद है। बाजार सोमवार को फिर से खुलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smit Machar, whose heroics in thwarting an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smit Machar has been transferred to Abu Dhabi, UAE. The Saudi press agency SPA, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian Embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. As reported by SPA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday, with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. At 5:40 p.m., passengers continued their journey on a replacement Fly Dubai aircraft, while the crew returned to Dubai on a separate flight. The nation is paying homage today to two great leaders, the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi Rajghat in the national capital this morning. President Draupadi Murmu attended the Sabha and paid floral tributes to the father of the nation. President Draupadi Murmu also paid homage to Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat this morning. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and several union ministers paid floral tributes to both the leaders at the Samvidhan Sadan in New Delhi today. BJP President Nitin Naveen, Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, Members of Parliament, Senior Officials,

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz और वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम बात करेंगे शानदार अभिनेत्री आशा पारेख जी की। 60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अभिनेत्रियों की जब बात होती है तो उस लिस्ट में आशा पारेख का नाम जरूर शामिल होता है। अपने दौर में आशा पारेख ने फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनके अंदाज और ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों का बखूबी दिल जीता। आज 2 अक्टूबर को वो अपना 84वां जन्मदिन मना रही हैं। आशा पारेख जी की फिल्मों की बात की जाए तो लगभग 90 फिल्मों में उन्होंने काम किया। दिल दे के देखो, जब प्यार किसी से होता है, भरोसा, जिद्दी, मेरे सनम, लव इन टोक्यो, आए दिन बहार के, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवा, दो बदन, चिराग, पगला कहीं का, कटी पतंग, मैं तुलसी, तेरे आंगन की जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों का आशा पारेख जी हिस्सा रही। उन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। तो आज उनकी फिल्मों की हम बात करेंगे कलाकार बेमिसाल के जरिए। आशा पारेख जी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बस यही प्रार्थना हम करते हैं कि वे हमेशा स्वस्थ रहें और उनकी मुस्कुराहट हमेशा यूं ही बनी रहे। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। मैं हूं रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, आशा भोसले जी की आवाज़ में सुना आपने ये खूबसूरत गीत और फिल्म थी कारवां। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं शानदार अभिनेत्री आशा पारेख जी की। आज वो अपना 84वां जन्मदिन मना रही हैं, तो कलाकार बेमिसाल के जरिए आज उन्हीं की फिल्मों की, उन्हीं के गीतों की और उनके करियर की, उनके जीवन की बात हम करेंगे। आशा पारेख जी 60 और 70 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्री तो रही ही, साथ ही आपको बता दें कि वो एक फिल्म निर्माता और निर्देशक भी रही। उन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनके अंदाज ने दर्शकों का खूब दिल जीता। आज 2 अक्टूबर को वो अपना जन्मदिन मना रही हैं। 60 और 70 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। उस दौर में आशा पारेख को सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी जाना जाता था। उस दशक में वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थी। उन्होंने कई अलग अलग तरह की फिल्मों में काम करके अपनी एक खास जगह बनाई फिल्मों की दुनिया में। तो आइए उन्हीं पर पिक्चराइज्ड सुनते हैं एक और सुपरहिट गीत फिल्म आए दिन बहार के से। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: आकाशवाणी समाचार हेमंगिनी सोनारा वांचे छे। सौ प्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर साथ बात करी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157मी जन्मजयंती दिल्ली में राजघाट और अमदावाद में साबरमती आश्रम खाते सर्वधर्म प्रार्थना योजाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयले जी 20 व्यापार मंत्रियों की बैठक थी अलग फ्रांस कैनेडा साउदी अरेबिया और दक्षिण कोरियाना व्यापार मंत्रियों साथ द्विपक्षीय बैठक योजी। हवामान विभागे जणाव्युं कि परिस्थिति अनुकूल बनवानी शक्यता छे कारण के देश केटलाक भागों में टूंक समय में दक्षिण पश्चिम चोमासु विदाय लेशे। जापान में रमाई रहे एशियन गेम्स में भारत 12 सुवर्ण 25 रजत और 34 कांस्य चंद्रकों साथे मेडल टैली में छठा स्थाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर साथ बात करी हती। तेमणे दुबई थी तेल अवीव जई रहेली फ्लाई दुबई फ्लाइट में तेना को पायलट द्वारा करवामां आवेला हुमला ने निष्फळ बनावीने 180 लोकोना जीव बचाव्या हता। कैप्टन मच्छरे प्रधानमंत्री ने तेमना अनुभव अंगे विगतवार जणाव्युं हतुं। प्रधानमंत्री मोदीए तेमनी बहादुरीनी प्रशंसा करी अने तेमने झड़पथी स्वस्थ थवानी शुभेच्छा पाठवी।
1: पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आपकी हिम्मत ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हुमलो करनार आरोपी सह पायलट ने अबुधाबी मोकली देवामां आव्यो छे। साउदी प्रेस एजेंसी एसपीए साउदी गृह मंत्रालय सत्तावार सूत्रों ने टांकी ने जणाव्यु छे के बन्ने पायलट तबीबी तपास बाद अबुधाबी जवा रवाना थया छे। अबुधाबी में भारतीय दूतावासे गईकाले माहिती आपी हती के कैप्टन मच्छर ने यूएई लावामां आव्या छे अने तेमना स्वास्थ्य में सुधारो थई रह्यो छे। एसपीए जणाव्यु के यूएई साउदी अरेबिया सुरक्षा टीम साथ संकलन में साउदी अधिकारी द्वारा हाथ धरवामां आवेली प्राथमिक तपास में जाणवा मळ्यु छे के कोई कारणसर बोलाचाली थई हती जेमां सह पायलटे कैप्टन पर हुमलो कर्यो हतो जेना परिणामे बन्नेने इजाओ थई हती।

आपको बता दें कि 1998 से 2001 के बीच आशा पारेख जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की पहली महिला चेयरपर्सन रही। 2017 में उनकी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई और आशा पारेख जी की अपनी एक डांस एकेडमी भी है कारा भवन के नाम से, जहां वे अक्सर अपना समय बिताती हैं। तो आज आशा पारेख जी के बारे में हमने बात की कलाकार बेमिसाल के जरिए। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और हम बस यही कामना करते हैं कि आशा जी हमेशा खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराती रहें। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं एक सुपरहिट गाने के साथ, फिल्म तीसरी मंजिल से। इस गीत के बाद आप सुन सकेंगे समाचार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कप्तान सुमित मछार से बातचीत की। उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के तिजारत से मुतालिक वजीरों की मीटिंग से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसबों से दोतरफा मीटिंग्स की, जिसका मकसद दोतरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना था। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को आज उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। भारत के महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि शिमाल मगरबी भारत में जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने के कौमी कवी इम्कान हैं। और एशियन गेम्स में लवलीना बोरगोहाई ने खवातीन के मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। अब भारत के पास सोने के 12 तमगों समेत कुल तमगों की तादाद 71 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय पायलट कैप्टन सुमित मछार से बातचीत की, जिन्होंने न सिर्फ अपने मुआविन पायलट के हमले से खुद को बचाया बल्कि 180 लोगों की जान भी बचाई। ये वाकया दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में पेश आया। कैप्टन मछार ने इस वाकये की तफसील वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बताई और इस बारे में बताया कि किस तरह उन्हें हिम्मत मिली। वजीर आजम ने उनकी दिलेरी की तारीफ की, उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एडवोकेट हैं और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसला कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है।
0: दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट

0: दुबई की परवाज में रोनुमा इस वाके में कैप्टन सुमित मछार पर हमला करने वाले मुआविन पायलट को अबू जबी मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने सऊदी अरब की दाखिली उमूर की वजारत के एक ओहदेदार के हवाले से जानकारी दी है कि तिब्बी मंजूरी हासिल करने के बाद दोनों पायलट अबू जबी के लिए रवाना हो गए। अबू जबी में भारतीय सिफारतखाने ने कल जानकारी दी कि कैप्टन मछार को मुत्तहिदा अरब अमारात लाया गया और उनकी हालत में अब बेहतरी आ रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्लाई दुबई की परवाज बुध के रोज सुबह 9:45 पर तबूक में वाक़ शाह सुल्तान बिन अल अजीज बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतरी थी। इस परवाज में 174 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। इन तमाम अफराद को जरूरी लॉजिस्टिकल और तिब्बी मदद फराहम की गई। शाम 5:40 पर मुसाफिरों ने फ्लाई दुबई के एक दूसरे तैयारे में सफर किया, जबकि जहाज का अमला एक दूसरी परवाज से वापस चला गया। जुमेरात के रोज दोनों पायलट UAE की एक सिक्योरिटी टीम के हमरा सऊदी अरब से अबू जबी के लिए रवाना हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक UAE की एक सिक्योरिटी टीम के तालमेल से सऊदी हुकाम की तरफ से की गई इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि जहाज के मुआविन पायलट और कैप्टन के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके सबब दोनों अफराद जख्मी हो गए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के मिलवाकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के मौके पर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसब वज़रा के साथ दोतरफा मीटिंग्स की। इन मीटिंगों में शामिल मुल्कों ने दोतरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की। फ्रांस के गैर मुल्की तिजारत और इक्तसादी उमूर के वजीर के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा करने, भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती माहदे पर तेजी से अमल दरामद और एरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग UPI के इंजमाम और मुश्तरका इख्तराई इकदाम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन में मजीद इजाफा करने के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब गोयल ने कनाडा के बैन अल-अक़वामी तजारत से मुतालिक वजीर मनिंदर सिंधु के साथ एक मीटिंग की, जिसमें भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकत दारी से मुतालिक माहदे सीपा पर जारी मुजाकरात का जायजा लिया। इस माहदे का आगाज 3 मार्च के महीने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के वजीर आजम मार्क कर्नी ने किया था, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दोतरफा तजारत को साल 2030 तक $50 अमरीकी तक बढ़ाना है। सऊदी अरब के अपने हमनसब माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने भारत और खलीज तआवुन कौंसिल GCC के दरमियान आज़ादाना तजारती माहदे पर मुजाकरात और दोतरफा तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात में मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात का जायजा लिया। जनाब गोयल ने जनूबी कोरिया के वजीर तिजारत पार्क जुंग सुंग के साथ भी मीटिंग की, जिसमें भारत कोरिया जामे इक्तसादी शराकत दारी से मुतालिक माहदे IKCPA की मुजवजा पेशरफ्त, मुतवाजन तिजारती तरक्की और भारत की ज़रई फार्मास्यूटिकल और मरीन प्रोडक्ट्स की बेहतर मार्केट रसाई पर बातचीत हुई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और फूल नजर किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, JP नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अकीदत पेश किया। BJP सदर नितिन नवीन, कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी, अरकान पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सीनियर ओहदेदार और स्कूली तलबा ने भी खिराज अकीदत पेश किया। आज ही साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के 122वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कौमी राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल विजय घाट जाकर गुलाए अकीदत नजर किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाइख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपने खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह इस नजरिए को अटल टनल के जरिए अमली शक्ल दी गई।
1: अटल टनल जदीद इंजीनियरिंग और सरहदी सड़कों की तंजीम की तकनीकी महारत की एक बेहतरीन मिसाल है। ये टनल दुनिया भर में मशहूर रोहतांग पास के नीचे इंतहाई दुश्वार जोग्राफियाई आलात में तामीर की गई है। ये टनल हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कबायली जिले लाहौल स्पीति के दरमियान हर तरह के मौसम में साल भर मजबूत रबता फराहम करती है। ये टनल रियासत में तरक्की, सियाहत और स्ट्रेटजिक क्रिएटिविटी के हवाले से एक अहम मकाम के तौर पर भी उभरी है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: भारत के महकमे मौसमियात ने आज अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात व मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों से अगले 24 घंटे के दौरान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने के कवी इम्कान हैं। महकमे ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक गरज चमक के साथ छींटा पड़ने और बिजली चमकने के इम्कान हैं। जापान के आईची नगोया में जारी एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज मुख्तलिफ खेलों में कई तमगे जीतकर अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारत के तमगों की कुल तादाद 71 हो गई है। इनमें सोने के 12, चांदी के 25 और कांसे के 34 तमगे शामिल हैं। और आखिर में खास खबर एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कप्तान सुमित मछार से बातचीत की। उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के तिजारत से मुतालिक वजीरों की मीटिंग से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसब वज़रा से दोतरफा मीटिंग्स की। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को आज उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai Captain Smith Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting of an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smith's courage, presence of mind and composure saved many lives. The Prime Minister lauded Smith's spirit, saying that the country can proudly say that Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their lives to save others. During the interaction, an emotional Smith shared that PM Modi is his biggest idol and expressed how special and proud he felt to receive the call.
3: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, aur aapki soojbujh ne, and a fraction of second mein itne nirnay kar liye aapne, aur itne logo ki jaan bachayi. और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।

0: India also secured a silver medal in the mixed recurve team archery event. The Indian duo of Kumkum Mohod and Dheeraj Bommadevra finished runners-up after losing 3-5 to China in a closely contested final. In sailing, Netra Kumanan won the bronze medal in the women's dinghy event. The 29-year-old Indian sailor finished third with overall 14 points. With these performances, India climbed to sixth position in the overall medal standings. The country's medal tally rose to 72 medals, comprising 12 gold, 25 silver and 35 bronze. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of the southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and most parts of Gujarat and Madhya Pradesh during the next 24 hours. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai, Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस कनाडा सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रधानमंत्री ने स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ
1: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मित ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया
3: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मेरे ऐसा सो रहा था कि एक राह नीचे जा रहा और बाकी सबकी भी उतनी ही उसमें रोल था बट जान के मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी

0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6-8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
5: मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
4: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउजी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण

0: पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मुंबई केंद्र, अस्मिता वाहिनी, दुपारचे 2:30 वाजले आहेत। नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात ऐकूया भूषण गोडे यांचं शास्त्रीय गायन। त्यांनी गायलेला राग मधुमती आपण ऐकणार आहोत। विलंबित एकतालातील बंदिशीचे बोल आहेत ख्वाजा बंदे नवाज। द्रुत तीन तालातील बंदिशीचे बोल आहेत मैं आऊ तोरे मंदरवा। तबला साथ संदेश पोपटकर, हार्मोनियम साथ श्याम देशपांडे यांनी केले आहे। ऐकूया राग मधुवंती, कलाकार भूषण गोडे। ही निर्मिती आकाशवाणी नागपूर केंद्राची।

एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

0: आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड अने न्यूज ऑन EIR मोबाइल एप्लिकेशन पर एकदम खरा सोना जो कार्यक्रम गीत गुर्जरी अने गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आज आपनी साथे छे हूँ तरुलता करोड़िया
1: अने हूँ मुग्धा मारू
0: अमारा बन्नेना तमाम श्रोता मित्रों ने सस्नेह नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। प्रधानमंत्री का फोन आना उनके लिए खुशी और गर्व की बात है।
2: उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी ही उसमें रोल था। बट जान के मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाया।
0: कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 1.86 लाख करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GE3 के तीसरे चरण को मंजूरी देने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। इसे देश की जनता और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे देश को व्यापक लाभ प्राप्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि ये पहल भारत को अपनी बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने, बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत ने 15 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 75 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today spoke to the brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting off an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smith's courage, presence of mind and composure saved many lives. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarv Dharm Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi at Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarv Dharm Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at the Rajghat. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, the United States. The discussions focused on strengthening bilateral trade relations with the respective countries. During his meeting with France's Minister Delegate for Foreign Trade and Economic Attractiveness, Nicolas Forissier, Goyal discussed ways to expand trade and investment ties, expedite the India-EU Free Trade Agreement and deepen cooperation in areas including aerospace manufacturing, UPI integration and joint innovation initiatives. In Punjab, Border Security Force BSF has shot dead two Pakistani intruders today. According to BSF sources, they were illegally crossing the India-Pakistan border in the Taran Taran sector. Not heeding to the warnings to stop, they continued advancing, forcing the deployed security personnel to open fire. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 5 gold medals, 1 in wrestling, 3 in boxing, and 1 in archery, in a spectacular display of skill, determination, and sporting excellence. Indian wrestler Sujit Kalkal scripted a remarkable comeback to win the gold medal in the men's 65 kg freestyle event. The 23-year-old Indian produced a stunning fight back in the final, recovering from a 4-9 deficit to defeat Tajikistan's Abdul Mazid Kudiev 10-9 and clinch the Asian Games title. With this victory, Sujit has joined the elite company of Yogeshwar Dutt and Bajrang Punia, becoming the third Indian wrestler to win Asian Games gold in the men's 65 kg category. In boxing, Parveen Huda won the gold medal in the women's 65 kg category, defeating Chinese Taipei's Nian Qin Chen 3-2 in a split decision in the final. Ankush Panghal clinched the gold medal in the men's 80 kg category, defeating South Korea's Kim Min-Chiang by a split decision 4-0 in the final. Earlier, Lovlina Borgohain also clinched a gold medal in the women's 75kg category, defeating China's Bao Zhiyi by a unanimous 5-0 decision in the final. It is India's only second gold medal in women's boxing at the Asian Games, following Mary Kom's gold in 2014.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, और इस चैनल पर कुछ सदाबहार गीत लेकर मैं हेमा खन्ना आपके साथ हूँ।

0: to registered or speed post. Details and the application form is available on the website, that is at www.nidmp.ac.in/careers. The last date receipt of applications is 30th October 2026. The Office of the Jute Commissioner, Kolkata invites applications for one post of a Deputy Director, Marketing, Group A gazetted position in pay level 11 on deputation basis, including short-term contract. Eligible officers from central or state governments, union territories, recognized research institutions, universities, PSUs and other eligible organizations may apply. The maximum age limit is 56 years as on the closing date. Applications in the prescribed performer along with the required clearances and service documents should be submitted through appropriate authority. The last date for receipt of applications is 17th November 2026. For details, do look up the website at www.texmin.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2027 को इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2027 का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत नोटिस आयोग की वेबसाइट पर 16 सितंबर 2026 को जारी किया जा चुका है। इंजीनियरी सेवा की प्रधान परीक्षा का आयोजन होगा 18 जून 2027 को। उम्मीदवारों को केवल upsconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। किसी अन्य माध्यम से आवेदन करने की अनुमति नहीं है। पात्रता संबंधी शर्तों, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा योजना, परीक्षा केंद्रों, आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी दिशा निर्देशों आदि के लिए उम्मीदवार परीक्षा का विस्तृत नोटिस देखें। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी ग्रेड बी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2026 का आयोजन दिनांक 12 और 13 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा का विस्तृत नोटिस आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16 सितंबर 2026 को उपलब्ध हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 6 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक किया जा सकता है। उम्मीदवारों को केवल upsconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। किसी अन्य माध्यम से आवेदन की अनुमति नहीं है। पात्रता संबंधी शर्तों, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम और योजना, परीक्षा केंद्रों, आवेदन प्रपत्र भरने के दिशा निर्देशों आदि के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा का विस्तृत नोटिस देख लेना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग इन पदों पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए अपनी वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद हैं राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में सहायक विधायी परामर्शदाता। 8 रिक्तियां उपलब्ध हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC में विशेषज्ञ ग्रेड 2 कनिष्ठ वेतनमान, कार्डियोलॉजी के पद के लिए 1 रिक्ति उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ये वेबसाइट देख लेनी चाहिए और इन पदों के लिए आवश्यक तमाम शर्तें और जानकारियां भी इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट है upsconline.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से सभी श्रोताओं को फरहत नाज और अनुजा कुमार का नमस्कार।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून फरहत।
1: जी अनुजा, आज 2 अक्टूबर है, एक ऐसी तारीख जो सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे देश की सोच का हिस्सा है।

0: आज का दिन है उस व्यक्ति को याद करने का जिसने दुनिया को बताया कि सबसे बड़ी लड़ाई बिना हथियार उठाए भी जीती जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रही हैं राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें पूरा देश प्यार से बापू कहता है। बापू ने हमें सिखाया कि दुनिया को जीतने के लिए हथियारों की नहीं, हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। और आज के इस विशेष कार्यक्रम का आरंभ हम बापू के एक अनमोल विचार से करते हैं, आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप संसार में देखना चाहते हैं। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और अनुजा से जानते हैं गांधी जयंती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।
1: यस फरहत, लेट मी बिगिन विद अ कोट। जनरेशंस टू कम विल स्केर्स बिलीव दैट सच अ वन एज दिस In flesh and blood, walked on this earth. Yes, I truly believed Einstein captured something profound about Gandhiji in these words. Today is a very special day to remember the virtues of Mahatma Gandhi, which proved that the greatest battles can be won without picking up a weapon. His core philosophies of Ahimsa and Satyagraha, giving India its independence and gave the world a timeless blueprint of for a peaceful change. Gandhi Jayanti is profoundly important to us because it honors the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of the nation, whose leadership observed every year on this day, that is 2nd of October, serves as a national pause to reflect on the core virtues of truth, peace and community action. The day's impact stretches far beyond India's borders. In 2007, the United Nations declared 2nd of October as the International Day of Non-Violence, making it a global symbol for conflict resolution, tolerance and human rights.
0: जी अनुजा, लेकिन आज एक और महापुरुष की जयंती है जिन्हें हम भूल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ देने का निर्णय लिया। और उस समय वो शख्स सिर्फ 16 साल के थे। उनका नारा था जय जवान जय किसान।
1: यस फरहत, राइटली सेड, वी रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी फॉर हिज एक्सेप्शनल ऑनेस्टी, डीप ह्यूमिलिटी एंड ऑस्टियर लाइफस्टाइल, फेमसली सेटिंग एन एग्जांपल ऑफ इंटेंस मॉरल accountability in public office. A salute to the men who led us to the freedom of thoughts, words and action. We will discuss more on this in our Dateline segment later today. Though it is a national holiday in our country, but we are always there for your entertainment and news updates right here from the studios of Akashvani. And here are the headlines at this hour of the day.
0: जी अनुजा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 Trade Ministers meeting to strengthen trade relations.
0: कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
1: IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favorable for further withdrawal of southwest monsoon for northwest India.
0: एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
1: And as we usually do, this is the time for our segment Dateline India, Farhat, in which we take a look at the developments taking place

0: मातम में शामिल है जमीन और आसमान वाले, अहिंसा के पुजारी सोग में है दो जहां वाले। तेरा अरमान पूरा होगा ए अमनो अमान वाले, तेरे झंडे के नीचे आएंगे सारे जहां वाले। मेरे बूढ़े बहादुर उस बुढ़ापे में जवान मर्दी, निशान गोली की सीने पर है गोली के निशान वाले। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती, इस अवसर पर नजीर बनारसी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो गांधी जी को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अमन और अहिंसा की उस सोच के रूप में देखती हैं, जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
1: एब्सोल्युटली फरहत, 2 अक्टूबर, अ डेट दैट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द कॉन्शियस ऑफ द होल वर्ल्ड। इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बिलव्ड एंड रिवर्ड महात्मा गांधी, द मैन हुज ग्रेटेस्ट वेपन वॉज नॉट अ सोर्ड, नॉट अ गन, बट एन आइडिया, the idea of ahimsa, that is non-violence.
0: और इसीलिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी की विचारधारा की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को मानते हुए और शांति, सहिष्णुता और आपसी समझ बूझ की संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया।
2: महात्मा गांधी, an apostle of non-violence and preacher of truth, was born on 2nd of October 1869 in Gujarat. Gandhiji studied law at the University of Bombay for 1 year, then at the University College London, and was admitted to the Bar of England. He returned to Bombay and practiced law there for 1 year, then went to South Africa to work for an Indian firm in Natal. In 1906, Gandhiji, for the first time, organized a non-violent resistance against the Transvaal Government's Registration Act. He was jailed on many occasions along with thousands of his supporters.
3: Back in India, Gandhi became active in the struggle for Indian independence. In 1918, Gandhiji opposed the increasing tax levied by the British during the devastating famine. He was arrested in Champaran in Bihar for organizing civil resistance.
2: He urged Indians to replace British goods with their own fabrics and goods.
3: On New Year's Eve, December the 31st, 1929, the Indian National Congress unfurled its flag of independence.
2: From March 12th to April 6th, 1930, Gandhiji made the famous Salt March to Dandi. The successful campaign led to the reaction of the British government and imprisonment of over 60,000 people for making or selling salt without a tax.
3: The British opened fire on the unarmed crowd and shot hundreds of demonstrators. Eventually, the British government, represented by Lord Irwin, signed the Gandhi-Irwin Pact in March 1931, agreeing to free all political prisoners.
2: Gandhiji campaigned to improve the lives of the so-called untouchables. His Quit India campaign led to mass arrests on an unprecedented scale of struggle. He was arrested in Bombay and was held for 2 years.
3: During his captivity, his wife, Kasturba, passed away, and his secretary, Mahadev Desai, also died.
2: India won independence in 1947, followed by partition of India. Gandhiji was pained by the clashes that happened after partition. On 30th of January 1948, Gandhiji was assassinated while on his way to a prayer meeting.
3: The ashes of Mahatma Gandhi were split in portions and sent to all states of India to be scattered in rivers.
1: But what does non-violence really mean? Is it simply staying away from a fight? Is it remaining silent when something is wrong? Or is there something much deeper hidden in the word ahimsa? Well, if non-violence simply meant avoiding a fight, then walking away from every argument would make us all a Gandhian, isn't it?
0: बिल्कुल अनुजा, और इसीलिए अहिंसा का मतलब उससे कहीं ज्यादा है। गांधी जी का जवाब साफ था, अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का एक रूप है। ये बिना नफरत के अन्याय के खिलाफ खड़े होने, बिना बदले की भावना की विरोध करने और तब भी इंसानियत को चुनने का साहस है, जब गुस्सा ज्यादा आसान रास्ता लगता हो।
1: As Gandhi ji famously said, non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. Think about that. A man standing against an empire without an army of his own, people marching thousands of kilometers kilometers without weapons. Ordinary Indians refusing to cooperate with an unjust system through discipline, courage and satyagraha. That's the power of ahimsa.
0: बिल्कुल सही अनुजा, 1930 की दांडी यात्रा इसी सोच का एक ऐतिहासिक उदाहरण बनी, बिना संघर्ष को हिंसक लड़ाई में बदले, एक अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना। और शायद यही बात गांधी के विचारों को इतना प्रभावशाली बनाती है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें अन्याय को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बल्कि उन्होंने हमें इसका सामना करने का एक दूसरा तरीका दिखाया, विरोध करो लेकिन अपनी इंसानियत मत खो।
1: एंड परहैप्स दिस इज वेयर द स्टोरी कम्स फुल सर्कल। द रीसेंट इंसिडेंट ऑफ कैप्टन स्मिथ मचार्स करेज इज वन मोर रिमाइंडर ऑफ इंडियाज डीप रूटेड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी एंड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट वायलेंस।
0: बिल्कुल, गांधी जी और उनके अहिंसा के संदेश के बारे में सोचिए, या 26/11 के आतंकी हमले के दौरान तुकाराम ओंबले की बहादुरी, या फिर यात्रियों की रक्षा करते हुए निर्जा भनोट का बलिदान। यहाँ तक कि अगर मैं वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना जैसी प्राचीन भारतीय मान्यताओं की बात करूँ, तो ये सभी उसी भारतीय भावनाओं को दर्शाती है कि इंसानियत सबसे पहले है।
1: एंड फ्रॉम देयर ऑन कमिंग स्ट्रेट बैक टू गांधी जी, अहिंसा डज नॉट मीन दैट वी बिकम पैसिव, इट मीन्स वी रिफ्यूज टू मेक violence or language. Even in everyday life, think about something as simple as an argument. Someone speaks harshly to you, your instinct says, give it back. But what happens if you pause? Your answer firmly but without insult.
0: बिल्कुल सही, और आप असहमति जताते हैं लेकिन बिना किसी को नीचा दिखाए। आप अपनी बात पढ़े रहते हैं लेकिन असहमति को नफरत में नहीं बदलते, हालात बदलते हैं। और शायद वही छोटा सा पल होता है जब अहिंसा का असली अभ्यास शुरू होता है, क्योंकि हिंसा हमेशा शारीरिक नहीं होती, ये नफरत भरे शब्दों, असहिष्णुता, अपमान और किसी की बात को ना सुनने में भी हो सकती है। कहा जाता है ना बोलने से पहले सोचे, क्योंकि एक पल में कही गई आपकी बात किसी के लिए बरसों का जख्म बन सकती है।
1: And his ideas traveled far beyond India's freedom movement, Farhad. Martin Luther King Jr., who was deeply influenced by Gandhi, famously said, "Hate cannot drive out hate. Only love can do that." That is the extraordinary journey of an idea born in India's struggle for freedom, from the streets and villages of India to movements for civil rights and social change across the world.
0: और शायद एक बेहतर समाज की शुरुआत बहुत ही साधारण चीज से होती है, बड़े बड़े भाषणों या नारों से नहीं, बल्कि इस बात से कि जब हम किसी दूसरे इंसान से असहमत होते हैं तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
1: Today the world faces wars, conflicts, hatred and deep divisions. In such a world, Gandhi's message does not belong only to history books, it belongs to the present, it belongs to all of us.
0: तो अहिंसा के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आइए हम उस व्यक्ति को याद करें जिनका सरल संदेश भारत से दुनिया भर में पहुंचा, सत्य, अहिंसा, करुणा और साहस।
1: And perhaps in a world that often asks us to react instantly, Gandhi leaves us with a timeless thought. Before we choose how to fight, can we first choose what kind of human being we want to remain? That is the enduring power of Gandhi, and that is the message India continues to share with the world.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
1: So let's take you all to Bengaluru first, where Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar unveiled the first among 87 Gandhi Memorial Pillars in Bengaluru today to mark the Gandhi Jayanti celebrations. The state government has planned to erect such Gandhi Memorial Pillars at all the historical sites across the state where Mahatma paid a visit during pre-independence. We have more on this from our correspondent.
4: A Gandhi Memorial Pillar was unveiled at the Government College of Fine Arts campus on Ambedkar Vidhi in Bengaluru today. This is the site where Mahatma Gandhi, accompanied by Kasturba Gandhi, had made his very first visit to Karnataka on May 8, 1915. The father of the nation had unveiled a portrait of Gopala Krishna Gokhale at that time. This initiative of erecting the Gandhi Memorial Pillars at 87 identified locations across Karnataka is part of Gandhi Bharat program announced in the state budget. All these sites have historical significance and are associated with Bapuji. Gandhi Bharata campaign commemorates the centenary of the historic Congress session held in Belagavi in 1924, presided over by Mahatma Gandhi. During the unveiling program today, the renowned sculptor of Memorial Pillar, Arun Yogi Raj was felicitated. The pillar is a 10 feet long monolithic granite structure with a width of 3.25 feet. It features the national emblem, the four-faced lion at the top, followed by the Ashoka Chakra, a depiction of Mahatma Gandhi in a meditative pose. It also has the preaching of Mahatma called Seven Social Sins. At the bottom is his signature and an image of the Charkha, the spinning wheel. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
0: और अब चलते हैं सीधे पटना, जहां पर अनुजा इस समय पिंडदान की प्रथा निभाई जा रही है।
1: जी हाँ, श्राद्ध का महीना चल रहा है।
0: जी बिल्कुल, श्राद्ध का महीने की बात की जाए और बिहार का गया जी याद ना आए तो कैसे हो सकता है। अनुजा सोचिए, फल्गु नदी का किनारा, सुबह का समय और दूर दूर तक अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करते श्रद्धालु। इन दिनों बिहार का गया जी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कोई अपने माता पिता और पूर्वजों की स्मृति लेकर तो कोई परिवार की पुरानी परंपरा निभाने।
5: 25 सितंबर से शुरू हुए पितृपक्ष मेले में अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालु गया जी पहुंच चुके हैं। उत्तर मानस, दक्षिण मानस, कनखल, उदीची और जीवालोल जैसी प्रमुख वेदियों के साथ विष्णुपद मंदिर, देवघाट, प्रेतशिला, रामशिला और सीता कुंड में भी श्राद्ध कर्म और पिंडदान का सिलसिला जारी है। 6,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात है। भीड़ में कोई भी अपने परिजनों से बिछड़ न जाए, इसके लिए AI कैमरों और QR कोड वाले रिस्ट बैंड की मदद ली जा रही है। 20,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा चुके हैं। जयपुर से आए मोहनलाल राउत भीड़ के बीच व्यवस्था देखकर संतुष्ट हैं।
6: मैं मुख्यमंत्री महोदय और गया प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि इतने आदमी होते हुए भी इतनी व्यवस्था है कि कोई गड़बड़ नहीं है।
5: गया जी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और भोजन का भी इंतजाम किया गया है। गांधी मैदान में 2,500 बेड की टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ जीविका दीदियों के माध्यम से 30 रुपए में सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और बिहार आने वाले हर श्रद्धालु की भाषा एक जैसी हो ये जरूरी नहीं, इसलिए पिंडदान गया जी ऐप और वेबसाइट के साथ AI आधारित भाषा अनुवाद की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बंगाल से आए एक श्रद्धालु ने भी यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। रायपुर से आए प्रमोद कुमार अग्रवाल के लिए भी गया जी की ये यात्रा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रही। उनका कहना है कि प्रशासन और शासन की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है।
7: यहाँ की व्यवस्था बहुत ही बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरा जो हम लोग जब से एंट्री किया वहाँ से सब लोग बता रहे हैं सब सही सही कहाँ पर है और दिक्कत नहीं हो रही, जो भी सब अपना सहयोग कर रहे हैं।
5: गया जी में पितृपक्ष का ये मेला हर साल लोगों को उनकी जड़ों और पुरखों से जोड़ता है। इस बार भी फल्गु नदी के किनारे आस्था का ये सिलसिला जारी है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार पटना से निधिश्री की रिपोर्ट।
0: और पटना से अब चलते हैं सीधे हिमाचल प्रदेश, जहां पर सड़क सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण रखरखाव और सड़क परिसंपत्तियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ऐसा सुदृढ़, सुरक्षित और विश्वसनीय सड़क नेटवर्क तैयार करना है जो राज्य के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र और चुनौतीपूर्ण मौसम की परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। एक रिपोर्ट।
8: सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि ये गांवों और समुदायों को बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही कृषि, बागवानी, उद्योग और वानिकी क्षेत्रों के विकास में भी सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में पहाड़ी राज्य हिमाचल में सड़क नेटवर्क की मजबूती, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश सरकार ने सड़कों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए इस वर्ष सड़क जल निकासी नीति की है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी को सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण मानते हुए इस नीति में सड़क योजना व डिजाइन का अभिन्न हिस्सा जल निकासी व्यवस्था को बनाया गया है। वर्षा की तीव्रता और जल ग्रहण क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर जल निकासी संरचनाओं की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही भूस्खलन और पानी के रिसाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवारक उपायों का प्रावधान किया गया है। राज्य में नियोजित बुनियादी ढांचे सहित अंतिम छोर तक सड़क संपर्क उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों के रखरखाव की व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार साझा गलियारों में पानी, बिजली और दूरसंचार सेवाओं के लिए भूमिगत बहु उपयोगिता डक्ट विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। इससे बार बार सड़क काटने और खुदाई करने की आवश्यकता कम होगी और सड़क बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की इन पहलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सड़क प्रबंधन की एक अधिक रोकथाम आधारित, समन्वित और आधुनिक व्यवस्था की ओर

0: भर रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
1: श्रोताओं, अब चलते हैं सीधे खेल के मैदान में और जानते हैं वहां के हलचल।
2: यस फरहत, सुपर डे टुडे, द गोल्ड रश कंटिन्यूज फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स इन आईची नागोया जापान एज इंडियन एथलीट्स डिलीवर्ड अ स्टेलर परफॉर्मेंस ऑन 13th डे टुडे, क्लिंचिंग 5 गोल्ड मेडल्स, 1 इन रेसलिंग, 3 इन बॉक्सिंग एंड 1 इन आर्चरी इन अ स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ स्किल, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्टिंग एक्सलेंस।
1: जी अनुजा, भारत के लिए बहुत ही गौरव का पल है ये। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में शानदार वापसी करते हुए गोल्ड मेडल जीता। 23 साल के इस भारतीय पहलवान ने फाइनल में जबरदस्त वापसी की। 4-9 से पिछड़ने के बाद उन्होंने ताजिकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदियेव को 10-9 से हराया और एशियाई खेलों का खिताब अपने नाम किया।
2: विद दिस विक्ट्री सुजीत हैज जॉइंड द एलीट कंपनी ऑफ योगेश्वर दत्त एंड बजरंग पुनिया, बिकमिंग द 3rd इंडियन रेसलर टू विन एशियन गेम्स गोल्ड इन द मेन 65 किलोग्राम कैटेगरी।
1: और अगर बात की जाए बॉक्सिंग की, तो परवीन हुड्डा ने महिलाओं की 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे की नियन चेन चेन को स्लिप्ड फैसले में 3-2 से हराया। अंकुश पंघाल ने पुरुषों की 80 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता।
2: Earlier, Lovlina Borgohain also clinched a gold medal in the women's 75 kg category, defeating China's Bao Yi by a unanimous 5-0 decision in the final.
1: और अब बात इतिहास रचने की बात करते हैं। तीरंदाजी में भारत की महिला रिकर्व टीम ने एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
2: India also bagged silver in the mixed recurve team event. Kumkum Mahor and Dheeraj Bamma Devara finished runners-up after going down 3-5 to China in a closely contested final. In Sepak Takraw, India secured the bronze medal in the men's quadrant event. In sailing, Netra Kumanam clinched bronze in the women's dinghy event. With these impressive performances, India has climbed to the 5th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 75, including 15 gold, 25 silver and 35 bronze medals.
1: और अब चलिए सुनते हैं आजादी का सफर, जहां हम बात करेंगे कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में।
3: Today marks the birth anniversary of another sterling personality of India, Lal Bahadur Shastri. Shastri was born on 2nd of October 1904 in Mughal Sarai. He had his education in Uttar Pradesh. Inspired by the Mahatma's call for students to withdraw from government schools and join the non-cooperation movement, Shastri withdrew from school the next day, actively participating in picketing and anti-government demonstrations.
4: He was soon arrested and jailed, but was then let off as he was still a minor. Among the first students of the new institution, Kashi Vidyapeeth, a nationalist institution, Shastri graduated with a first-class degree in philosophy and ethics in 1925. He was given the title Shastri, meaning scholar.
3: He was imprisoned several times during the freedom struggle.
4: Following India's independence, Shastri ji became the Minister of Police and Transport in Uttar Pradesh. As the Transport Minister, he was the first to appoint women conductors.
3: Later, Shastri ji was made Union Railways Minister in the first Cabinet of Republic India in 1952. He also served as the Minister of Commerce and Home Minister.
4: After the demise of Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri became the second Prime Minister of India. He promoted the White Revolution, a national campaign to increase the production and supply of milk. Underlining the need to boost India's food production, Shastri also promoted the Green Revolution in India in 1965.
3: Shastri ji charged the entire nation with the same enthusiasm during the 1965 India-Pakistan War, just the way Gandhi had done during the national movement before independence.
4: While Gandhi's slogan was do or die, Shastri proclaimed Jai Jawan, Jai Kisan. Their philosophy was rooted in spirituality. They practiced what they preached.
2: Moving on, we also pay tribute to the trailblazing freedom fighter, social reformer and independent India's first health minister, Rajkumari Amrit Kaur. Born into a royal family of Kapurthala, she chose a life of relentless public service over royal luxury. And she was a close associate of Mahatma Gandhi and a vital member of

0: और आज जन्मदिन है भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता आशा पारेख का। वर्ष 1959 से 1973 तक हिंदी फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक रही आशा पारेख।
1: फरत, लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस चार्म ऑफ द स्टार थ्रू दिस मेडली एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस आफ्टरनून मैगजीन।

0: कहां?
1: तो अब वक्त हो चला है हमारे भी चलने का अनुजा।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
4: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
3: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

कई देशों में भी भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अलीपुर द्वार के बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुक्सा वन में एक बाघिन को छोड़ा। ये कदम भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूदृश्य संरक्षण और प्रजाति संरक्षण के प्रयासों से प्रेरित होकर बुक्सा में बाघों को पुनः स्थापित करने का वादा पूरा किया गया है। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6,000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की आय में वृद्धि करना है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन पर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इस बार मामला सरकारी निविदा देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने श्री सेन के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री रहते एक सरकारी परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं सात सुरों के रंग। मैं कुसुम लेकर आई हूँ आज की कहानी नैना और देव की, शीर्षक रॉन्ग नंबर।

जी हाँ, कहानी नैना और देव की। नैना लगातार डॉक्टर टंडन को फोन मिला रही थी। वो बेहद घबराई हुई थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो रात के सन्नाटे में मानो चीख सी रही थी। हेलो हेलो डॉक्टर टंडन, माँ की हालत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप सुन रहे हैं ना? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? गरजते बादल कुछ सुनने कहां दे रहे थे। अचानक बिजली चमकी और लाइट चली गई। नैना को घबराहट में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था और माँ के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। अपनी दुनिया को लुटती देखकर वो जैसे तैसे फैमिली डॉक्टर टंडन का नंबर ढूंढकर उन्हें फोन मिला रही थी, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अचानक किसी ने फोन उठाया। उधर से हेलो की आवाज सुनते ही नैना फफक पड़ी। डॉक्टर साहब, बस आप जल्दी से आ जाइए, वरना माँ को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आप देर मत कीजिए प्लीज। आप सुन रहे हैं ना?

लेकिन मैम मैं उधर से किसी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नैना कहाँ सुन पाई, जल्दी से बोली, बस आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। ठीक है मैम, आप अपना एड्रेस बताइए, उधर से कहा गया। नैना ने जल्दी से पता नोट कराया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई। नैना माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। वो लगातार रोई जा रही थी। ऐसी हालत में उसे दूर दूर तक कोई धैर्य बढ़ाने वाला भी नजर नहीं आ रहा था।

नैना लगातार अपनी माँ के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके पिता उसे और उसकी माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। तब से माँ ने ही उसे जैसे तैसे पाला था और आज वो इस हाल में है। कैसे जिएगी वो अपने माँ के बिना? यही सोच सोच कर डर और घबराहट से नैना का बुरा हाल था। वो अपनी माँ के बिना एक पल भी जीने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। आईसीयू के बाहर खड़ी नैना बड़ी बेसब्री से अपनी माँ की कुशलता जानने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक किसी ने हौले से कंधे पर हाथ रखा। नैना ने पीछे पलट कर देखा तो एक हाथ से दिव्यांग एक लड़का था जो उसे तसल्ली दे रहा था। आप रोइए मत, आंटी ठीक हो जाएंगे, खतरे की कोई बात नहीं है। और कुछ ही देर बाद किसी ने उसे बताया कि नैना की माँ अब बेहतर है, उनकी तबीयत अब ठीक है।

नैना को इस तरह किसी अजनबी का अपनेपन से बात करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। नैना ने सोचा कि ये यहीं का कोई वार्ड बॉय या कोई कर्मचारी होगा। खैर, उसने देखा कि वो लड़का लगातार उसकी माँ की देखभाल ऐसे कर रहा था जैसे कि कोई अपना करता है, लेकिन नैना ने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। थोड़े ही दिनों में नैना की माँ ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई और नैना ने राहत की सांस ली।

अचानक उसने देखा कि ये किसका नंबर है जिस पर उसकी पिछले दिनों बात भी हुई है। उसे याद आया कि उस दिन घबराहट में उसने डॉक्टर टंडन की जगह शायद किसी और का नंबर मिला दिया था और इस नंबर पर उसकी बात भी हुई है। अगर डॉक्टर टंडन से बात नहीं हुई तो फिर ये एम्बुलेंस किसने भेजी? नैना ने देखा कि वो नंबर जिस पर बात हुई है अभी भी आउटगोइंग कॉल की लिस्ट में मौजूद था। कांपते हाथों से उसने वो नंबर डायल किया। हेलो, एक बेहद प्यारी मीठी और सुकून देने वाली आवाज सुनाई दी। मैं नैना बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं देव बोल रहा हूँ। देव जी, अगर आपको याद हो उस दिन मैंने आपका नंबर गलती से मिला दिया था। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान और घबराई हुई थी, देव बोला। तो वो एम्बुलेंस? जी हाँ, मैंने ही भेजी थी, उसकी बात को काट कर देव बोला। ओह शुक्रिया, मुझे तो घबराहट में कुछ ध्यान ही नहीं रहा, नैना ने झिझकते हुए कहा। कोई बात नहीं, हो जाता है। खैर अब माँ जी कैसी हैं? अच्छी हैं आप, नैना ने कहा। ध्यान रखिएगा उनका और अपना भी। बहुत प्यारी आवाज थी, राहत और सुकून से भरी हुई और उसमें घुली हुई स्नेह और फिक्र नैना के दिल में सीधे सीधे उतर रहे थे और नैना के नैना देव का एक चित्र बनने लगे थे।

अब तो अक्सर नैना और देव की बातें फोन पर होने लगी थी। लंबी लंबी बातें, प्यारी प्यारी बातें, ढेर सारी बातें। देव से बातें करते वक्त नैना का दिल करता कि वो बोलता रहे और नैना बस खामोश होकर सुनती रहे। देव की आवाज में एक गजब की कशिश थी, अजीब सी मिठास थी जो सुनने वालों की रूह तक उतर जाती थी। बातें भी वो बहुत प्यारी करता था, हर बात सुलझी और समझदारी से भरी हुई। अपनी मोहक आवाज और मीठे अंदाज की वजह से देव हर पल नैना के दिल में उतरता जा रहा था और नैना दिल ही दिल में उसके सपने सजोने लगी थी।

सपनों में ही सही, दूर दूर से ही सही, बातों बातों में ही सही, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे। ये अलग बात है कि अब तक दोनों ने एक दूसरे को देखा तक ना था। जब भी नैना देव से मिलने की बात करती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। एक दिन बातों के दौरान देव ने नैना से पूछा, नैना तुम्हें एक पुरुष में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? पुरुष में? नैना थोड़ा सा कुचाई, फिर बोली, बाहें अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मजबूत किले की दीवारें हों जिसमें एक लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन नैना, अगर किसी की बाहें ही ना हो तो? देव, तुम भी ना कैसी बातें करते हो। मैं जानती हूं कि मेरा देव इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, लेकिन नैना, अगर मैं तुम्हारे सपनों के राजकुमार जैसा ना हुआ तो कुछ नहीं देव, तुम जो भी हो जैसे भी हो मुझे पसंद हो बस, नैना ने लापरवाही से कहा। आखिर प्यार दीवाना जो होता है

जी हाँ, प्यार दीवाना होता है, लेकिन सपनों और बातों के सहारे सिर्फ रिश्ते जुड़ते हैं, जिंदगी नहीं बसर होती। उसके लिए मिलना और एक दूसरे के साथ निभाना भी जरूरी होता है। नैना के बहुत कहने पर देव मिलने के लिए मान गया। पहली मुलाकात थी, एक बस स्टैंड पर नैना को आना था और फिर वहां से दोनों को साथ जाना था, यही तय हुआ था। नैना आज बहुत खुश थी, अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनी और पहले से कहीं ज्यादा वो हसीन लग रही थी। खुद को आईने में निहार कर मुस्कुराई और चल पड़ी देव से मिलने। आज उसका लंबा इंतजार खत्म होने वाला था, जिसको देखने के लिए, मिलने के लिए वो तरस रही थी। आज उससे मुलाकात होने वाली थी। नैना के नैना रंग बिरंगे सपने सजा रहे थे।

टीसी उधेड़ बुन को लिए नैना तय समय से पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच गई और बड़ी ही बेसब्री से देव के आने का इंतजार करने लगी। एक एक पल एक एक जिंदगी की तरह गुजर रहा था। नैना पूरी तरह से देव के ख्यालों में खोई थी कि देव ऐसा दिखता होगा, वैसा दिखता होगा, देव की आवाज के आधार पर जैसा चित्र उसने अपने ख्यालों में बुना था उसी में उलझी हुई थी। अचानक कोई बगल की सीट पर आकर बैठा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। कुछ जानी पहचानी सी सूरत लग रही थी, जैसे पहले कहीं देखा हो। वो भी लगातार नैना को अपनेपन से देखे जा रहा था। जी कहिए, क्या बात है? उसे देखते हुए देखकर नैना बोली, जी आप नैना हैं? हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? अचानक नैना को याद आया कि ये तो वही एक हाथ से दिव्यांग लड़का है जो उस दिन नैना को हॉस्पिटल में मिला था और उसने नैना की माँ की देखभाल की थी। लेकिन देव के ख्यालों में खोई नैना को आज इस लड़के की यहाँ पर मौजूदगी नागवार गुजर रही थी। वो बात करना चाहता था लेकिन नैना ऐसे लड़के को कोई भाव नहीं देना चाहती थी। वो बोली, देखिए उस दिन आपने मेरी माँ का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कुछ और कहना चाहता था लेकिन नैना ने उसे अनसुना कर दिया और ऐसी उपेक्षा भरी नजरों से देखा कि वो लड़का उसे बर्दाश्त ना कर सका और वहां से उठकर चला गया। नैना फिर से अपने

इंतजार करती रही, लेकिन देव नहीं आया। उसका फोन भी बंद था। नैना बुझे मन से वापस लौट आई। हजारों प्रश्न उसके जहन में गौंद रहे थे। आखिर देव ने ऐसा क्यों किया? कहीं देव का प्यार छलावा तो नहीं? कहीं देव ने उसके साथ मजाक तो नहीं किया? कहीं देव के साथ कोई अनहोनी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर जब भी ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में होता है ना, तो हमारा ख्याल भी नेगेटिव ही हो जाता है ना? खैर, नैना भी सवालों के इन्हीं उधेड़बुन में उलझी। बार बार वो रॉन्ग नंबर मिला रही थी और कभी खुद को तो कभी देव को कोस रही थी। इससे ज्यादा वो और कर भी क्या सकती थी? आखिर वो देव के बारे में जानती क्या थी? एक मोबाइल नंबर के अलावा और कुछ भी तो नहीं था उसके पास। कहाँ ढूंढती उसे? समय गुजरता गया, लेकिन ना तो देव का फोन आया और ना ही देव। गुस्से में नैना ने देव को फोन मिलाना छोड़ दिया।

तरह दोनों एक दूसरे से अजनबी होने लगे थे। एक दिन नैना अपनी माँ को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर टंडन के नर्सिंग होम लेकर गई। कुछ बिल भी बाकी था। उसने वहां देखा कि वो वार्ड बॉय आज नजर नहीं आ रहा था। उसने बातों ही बातों में डॉक्टर टंडन से पूछा, वो आपका वार्ड बॉय? उसने उस दिन माँ की बहुत देखभाल की थी, वो कहाँ है? किस वार्ड बॉय की बात कर रही हैं नैना जी? उस दिन आपकी माँ की देखभाल तो डॉक्टर देव चुनेजा कर रहे थे। वो हमारे यहाँ थोड़े ही दिन पहले आए थे इंटर्नशिप करने, लेकिन अब यहाँ से जा चुके हैं। और हाँ, वो आपका बिल भी पे कर गए हैं। कुछ पेपर्स आपको देने के लिए कहा है, ये रहा। नैना के सामने एक एक दृश्य किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा। तो वो तुम थे देव? नैना फुसफुसाई। घर आकर नैना ने जल्दी से डॉक्टर का दिया वो कागज खोला और पढ़ने लगी। नैना, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी ना कि मैं ही देव हूं। नैना, मैं जानता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, इसीलिए तुमसे मिलने से बचता रहा। तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुमसे बात करने के लिए खुद को रोक नहीं पाता था। तुमसे बात करने का बहुत दिल करता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे एक न एक दिन भूल ही जाओगे। अलविदा नैना। नैना को अपनी सोच और अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। डॉक्टर चुनेजा की शक्ल वाकई उसे पसंद नहीं थी, लेकिन देव की आवाज, उसका स्वभाव, उसके विचार नैना के रोम रोम में बसे हुए थे। अजीब सी कश्मकश थी। देव के बिना उसे जीना बेमानी सा लग रहा था। वो रात भर सोचती रही और अंततः उसने एक फैसला किया। जी हाँ, नैना ने फैसला किया कि वो देव को फोन करेगी। एक इंसान में उसकी सूरत से ज्यादा सीरत और उसकी इंसानियत मायने रखती है, और जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है प्यार। यही सोचकर नैना फिर से मिलाने लगी। वही रॉन्ग नंबर।

तो ये थी कहानी रॉन्ग नंबर। आपको कैसी लगी? आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो अब कुसुम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए AIR FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 6 gold medals in hockey, boxing, wrestling and archery in a spectacular display of skill, determination and sporting excellence. Indian women's hockey team clinched the gold medal, defeating China 1-0 in the closely fought final. Lal Siryamani Yermanzote scored the decisive lone goal for India, while goalkeeper Savita Punya produced a crucial save from a penalty stroke to preserve the lead and secure the gold medal. The victory marks India's first women hockey gold at the Asian Games in 44 years, ending a long wait for the title. Earlier, Indian wrestler Sujit Kalkal scripted a remarkable comeback to win the gold medal in the men's 65 kg freestyle event. The 23-year-old Indian produced a stunning fight back in the final, recovering from a 4-9 deficit to defeat Tajikistan's Abdulmazid Kudiev 10-9 and clinch the Asian Games title. With this victory, Sujit has joined the elite company of Yogeshwar Dutt and Bajrang Punia, becoming a third Indian wrestler to win Asian Games gold in the men's 65 kg category. In boxing, Parveen Huda won the gold medal in the women's 65 kg category, defeating Chinese Taipei's Nian Chin Chen 3-2 in a split decision in the final. Ankush Panghal clinched the gold medal in the men's 80 kg category, defeating beating South Korea's Kim Min-seung by a split decision 4-0 in the final. India's star woman boxer Lovlina Borgohain also clinched a gold medal in the 75 kg category, defeating China's Bao Jie by a unanimous 5-0 decision in the final. It is India's only second gold medal in women's boxing at the Asian Games, following Mary Kom's gold in 2014. In archery, women's recurve team created history by clinching its maiden Asian Games gold medal. The trio of Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohor defeated world champion South Korea 5-3 in a thrilling final. India also bagged silver in the mixed recurve team event. Kumkum Mohor and Dheeraj Boma Devara finished runners-up after going down 3-5 to China in a closely contested final. With these impressive performances, India has climbed to 5th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 76, including 16 gold, 25 silver and 35 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi today spoke to the brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting off an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smith's courage, presence of mind and composure saved many lives. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarvdharm Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi at Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvdharm Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid tributes to Mahatma Gandhi at Gandhi Smriti in New Delhi this evening. Several other dignitaries also paid tributes to Bapu. Eminent singers as well as school students sung devotional songs during the program. United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the Grid Strengthening and Battery Storage Scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader. And that is the end of this news bulletin.
2: Akashwani Samachar Seva Prabhag ki prastuti Vishleshan.
3: आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, आज दुनिया में परिवहन का क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के साथ अब इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल परिवहन का एक नया विकल्प है, बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माने जा रहे हैं। भारत में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव योजना। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2024 में की गई थी और इसे अक्टूबर 2024 से लागू किया गया था। योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना, चार्जिंग की सुविधा का विस्तार करना और देश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना है। पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कुल 11,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शुरुआत में इसे 2 वर्ष के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी गई है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि पीएम ई ड्राइव योजना क्या है, इसके तहत किन वाहनों को सहायता दी जा रही है, अब तक इस योजना की क्या उपलब्धियां रही हैं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है।
4: श्रोताओं, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक दो पहिया और तीन पहिया वाहनों से लेकर बसों तक की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी बदलाव को गति देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना पूरे देश में लागू की गई है। योजना का कुल बजट 11,900 करोड़ रुपए है। इसके तहत अलग अलग श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग आधारित प्रोत्साहन यानी डिमांड इंसेंटिव दिया जाता है। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहन परीक्षण सुविधाओं को भी मजबूत करने पर बल दिया गया है। पीएम ई ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन यानी कि E2W, इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन ई रिक्शा, ई कार्ट, L5 श्रेणी के तीन पहिया वाहन ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और ई बसों को समर्थन दिया जा रहा है। इसके साथ ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने और वाहन परीक्षण एजेंसियों को आधुनिक बनाने के लिए भी सहायता दी जा रही है। श्रोताओं, योजना के तहत पंजीकृत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए 2,500 रूपए प्रति किलोवाट आवर का प्रोत्साहन दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रूपए प्रति वाहन है। यह सुविधा उन वाहनों के लिए है जिनकी एक्स फैक्ट्री कीमत 1,50,000 रूपए तक है। इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए इस घटक के तहत 2,767 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत लगभग 45,79,000 से अधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया है। श्रोताओं, योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाला प्रोत्साहन। इससे पात्र वाहन खरीदने वाले लोगों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए ई वाउचर की व्यवस्था भी की गई है। पात्र खरीदारों को खरीद के समय प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलता है और बाद में यह राशि संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को सरकार की ओर से दी जाती है। इस तरह पीएम ई ड्राइव का उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करना ही नहीं बल्कि इसके लिए जरूरी पूरा इकोसिस्टम तैयार करना भी है, यानी वाहन, चार्जिंग स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन और वाहन परीक्षण की सुविधाओं, सभी क्षेत्रों को साथ लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
3: श्रोताओं, हम बात करते हैं कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अब तक क्या प्रगति हुई है और इससे शहरों, उपभोक्ताओं और उद्योग को किस तरह सहायता मिल रही है।
2: श्रोताओं, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत लगभग 28,30,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। जून 2026 तक इस योजना के तहत 26,59,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी थी। ये आंकड़ा दिखाता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में देश में लगातार गतिविधि बढ़ रही है। पीएम ई ड्राइव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना भी है। योजना के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगस्त 2026 तक इनमें से 14,000 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की जा चुकी थी। इनमें से 13,800 इलेक्ट्रिक बसें 7 प्रमुख शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत के लिए आवंटित की गई हैं। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल बढ़ने से शहरों में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। श्रोताओं, इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बहुत जरूरी है। यदि लोगों को आसानी से चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कठिनाई हो सकती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पीएम ई ड्राइव के तहत देश भर में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 28 सितंबर 2026 तक 851 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी थी। इसके तहत 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और 10 राज्यों में कुल 8,147 चार्जर लगाने की व्यवस्था की गई है। योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वाहन परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण। इलेक्ट्रिक वाहनों और नई तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ परीक्षण की आधुनिक सुविधाएं भी जरूरी हैं। इसके लिए पीएम ई ड्राइव के तहत 780 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का इस्तेमाल वाहन परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण और नई तथा उभरती तकनीकों से लैस करने के लिए किया जा रहा है।
5: श्रोताओं, पीएम ई ड्राइव योजना का प्रभाव केवल वाहन खरीदने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। उपभोक्ताओं के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की शुरुआती लागत कम करने में मदद करता है। शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलती है। वहीं उद्योग के लिए ये योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के इकोसिस्टम को मजबूत करने और वाहनों में स्थानीयकरण यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। योजना के तहत पंजीकृत वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों में स्थानीयकरण किया है और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम यानी फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के अनुपालन से जुड़े प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण से जुड़ी घरेलू क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
3: श्रोताओं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का संबंध केवल परिवहन से नहीं है, इसका संबंध पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की परिवहन जरूरतों से भी है। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने तथा परिवहन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को घटाने की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहन एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में सामने आए हैं। पीएम ई ड्राइव योजना के माध्यम से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के साथ साथ चार्जिंग नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन और परीक्षण सुविधाओं को भी विकसित करने पर जोर दे रही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए केवल वाहन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए चार्जिंग स्टेशन, बेहतर तकनीक, मजबूत विनिर्माण व्यवस्था और उपभोक्ताओं के लिए आसान खरीद व्यवस्था सबसे जरूरी है। पीएम ई ड्राइव योजना इन्हीं अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। श्रोताओं, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार अभी जारी है। आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बसों और अन्य वाहनों का इस्तेमाल भी बढ़ सकता है। इस बदलाव के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण रहेगा। पीएम ई ड्राइव योजना का लक्ष्य इसी दिशा में एक व्यवस्थित कदम उठाना है ताकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़े, चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार हो और भारत का इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकोसिस्टम मजबूत हो। श्रोताओं, पीएम ई ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 11,900 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान वाली इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ ई बसों, चार्जिंग स्टेशनों और वाहन परीक्षण सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जून 2026 तक 26,59,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और अगस्त 2026 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसों

का आवंटन योजना के तहत हुई प्रगति को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना केवल परिवहन के तरीके में बदलाव नहीं है, ये स्वच्छ, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार परिवहन व्यवस्था की दिशा में भी एक कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। प्रस्तुति सहायक है मोहित सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। अथ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मिथ मच्छार इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। शीघ्र स्वास्थ्य लाभाय च तस्मै शुभकामनाः अयच्छत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे आयोजितस्य G20 व्यापार मंत्रिणां सम्मेलनं पृथक् फ्रांस कनाडा सऊदी अरेबिया दक्षिण कोरिया देशानां स्वसमकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। कृतज्ञ राष्ट्रम् अद्य महात्मा गांधिने पूर्व प्रधानमंत्रिणे लाल बहादुर शास्त्रिणे च तयोः जन्म जयन्त्यवसरे श्रद्धांजलिम् अर्पयति। अपि च एशियन गेम्स क्रीडा महोत्सवे अद्य भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि विजितानि। पदकताल्यां भारतं 75 पदकानि अर्जित्य पञ्चमस्थाने विद्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मिथ मच्छार इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। सहचालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तेल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् 80-100 यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मच्छार इत्यनेन प्रधानमंत्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृतं विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहसः कुतः प्राप्तमिति अपि कथितम्। प्रधानमंत्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्रस्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्णं राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मिथः साहसेन यथासमयम् उचितनिर्णयेन क्षमतया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापसमये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमंत्रिणः दूरभाष संवादं प्रति गौरवानुभूतिः अपि तेन प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्ट्रेस और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य उपरि आक्रमणस्य अभियुक्तः सहचालकः अबुधाबी नगरं प्रति स्थान्तरितः। सऊदी प्रेस एजेंसी इत्यनेन सऊदी गृहमन्त्रालयस्य अधिकारिकस्रोतस्य उद्धरणं कुर्वता सूचितम्।

0: regulations comes into effect. And this is really important right now as well, because given the constraint which is there right now on the global supply chains because of the ongoing conflicts, both in the European theater and the Middle Eastern theater, this becomes really important, because there will be economies, there will be countries which will not be able to withstand these kind of economic onslaughts if they continue for long in such conditions.
1: The concerns about dumping and also about the predatory pricing as well.
0: Yeah, yes, indeed. That's what I'm saying. So in the present situation wherein, the smaller economies are already trying to, stay afloat in the face of rising energy prices, in the face of, pressure, undue pressure on global supply chains, and a lot of uncertainty as well in the trade and economy aspect globally, given the fact that the world powers, so-called economic world powers, are changing the rules of the games almost on a daily basis, if not weekly basis. Statements coming in, they change a lot of stuff. So in that situation, it is imperative for everybody, all the countries specifically, to adhere to these principles which are already in place, so that the troubles for the lesser economically fortunate countries or the developing economies, so to specifically, are not under undue duress or pressure.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई. फ्रांस के विदेश मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना है. विशाल जी, आप क्या कहेंगे, G20 के साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं भारत की तरफ से की जा रही हैं, जैसा कि अभी खबर में हमने देखा फ्रांस और कनाडा के साथ खास तौर पे. इससे भारत का जो अभी व्यापार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, उससे भारत को किस तरह का लाभ पहुंचने की उम्मीद है?
0: देखिए, भारत ने बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक बेहतरीन आर्थिक रणनीति यहाँ अपनाई है, और आर्थिक मामलों में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेड के लिहाज से, यानी कि व्यापार के लिहाज से, आप जितने ज़्यादा देशों के साथ अलग अलग तरीके से अपने समझौते बना पाएं, अलग अलग तरीके से उनसे बातचीत करके उनका फायदा और अपना फायदा दोनों एक देख पाएं, वो ज़्यादा बेहतर है. जो मल्टीलेटरलिज्म जिसे कहा जाता है, उससे इतर जाके अब थोड़ा सा बायलेटरल कोऑपरेशन जो है, उस पर जोर ज़्यादा है. इसीलिए FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर जैसे कनाडा के साथ CEPA जो बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस तरह के एग्रीमेंट्स पे चर्चा और इस तरह के एग्रीमेंट को मूर्त रूप देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पिछले 3 से 4 साल में हमने देखी है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उस पर ज़्यादा मोमेंटम हुआ है. कनाडा से बातचीत अभी जारी है, उसमें अलग अलग और किस तरह की उसमें जमाया घटा किया जा सकता है उस एग्रीमेंट में. उसके अलावा चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, या फिर और यूरोपीय जो बाकी देश हैं उनके साथ हो, ब्रिटेन के साथ हमने एक समझौता किया, और भी ऐसे कई देश हैं, और अमेरिका के साथ एक अलग समझौते पे लगातार बातचीत चल रही है. उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ पर ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है. तो ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि हर इस वक्त, आज की स्थिति में, हर इकोनॉमी की तरह, हर देश की तरह, भारत भी ये चाहता है कि उसके ऑप्शंस खुले हों, उसके विकल्प खुले हों, और उसकी जो जो व्यापार

0: एक संगठन हैं या देसी कंपनियां हैं जिन्हें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कहें या हमारी जो बड़ी कंपनियां वो कहें, उन्हें और बेहतरीन मौके मिले और हमारे देश में जो कंज्यूमर बैठा है उसको केवल बाजार के तौर पे ना देखा जाए बल्कि उसे भी बेहतरीन क्वालिटी वाले विकल्प चुनने को मिले
1: जी। और अगर खास तौर से हम यूरोपीय यूनियन की बात करें, जो भारत के साथ समझौता जो FTA हुआ है, उसके क्या क्या आपको भारत के पक्ष में क्या परिणाम दिखाई देते हैं?
0: देखिए, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा संगठन है और सीधे तौर पर अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ FTA करते हैं तो यानी कि EU के अंडर आने वाले जितने भी देश हैं वो बाध्य होते हैं उस समझौते को मानने के लिए। अलग अलग देशों का अपना अलग अलग, जिसे कहा जाए, एक्सपर्टीज है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज है, कहीं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, किसी के पास साइंटिफिक जो R&D जिसे कहा जाए उसमें वो आगे बढ़कर काम कर रहा है। फ्रांस जैसे देश है जिनके साथ हमारा रक्षा समझौता अलग से है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, तो इन सब चीजों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर्स में बल मिलता है और ना केवल भारत का जो कंज्यूमर है उसे, या चाहे कंज्यूमर में आप चाहे सरकार मान लें या हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी माने क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा एक रक्षा समझौता है, बल्कि हमारी जो कंपनियां हैं उनके लिए बाजार, एक नया बाजार खुलता है, उनको अपने जो क्वालिटी प्रोडक्ट है यानी कि अपनी गुणवत्ता को सुधारने के बाद बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो अपनी एक पहचान बनानी है उसके लिए एक अलग बाजार मिलेगा, अलग मौका मिलेगा। केवल ये नहीं माना जा सकता कि आप अब सामान, अगर आपकी कंपनी का सामान अगर अमेरिका में बिकता है तो ही आप बड़ी कंपनी है, तो अगर उसके लिए विकल्प ज्यादा खुलते हैं तो यानी कि मौके ज्यादा मिलेंगे कंपनियों को और उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी और जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को।
2: The signal that he would like to join the EU, the country might, and we already have an agreement with UK, and that is going to be a feather in our cap.
0: Well, it's going to be really interesting as well because that's a separate a battle of wits which is going on there. Yeah. Because let's not forget that this was one particular topic on which the United Kingdom was almost split in between, and this time around perhaps they're taking a turnaround because of their internal domestic politics as well, because there are two parts of the kingdom perhaps which have not been in favor since day one, and seemingly they're still not in favor as well. So domestic issues, domestic pressures do tend to make international calls being made by sometimes leaders of the free world as well. Let's see how far the British Prime Minister can push this through.
2: So, and the minister is also focused quite a bit on the India EU free trade agreement and also SEPA. He wants these to be expedited.
0: That's
2: rightfully so, because
0: yes indeed, and it serves the purpose for both. When we talk about SEPA, it serves the purpose for both India and Canada, because let's not forget that the Canada was also on the short end of the stick when President Trump was going around brandishing his tariff stick. So and there was a lot of not so healthy exchange of words between both sides. So of course Canada would also want to go ahead and hedge its bets. That's one, and two, look for more sustained partnerships with perhaps more larger markets. That's one from their angle. And two, of course, they would also want to be there on the table and say that, okay, fine, if it's not going our way, then we have somebody else to fall back upon. And in current economic scenario, I think apart from China, India is the other market to fall back upon.
1: और चलते हैं, शेयर बाजार का हाल भी जान लेते हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर शेयर इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार नहीं हुआ। बाजार सोमवार को फिर खुलेंगे। अवकाश से पहले बेंचमार्क सूचकांकों पर लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा और इनमें लगातार 8वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। इस अवसर पर आज भारतीय मुद्रा बाजार भी बंद रहे। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 96.31 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। विशाल जी, आप क्या कहेंगे? आज हालांकि शेयर बाजार बंद है लेकिन लगातार 8 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव बना हुआ है और गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट को आप सिग्निफिकेंट तो है, बट देन इसका इम्पैक्ट किस तरह का आप देखते हैं?
0: देखिए, आंकड़ों को दो तरीके से देख

0: देखा जाता है। हर बार जब हम इस कार्यक्रम पे आंकड़ों पे चर्चा करते हैं, और मैं हमेशा आंकड़ों के आधार पे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि लेकिन आंकड़ों को देखने का भी अपना नजरिया है। अब अगर गिलास को आप देखें तो आधा गिलास खाली भी हो सकता है और आधा गिलास भरा भी हो सकता है। निश्चित रूप से जो आंकड़े आपने अभी बताए और जो आंकड़े जिन पर चर्चा भी की जा रही है, जिन पर लिखा भी जा रहा है, वो दुरुस्त हैं। यानी कि लगातार 8 हफ्ते तक बाजार में गिरावट दर्ज की गई और ऐसा लगभग 2 दशक के बाद ऐसा देखने को मिला है। लेकिन वो गिरावट कितनी है? नंबर एक, वो गिरावट लगभग 9% के आसपास है अगर मोटे तौर पे देखें तो। हाँ, इसमें यह भी सच है कि 52 वीक हाई, यानी कि पूरे 52 हफ्ते का जो सबसे ऊंचा आंकड़ा था, उससे आप बहुत नीचे आ गए हैं। लेकिन अब इनके कारणों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान डालें तो समझ में आएगा कि क्या कोई नया फैक्टर ऐड हुआ है। जी नहीं, ये सब वही फैक्टर हैं जो लगभग पिछले एक साल से इन सभी फैक्टर से बाजार जूझ रहा था, चाहे वो FII का आउटफ्लो हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो जिसे कहा जाए हम सिग्नल्स जो आते हैं, इंटरनेशनल सिग्नल्स जिसे कहा जा सकता है, मार्केट को क्यूज मिलते हैं, जो क्रूड ऑयल की कीमतों की हम बात करें, उसमें जिस तरह से कोई स्टेबिलिटी नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ दिनों के लिए ऊपर जाती हैं और अगर वहां माहौल थोड़ा सा शांत रहता है तो कुछ दिनों के लिए नीचे आती हैं, यानी कि कोई एक सस्टेन्ड क्यू मार्केट को नहीं मिल रहा था, नंबर दो। और नंबर तीन अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे जैसे अब मोटे तौर पर कल से जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े उनमें सब में ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अगर आंकड़े देखें तो उनमें उनके आंकड़े, उनकी जो बिकवाली है, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स की जो बिकवाली है, सेल जिसे सेल का आंकड़ा से कहें, वो तो बहुत ऊपर गया, लेकिन जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं थे जिस एक्सपेक्टेशंस पे शायद इन्वेस्टर्स चाहते थे। दूसरा, अगर वापस हम FII की तरफ जाएं तो वहां भी एक थोड़ी सी डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी इसलिए है कि सितंबर के महीने में लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बाजार से FII ने निकाला, यानी कि इक्विटी बेचकर निकाला, लेकिन प्राइमरी मार्केट में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उन्हीं FII ने इन्वेस्ट भी किया। अब वो इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि US की जो बॉन्ड मार्केट है वहां उनको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर कहा जाएगा कि इक्विटी मार्केट से क्यों हटाया गया, तो हो सकता है, और हो सकता है कि ये आंकड़े भी बताते हैं कि जो लार्ज कैप जो है हमारे भारत के बाजार में, उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन्वेस्टर्स चाहते होंगे। तो ये पैसा लगाना और पैसा निकालना ये बाजार में निरंतर लगा रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। इसीलिए मेरा कहना है गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये अपने नजरिए पर निर्भर करता है और ये आपके रिस्क एपेटाइट पर भी निर्भर करता है कि आप किस हद तक होराइजन के किस हद तक आप देख पाते हैं।
1: सो देयरफॉर विशाल, व्हिच डोमेस्टिक ट्रिगर्स शुड इन्वेस्टर्स वॉच आउट फॉर this next week? The RBI policy and its commentary, the FPI flow data, early Q2 earning signals, or the macro data as you elucidated quite a bit on them. So what should I look out for while I'm thinking of investments next week?
0: When you talk about macro data, all of these are the factors. You can't overlook either of these factors. That's one. But two, if you're an investor, what are you looking out for? You're looking out for investing in a particular company, in a scrip, in a small cap company, in a mid cap company, in a large cap company. Somewhere you're looking to invest. So the larger part which you should look out for is to look for that particular company's financial health. That's one. Its capacity building. That's two. Its future horizon. That's three. And what does the sector say? The particular sector to which the company belongs. What do the policies say? All the other larger data is creating a larger picture. But we are not investing into the larger picture as investors. We small investors, retail investors. I'm looking at it from their perspective. I'm not looking at it from FII's perspectives here. So I should be looking as an investor to the individual script which I'm going to invest in, and then take a concerted decision, because ultimately the entire atmosphere which is being created, that will of course affect my investment, but that will of course affect the investment of the entire market as well. Largely what will affect my investment more is whether the company which I have invested in has the potential to grow, has the wherewithal to grow, does its management has the willpower to go ahead and take those calls which need to be taken in that particular sector.
1: Okay, now very important is that the key concern for the market is, I believe, not oil pressure alone, but the combined pressure from elevated bond yields, tight global liquidity, and the geopolitical uncertainty. While softer crude prices, Vishal,

0: can improve, shipments can be constructive, higher yields raise the cost of capital, compress equity valuations, and make fixed income assets relatively more attractive. So how should I react when I talk about the elevated bond or look at the elevated bond yields?
1: I think this can be answered in just two, three sentences, because the bond yields is something which is a larger game played well beyond the control of even the markets as well, because there are larger economic interests of specific countries which are involved, which then drive the bond yields of either on this end or on that end as well. We should be on the lookout, be concerned about it as well, but that's not the only factor. So of course we should not be very worried about it, unless we are unless somebody is a huge FII investor and perhaps maybe moving
0: should
1: in and
0: I
1: out.
0: Be worried about FII is leaving
1: not at all
0: 26,000 crores is what
1: not
0: they
1: a, not, a, not a big picture not a big picture I must tell you, because in the past there have been days wherein 30,000 crore rupees have moved out of the market, next day 25,000 crore rupees have come in.
2: और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग 2.6%, जापान का निकेई 0.9% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% नीचे रहा। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और ताइवान का ताइएक्स 0.2% चढ़ा। इस बीच अवकाश के कारण चीन के बाजार बंद रहे। यूरोपीय बाजारों में खबर लिखे जाने तक जर्मनी का डैक्स 1.2% ऊपर और लंदन का फुटसी 0.3% ऊपर कारोबार कर रहा था। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे एशिया और यूरोप के बाजारों की जो आज की परफॉर्मेंस है उसके बारे में?
1: देखिए, मिश्रित नतीजा है और मैं कहूंगा कि ना ही तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद से बढ़ के है किसी मार्केट में और ना ही उम्मीद से बहुत ज्यादा कम है। हालांकि अमेरिकी बाजार का जो रुख है वो थोड़ा पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि वहां से हो सकता है कि सोमवार को जो है मतलब कुछ क्यू भारतीय बाजारों को भी मिले, और खासतौर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं जिनमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है अमेरिकी बाजार में, और फेडरल रिजर्व का जो हाल ही का जो फैसला था वो, और थोड़ा सा जो एक प्रेशर जो बन रहा है वहां पे, क्योंकि अभी भी वहां के एनालिसिस के मुताबिक लगभग 25-30% उम्मीद ये है कि जो अक्टूबर में एक बार फिर से फेड की बैठक होगी तो उसमें फिर थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो सकती है जो ब्याज दरें हैं उनमें। तो ये सब क्यूज हैं जिनका बेनिफिट मिल सकता है। बाकी निक्के, हैंगसेंग और कॉस्पी, इन सब में जो चल रहा है वो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है प्लस और माइनस में, तो ये माना जा सकता है कि सब ठीक है, नजर बनाए रखें।
0: जी, मेजर यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट यस्टरडे डिस्पाइट अ राइज इन ट्रेजरी यील्ड्स। The S&P 500 gained 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average and the Nasdaq Composite eked out marginal gains. On the economic front, the unemployment insurance weekly claims declined by 1,000 to 1,97,000 in the week ending September 26, according to the data released by the government. Vishal, how does a higher for longer US rate environment transmit to India through the rupee, bond yields, FPI flows, or the account, current account?
1: Well, let's not forget that, and let's not live in any, illusion here that dollar still has the hegemony globally when it comes to currency market. And of course, dollar's health will impact the health of any currency that includes Indian rupee as well. Yes, the crude oil prices do add some more value to it or subtract some value from it as well. But largely speaking, we might be, walking into the concern zone once or twice. But overall, I believe this is something which is still under control and something not to be worried about. Again, the bond yields relation between the bond yields and all. I again believe, this is a very, very large game which was bound rather to be played at some point in time or the other, given the fact that there are a lot of conflicts going on. And let's see how, the so-called economic powers are able to sustain the pain for how long, and that will eventually, I

0: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत कलकल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
1: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूं, उनकी दुआओं से ही ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
0: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुडा ने नियन चेन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहान ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। कैप्टन स्मिथ मछार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है।

उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दौरेस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। इस कार्यक्रम में अंत्योदय, स्वच्छता और समाज सेवा के उनके आदर्शों को दर्शाया गया। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नलू ने NCC कैडेट से एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों पर आधारित मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज नरसिंहगढ़ के TIT संस्थान में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर वीर विक्रम एकता कैंप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 त्रिपुरा बटालियन NCC ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जन सेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार निहारिका, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन।
1: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। एक समय ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा?
3: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है, और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी, हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है बल्कि हमारा विजन है। हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है, उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फोन्स। इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फोन हमेशा इम्पोर्ट होते थे देश में, लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ, आज 10 से 11 साल के पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं, तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे, हमारे आयात में हमारे कई सारी चीजें डिपेंड करती थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए हमारे यहाँ, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए, आप 2020 में कोविड आया था तो आप कोविड में किस तरीके से, जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रांग करें। तो चाहे आप डिजाइन की बात करें, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो अब इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बन रहा है, चाहे डिजाइन की बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनी जाके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जाकर के, जहां जहां स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, आज उस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं चाहे नॉर्थ में, यूपी फॉर एग्जाम्पल लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी, और जिस तरीके से वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगते हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है, तो ये मेक इन इंडिया की खास बात ये रही है, इसने देश को एक नई पहचान दी है और हमारे उद्यमियों को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जहां पे वो अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपनी चीजों को बना रहे हैं।
1: इनफैक्ट मेक इन इंडिया की जो बुनियाद रही है वो रही है इन्वेस्ट, डिजाइन और इनोवेट, यानी हर तरीके से हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कड़ी को अपने से जोड़ सकें। डॉक्टर शरद, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
4: जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस था, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता अभी तक बोला जाता था, और अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं
2: तो वहां पर जो चाइना

0: प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा। और जितना गरजने लगा, जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कोई कहां बन के आते हैं, किस जगह, ज्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूं बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूं, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयां अमेरिका से लेकर यूरोप तक ना केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहां उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत था। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज। तो हमने, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक एक जगह अपनी बना ली है दुनिया में, और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है। और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग गिन के अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहां पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है। और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहां कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था। आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया है। मैं नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है। और वो युवा आज जो जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना। तो इसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं, यानी कि आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं जो युवा आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है। कोई ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं। और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए, तो बड़ा आसान है। मैंने कहा, तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी। और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो, किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको, निहारिका, आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी और पहचान भी इसकी तभी बनेगी, क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है। और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग, ये चाइना ने ये करा बहुत साल पहले, और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
1: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी, जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?
2: ये बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज, हम अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें। और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमई का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो

0: 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम एक चली है, मूवमेंट चला है, जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है लोग हैं इसमें युवा हैं, जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसमें ये दर्शाता कि हमें हर चीज अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, और चाहे गांव में आप, चाहे विलेजेस में, उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल एक पोटैटो है, अगर आप आलू का, अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा, बट एक आलू से चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हमारे गांव-गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसे जो है शहरों की तरह माइग्रेट ना करना पड़े, वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें, वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवेज को बना के, रोड्स को बना के, और जो ट्रेन से और शिपिंग सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट करके ये देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गांव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके, कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक, जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आपने अपने उदाहरणों के जरिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी। मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल, कम्पेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है, तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में।
2: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने, यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हम अगर आप नंबर्स में जाइए तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है। एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको 2 शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका, अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है। और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स। तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब, डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है पीएलआई की ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना

0: का एक मॉडल का ना सोचें। तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है। और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखिए ना, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% काम कर रही है, उनके पास जगह भी है और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही है। आप हर साल कुछ कुछ समय बाद सुनते हैं, अब इसमें भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, अब इसमें भी लाई जा रही है, तो मुझे लगता है इसकी कामयाबी इस स्कीम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है।
1: बिल्कुल, और आपने जो नौकरियों का उदाहरण दिया, शायद उसके जरिए हमारे श्रोताओं के लिए पीएलआई की आवश्यकता समझना बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आज के जमाने में जहां आज की जीवन शैली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और हमारी छोटी से छोटी चीज मोबाइल फोन से होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है आज के जमाने में? सेमीकंडक्टर्स इतने ज्यादा आवश्यक क्यों हैं, और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
2: भी जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन। क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से, बट आज ये हुआ है कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी लीजिए, बड़ी से बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, उसमें सब में क्या है, मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है, तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना रखा है, तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूं आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है, इस युग में आज हम जी रहे हैं, तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए, और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसके अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है, जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047। मैं समझता हूं जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज, देश हमारे जुड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफी साइंस है, मैथ्स है, एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें जब इसमें काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे, तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के बराबर का हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें,

0: या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
1: जैसा कि अभी बात हुई कि TSMC जो ताइवान की कंपनी है जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, सब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है। उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था। ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में है, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट हैं, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर। अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहां पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूर हो गए। तो मुझे प्रधानमंत्री जी का बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा। तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो, हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हमें हम उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी
0: है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए हमें इस चर्चा में। जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस में हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है?
1: बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ तो वोकल फॉर लोकल की, ग्लोबल की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए। और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में, मशीन गन्स में लगते थे, वो भी बाहर से आया करते थे, और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेकर आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं। इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे उनको बैठा के उसमें चलाया गया, और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं। करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजिशन में, वो देश जो नट्स एंड बोल्ट बाहर से मंगाता था आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं। तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है तो डिफेंस में दूसरे नंबर पे डालूंगा, जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही हैं, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है, और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व बढ़ जाता है। और आजकल जैसी निहारिका ये ना भूलें, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
0: बिल्कुल,
2: देखिए डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इम्पोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश को ही सुरक्षित नहीं कर रही है बल्कि पूरी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे कई आप देश आज चाहे आप चांद में देख लीजिए, वहां जाने की तैयारी कर, रॉकेट हमारे लॉन्च किए, प्राइवेट कंपनीज ने हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना है जिससे कि डिफेंस में हम लोग

0: आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम हाई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जैसे रफाल्स हैं ये सब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसका भी अपने देश में इकोसिस्टम बना रहे हैं।
1: अब अगर मैं एक बात ये करूं, निजी स्तर पे शायद हमें डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत दूर की लगें, या शायद ये लगे कि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जिससे आम आदमी का रिलेशन है, संबंध है, वो है वंदे भारत ट्रेन। अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है, लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
0: देखिए, वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहां पे कि जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती है, वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम, बिल्कुल। ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफर करने में एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है, वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
1: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के बारे में?
2: मुझे लगता है निहारिका के जो लोग विदेश जाते थे और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का है, वहां जाके जब ट्रेन्स में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन्स हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स भारत में ऑपरेशनल हैं, और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है, और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें स्पीड आई है, कंफर्ट आया है, क्लीनिनेस आई है, एफिशिएंसी आई है, और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे, उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहां से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहां ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका, मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के एमएसएमईज के बारे में पूछना चाहूंगी। हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एमएसएमईज की भी बहुत अहम भूमिका है।
0: बिल्कुल, देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड एमएसएमईज हुआ करते थे, करीब वो थे 2 से 3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड एमएसएमईज हमारे देश में है
1: जी।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया, और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक एमएसएमईज को पूरा इसमें बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से एमएसएमईज को सपोर्ट किया, उसके बाद जो एमएसएमईज की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनीज है लेकिन उसमें एमएसएमईज की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो हमारे देश के एमएसएमईज उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी, और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है।
1: बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें।
0: बिल्कुल।
1: एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है, और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
2: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है, कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है, और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है, हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे। और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूं, ये तो मैं, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग जब भारत में जीडीपी में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है। और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है, और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां, तो बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बदलाव की बात करें निहारिका, तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे।

0: मुख्य मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका जिक्र
1: जी किया। बिल्कुल बिल्कुल।
2: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत, जो नया भारत आज भारत की पहचान है। भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं, और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की। और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरे दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है। ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है।
1: बिल्कुल, यानी आज के जमाने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे थे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देश भर में खादी उत्पादों पर विशेष छूट आज से। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज वन अधिसूचना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 16 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य सहित 76 पदक। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह इस सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 197वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन, उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित है। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की जीवन यात्रा राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की विराट साधना थी। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण पीढ़ियों को भारत की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत आजादपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वस्थ और सभ्य समाज की आधारशिला माना। उन्होंने कहा कि आज से 12 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन आज देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा वीर जवानों और अन्नदाताओं के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सेवा के उनके आदर्श सभी को सदैव सूर्योदय और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर दिल्ली विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की।
1: ने कहा कि महात्मा गांधी ने यह दिखाया कि नैतिक साहस किसी राष्ट्र को दिशा दे सकता है, जबकि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने यह सिद्ध किया कि सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा नेतृत्व के सर्वोच्च मानदंड निर्धारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन सभी को निरंतर यह स्मरण कराता है कि सार्वजनिक जीवन की वास्तविक शक्ति चरित्र, संकल्प और राष्ट्र सेवा में निहित होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए दोनों महापुरुषों की जयंती का एक ही दिन होना केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि उन मूल्यों पर चिंतन करने का अवसर भी है जो भारत को लोकतांत्रिक और संस्थागत जीवन को निरंतर दिशा प्रदान करते रहने चाहिए। इस अवसर

0: दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट सहित अन्य सदस्यों ने भी दोनों महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की। नितिका गुप्ता के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए दिलनशी आरज़ू।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रोमो
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री सूद ने सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े डंप द जंक अभियान में सहभागिता की। यह अभियान आज से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इधर उधर कचरा फेंकने से रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि कचरा बेतरतीब ढंग से न फेंका जाए।
3: देखिए, आज से लेकर 17 तारीख तक डंक द जंक युवाओं को, दिल्ली की जनता को अपने साथ लेकर कूड़ा जगह जगह ना फेंकने के लिए ये अभियान हम लोगों ने चलाया है। दिल्ली के 313 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चुनकर हमारा प्रयास होगा कि इसको इस प्रकार से डेवलप कर दें कि अगले दिनों में यहाँ कूड़ा न गिरे।
1: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC द्वारा गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वच्छता गतिविधियों में शामिल हुए। स्वच्छता अभियान को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन में स्वच्छता, अनुशासन और सार्वजनिक दायित्व को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना गया था। श्री राय ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक और दृश्यमान परिवर्तन लाया है। सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान कई सालों से चल रहा है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन का अभियान नहीं, ये पूरे साल चलता रहेगा और इसके अच्छे नतीजे सभी देख रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन समेत पूरे देश में विशेष छूट अभियान की शुरुआत की गई है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अध्यक्ष मनोज गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वदेशी के आह्वान को जन जन और जेन ज़ी तक पहुंचाने के लिए KVIC लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खादी ने एक नया आयाम प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज खादी आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि करोड़ों कारीगरों और बुनकरों की आजीविका, भारत की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास का प्रतीक है। उन्होंने ये बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का कारोबार 1,87,00,000 रुपए से अधिक रहा और इससे लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला।
4: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिस्क के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दी है। इसके तहत नॉर्दर्न रिस्क की 112 हेक्टेयर से अधिक यानी 277.56 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जा रहा है। ये क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और दिल्ली के महत्वपूर्ण हरित और पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संदर्भ में कहा कि नॉर्दर्न रिज दिल्ली की अमूल्य प्राकृतिक विरासत है और इसका संरक्षण शहर के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ साथ आने वाले

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद सहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: इन स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। इस संग्रह में दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी यादगार वस्तुएं, धार्मिक वस्तुएं, एक पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि रोहिणी के एक छात्र से लेकर दिल्ली मेट्रो, विधानसभा और नई संसद तक ये यादगार वस्तुएं पूरी दिल्ली की कहानियां बयां करती हैं। ये नीलामी इन यादों को एक बड़ा सार्वजनिक उद्देश्य भी देती है, क्योंकि इससे मिलने वाली राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगी। नीलामी की तिथियों, इसमें शामिल होने की जानकारी और पूरी कैटलॉग के लिए प्रधानमंत्री यादगार वस्तु ई नीलामी पोर्टल pmmementos.gov.in पर देख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देश भर में खादी उत्पादों पर विशेष छूट आज से। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 16 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य सहित 76 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत

0: कल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
1: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ही ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
0: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से बात की। कैप्टन स्मित मच्छर ने दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की।
0: प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर का इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। दुनिया भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोग ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मधुरी माँ आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ कुसुम। हम लेकर आए हैं आपके लिए राग चारुकेशी के गाने। जब दिल की वीणा पर प्रीत की झनकार उठती है तो धड़कनों का साज तड़प कर बज उठता है और जिंदगी बन जाती है गीतों की मधुरी माँ। और फिर ये दिल पुकार कर कह उठता है, क्या इस गीत में सुनते हैं।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है मधुरिमा और आप सुन रहे हैं राग चारुकेशी के गाने। राग चारुकेशी के बारे में कहा जाता है कि ये राग दक्षिण भारतीय संगीत से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से हुई और अब ये हिंदुस्तानी संगीत में शामिल हुआ। इस राग में धैवत और निषाद कोमल लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। इस राग का वादी स्वर है मध्यम और संवादी है षटज। राग के आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण कहलाती है। इस मधुर राग को यूं तो दिन के दूसरे पहर में गाया और बजाया जाता है। फिलहाल राग चारुकेशी को हम सुन रहे हैं इस पहर में और एक और खूबसूरत गीत फिल्म आमने सामने से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में राग चारुकेशी में निबद्ध ये गीत।

चारुकेशी इतना मीठा राग है कि इस राग में जो भी गाने बने वो सचमुच यादगार बने हैं। ये राग वियोग और भक्ति रस से सराबोर है। ये मन को एकाग्र करता है। इसमें जहां दर्द की कराह है तो वहीं स्थिरता का भाव भी समाहित है। हम ये कह सकते हैं कि ये राग मन को शांति देने वाला राग है। इसके अलावा ये मन को तरोताजा भी करता है और गाने वाले तथा सुनने वाले दोनों को एक नई ऊर्जा से भर देता है। ये प्रेम में दिल को तोड़ता या दुखाता नहीं, बल्कि प्यार से धैर्य से प्रेमी की राह देखता है, निहारता है, उसका इंतजार करता है। फिल्म दीवाना के इस गीत की तरह

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। कुश्ती में सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक पर लगाया दाव, यादगार वापसी कर जीता फाइनल मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को

0: हराकर जीता स्वर्ण पदक, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई किया। महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने दक्षिण कोरिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, स्वर्ण पदक देश के नाम किया। उधर पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया और सेलिंग में नेत्रा कुमानन और सेपक टैकरो में भारतीय पुरुष स्क्वाड्रन टीम ने जीता कांस्य पदक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने आज एक के बाद एक कई पदक जीते। भारत ने आज टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, चाहे हम मुक्केबाजी की बात कर ले, कुश्ती की बात कर ले, या फिर महिला हॉकी टीम की बात हो, या फिर आर्चरी की बात हो, सब में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का झंडा शान से लहराया है। शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम, परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में देश के लिए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग वर्ग में देश को पदक दिलाए। अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम मिनसियोंग को 4-0 से हराकर देश के लिए स्वर्ण पदक से अपना अभियान समाप्त किया।
2: स्प्लिट डिसीजन से ही सही, लेकिन अंकुश पंघाल ने भारत को एक और गोल दिलाया और बॉक्सिंग में भारत के लिए आज एक हैट्रिक है। पहले भारतीय बेटियों ने, उसके बाद युवा 21 वर्षीय अंकुश ने भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल।
1: अंकुश ने जोरदार पंच लगाते हुए पहला राउंड 4-1 से जीता। दूसरे राउंड में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा और उन्होंने 1-2 कॉम्बिनेशन और काउंटर पंच के साथ 5-0 से जीत हासिल की। अंकुश ने इस जीत के बाद कहा कि उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था।
3: अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत के, और दिमाग में तो यही था कि हाँ बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे। प्रेशर तो नहीं था, पर लेकिन ये था कि खुद की जो मेहनत की थी उस पर विश्वास था कि हाँ गोल्ड लेना है। मोटिवेशन तो है कि वहाँ पे भी गोल्ड आया था और यहाँ पे भी गोल्ड है, कोर्ट बनाए रखे और हम और भी आगे जाएंगे।
1: उधर लवलीना बोरगोहाइन और परवीन हुड्डा ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए महिला मुक्केबाजी के स्वर्ण के लिए देश का 12 साल का इंतजार समाप्त कर दिया। दोनों ने मजबूत दावेदार मानी जा रही अपनी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अलग अलग अंदाज में शानदार जीत दर्ज की। भारत की सबसे सफल मुक्केबाजों में शामिल ओलंपिक पदक विजेता लवलीना ने अपने 29वें जन्मदिन को खास बनाते हुए चीन की बाओ जीयी को 5-0 से हराया। उन्होंने इसके साथ ही पिछले एशियाई खेलों में जीते रजत पदक का रंग भी बदल दिया।

0: इस जीत के बाद लवलीना ने कहा कि ये पदक मेरे लिए बहुत खास है।
1: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए। कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए। मेरा बहुत ज्यादा वेट कंट्रोल नहीं रहता है, लास्ट के 2-3 दिन ही 1-2 केजी कम करना पड़ता है, लेकिन आज तो जरूर गोल्ड मेडल की वजह से जरूर स्वीट खाऊंगी।
0: परवीन ने इसके बाद पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।
2: प्रवीण का पंच पड़ा है गोल्ड मेडल पे। प्रवीण हुड्डा ने भारत की झोली में इस बार ब्रोंज नहीं गोल्ड मेडल डाला है।
3: गेम्स 2026 का 13वां गोल्ड मेडल प्रवीण हुड्डा ने जीता है।
0: इस जीत के साथ लवलीना और प्रवीण एशियाई खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाजों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गई हैं। उनसे पहले मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। आईची नागोया में भारत ने मुक्केबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण शामिल हैं। प्रिया घंगास ने 60 किलोग्राम, कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम और नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक वर्ग में कांस्य पदक जीते। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी प्रदर्शन 2010 के ग्वांगझोउ खेलों में रहा था, जहां भारतीय टीम ने कुल 9 पदक हासिल किए थे। इनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों का ये शानदार प्रदर्शन पिछले महीने ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रिकॉर्ड तोड़ अभियान के बाद आया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
4: लवलीना हो, अंकुश हो या प्रवीण हो, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज उन्होंने एक के बाद एक भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। मुक्केबाजी से चलते हैं अब कुश्ती की ओर, जहां सुजीत ने बेहतरीन

0: प्रदर्शन करते हुए भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय रेसलर सुजीत कलकल ने एशियाई खेलों के कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में सुजीत ने तजाकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को 10-9 से हराया। सुनते इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: फाइनल मुकाबले में सुजीत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुश्ती में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया।
2: किताबों में लिखा जाएगा सुजीत कलकल के नाम के साथ चलता रहेगा। किस तरह से ट्रेल कर रहे थे लेकिन कैसी वापसी की और एक गोल्ड मेडल भारत के लिए दिलवा दिया। सुजीत कलकल असंभव वापसी को उन्होंने यहां पर साकार किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भारत के लिए एक और गोल्ड।
1: उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार वापसी करते हुए ये जीत हासिल की। मैच के ज्यादातर समय 23 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी 2-9 से पीछे चल रहे थे लेकिन फिर उन्होंने मैच के आखिरी पलों में लगातार 8 पॉइंट हासिल करके जबरदस्त वापसी की और कुदियेव को हराकर इस एशियन गेम्स में भारत के लिए रेसलिंग का पहला स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। कलकल की ये जीत आईची नागोया में उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। इससे पहले भारतीय रेसलर ने अफगानिस्तान के सैयद उमर जजई के खिलाफ अपनी चुनौती शुरू की और शुरुआत में 0-3 से पिछड़ गए। इसके बाद कलकल ने पुश आउट और शोल्डर थ्रो से पॉइंट हासिल करके मैच का रुख बदल दिया और 5-3 की बढ़त बना ली। फिर उन्होंने एक और थ्रो और रोल से 4 और पॉइंट हासिल किए जिससे उन्होंने 13-3 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद कलकल ने ईरान के अब्बास इब्राहिम जादे सावतकोही के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और बिना कोई पॉइंट गवाए तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत हासिल की। सेमीफाइनल मैच उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि उन्हें जापान के ओलंपिक चैंपियन कोतारो कियोका का सामना करना था। हालांकि कलकल पहले पीरियड के अंत में 0-2 से पीछे थे लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने वापसी करते हुए 3 पॉइंट हासिल किए जबकि कियोका सिर्फ 1 पॉइंट ही बना पाए। मैच 3-3 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसीलिए कलकल ने तय नियमों के आधार पर जीत हासिल की और रोमांचक फाइनल को भी अपने नाम कर लिया। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कास्ट।
0: आइए सुनते हैं जीत के बाद सुजीत ने क्या कुछ कहा।
3: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। देखो यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
0: मुक्केबाजी हो, कुश्ती हो और उसके बाद अब बात हॉकी पर, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया और भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 44 साल का सूखा खत्म कर दिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: फाइनल मैच में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही चीन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। मैच के 6 मिनट में बलजीत कौर को ग्रीन कार्ड मिला लेकिन 10वें मिनट में अपना 200वां इंटरनेशनल मैच खेल रही लाल रेमसी यामी ने बेहतरीन गोल दागते हुए भारत को 1-0 के बढ़त दिला दी। भारतीय टीम को इसके बाद अपनी बढ़त दोगुना करने का सुनहरा मौका मिला लेकिन पेनल्टी कॉर्नर को टीम गोल में तब्दील नहीं कर सकी। हालांकि मजबूत डिफेंस के दम पर भारतीय टीम पहले क्वार्टर फाइनल में अपनी बढ़त को बनाए रखने में सफल रही। दूसरे क्वार्टर में चीन ने वापसी करने की कोशिश की और आक्रामक खेल दिखाया। चीन को जल्द ही पेनल्टी स्ट्रोक मिला लेकिन सविता पुनिया ने दमदार बचाव करते हुए चीन को बराबरी करने से रोक दिया। हालांकि इसके बावजूद चीन का आक्रामक खेल लगातार जारी रहा लेकिन वह भारतीय टीम के मजबूत डिफेंस को नहीं भेद सके। तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी भारतीय टीम के डिफेंस ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और चीन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। तीसरे क्वार्टर में कप्तान सलीमा टेटे के चोटिल होने के बावजूद भारतीय टीम ने चीन को हावी होने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में सलीमा मैदान पर वापस लौटी और उनकी अगुवाई में टीम अपने दबदबे को कायम रखते हुए गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बताएं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने आखिरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल 1982 में जीता था, वहीं 1998 में टीम ने सिल्वर और 2018 में भी फाइनल तक का सफर तय किया था। भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। गोल्ड जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक 2028

0: के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। और श्रोताओं, उधर भारतीय पुरुष टीम का सामना कल स्वर्ण पदक मुकाबले में मलेशिया से होगा, मतलब कल भी एक और स्वर्ण पदक की उम्मीदें होंगी। और अब बात तीरंदाजी पर। भारत की महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। भारतीय टीम की 10 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया पर यह ऐतिहासिक जीत है। महिला रिकर्व आर्चरी टीम का एशियन गेम्स इतिहास में यह पहला स्वर्ण पदक है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: इंडिया विल विन गोल्ड, इंडिया हैज वन गोल्ड इन द वुमेन्स टीम रिकर्व इवेंट, अ फीट नेवर डन बिफोर, सेलिब्रेट दिस विन, ब्रीद इन दिस मोमेंट, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। Champions, two youngsters in Kirti and Kumkum, along with Ankita Bhagat, are stepping onto the prime podium with gold.
2: भारत की महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने फाइनल में मजबूत कोरियाई टीम को 5-3 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। दोनों टीम ने 54-54 का स्कोर करके सेट बराबर कर दिया और हर एक को एक पॉइंट मिला। कोरिया ने दूसरे सेट की शुरुआत 10-9 और 9 के स्कोर के साथ जोरदार तरीके से की। तीसरे सेट में कोरिया ने 8 के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर अगले दो शॉट में 10 और 9 के साथ वापसी की। अपने अगले 3 शॉट में कोरिया ने 3 बार 8 का स्कोर किया, जिससे भारत को सेट जीतने का एक मजबूत मौका मिला। इसके बाद भारत ने 8 के साथ शुरुआत की, फिर 9 के साथ और आखिर में कुमकुम ने 10 का स्कोर करके तीसरा सेट अपने नाम कर लिया, जिससे टीम 4-2 से आगे हो गई। चौथे सेट में कोरिया ने 2-9 के स्कोर से शुरुआत की, उसके बाद 10 का स्कोर किया। भारत ने 8-8 और फिर 9 के शॉट लगाए। इसके बाद कोरिया ने 8-9 और 9 के शॉट लगाए। कीर्ति ने 9 का शॉट लगाकर शुरुआत की और अंकिता ने 1 और 9 का शॉट लगाया, जिसके बाद कुमकुम ने 10 का स्कोर करके सेट बराबर कर दिया, जिससे 5-3 से जीत पक्की हो गई। कुमकुम मोहोद, अंकिता भक्त और कीर्ति शर्मा ने धैर्य के साथ साहसिक खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत को पदक दिलाया। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
0: आइए सुनते हैं पदक विजेता अंकिता ने जीत के बाद क्या कुछ कहा।
3: हम लोग बहुत खुश है कि हम लोगों ने पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसी दिन के लिए पिछले 2-3 महीने से बहुत मेहनत की है। साई बहुत सपोर्ट करती है हम लोगों को।
0: हर भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने रजत पदक जीता। फाइनल में 9 बार की चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम ने भारत को हराया। भारत के नीरज चौहान, यशदीप भोगे और धीरज बोमदेवरा की तिकड़ी को दक्षिण कोरिया की टीम ने 1-5 से हराया। और अब बात सेपक टैक्रो पर। भारतीय पुरुष क्वाड्रेंट टीम ने एशियन गेम्स के सेपक टैक्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें जापान से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। एशिया में ये भारत का सेपक टैक्रो में 3रा पदक है। और अब बात सेलिंग पर। भारत की सेलर नेत्रा कुमाना ने महिलाओं की डिंगी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2 रेस की फाइनल सीरीज के बाद नेत्रा ने 14 पॉइंट के साथ फिनिश किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात क्रिकेट पर। एशियाई खेलों में कल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का सामना स्वर्ण पदक मुकाबले में पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुँचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आभार का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौरान पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान

0: ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एंगम पामे और नामपीबू मरिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
3: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
1: महिला रिकर्व टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smit Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lovleen Borgohain and Ankush Pankal also clinch gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smit Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर

शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खुल गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इसे कॉल करके मेरी ऑफिसर कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi at Raj.

0: Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvadharma Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla and other leaders also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The Vice President and the Prime Minister paid tributes to Mahatma Gandhi at Gandhi Smriti in New Delhi this evening. Several other dignitaries also paid tributes to Bapu. Eminent singers as well as school students sung devotional songs during the program. In Punjab, Border Security Force, BSF, has neutralized two Pakistani intruders today in Tarantaran sector. Quoting BSF sources, Akashwani correspondent reports that they illegally crossed over to the Indian side of the border. Despite giving warnings by the deployed security personnel to stop, they continued advancing, forcing BSF to open fire. Meanwhile, Pakistan Rangers have claimed their bodies after a formal meeting convened by BSF. Further formalities are on to hand over their remains. Final decision will be taken tomorrow. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 6 gold medals in hockey, boxing, wrestling and archery in a spectacular display of skill, determination and sporting excellence. Indian women's hockey team clinched the gold medal, defeating China 1-0 in the closely fought final. The victory marks India's first women hockey gold at the Asian Games in 44 years, ending a long wait for the title. Earlier, Indian wrestler Sujit Kalkal scripted a remarkable comeback to win the gold medal in the men's 65kg freestyle event. In boxing, Parveen Huda won the gold medal in the women's 65kg category, defeating Chinese Taipei's Nian Chin Chen 3-2 in a split decision in the final. Ankush Pangal clinched the gold medal in the men's 80kg category, defeating South Korea's Kim Min Seong by a split decision 4-0 in the final. India star woman boxer Lovlina Borgohain also clinched a gold medal in the 75kg category, defeating China's Bao Zi by unanimous 5-0 decision in the final. In archery, women's recurve team created history by clinching its maiden Asian Games gold medal. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अंजलि। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के साहस की सराहना की। इजराइल जा रही उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश नाकाम कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। G7 देशों ने डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए रणनीतिक भंडार से 10 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई। अमरीका के डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आशंका के बीच उठाया कदम। अमरीका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत ने वैश्विक व्यापार में असंतुलन दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप कदम उठाने पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख ने भारत के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3 की सराहना की। कहा, बिजली ग्रिड को मजबूत करने से मिलेंगे बड़े लाभ। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद जीता स्वर्ण पदक। पहलवान सुजीत कलकल और मुक्केबाज परवीन हुड्डा, लवलीना बोरगोहेन तथा अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर पहुंचा। कुल पदकों की संख्या 76 हुई, जिनमें 16 स्वर्ण पदक शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। उन्होंने इजराइल जा रही दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। उन्होंने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि विदेश से दूर है लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पायलट के जल्द ठीक होने के लिए पूरे भारत में विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। श्री मोदी ने उनके इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। गुजरात के निवासी कैप्टन मच्छर ने फोन करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि उन्हें श्रेष्ठ उपचार मिल रहा है। श्री मोदी ने कैप्टन से थोड़ी देर गुजराती में भी बातचीत की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी पक्की प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर आज वैश्विक स्तर पर मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग ने कैनबरा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारतीय राजदूत नगमा मलिक ने अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मुआन पुई सायावी और अन्य गणमान्य लोगों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और उनकी शिक्षाओं को याद किया। कंबोडिया में भारतीय राजदूत वान लाल वावना बाविट लुंग ने दूतावास के अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी बीच भारत में नॉर्वे के राजदूत में एलिन स्टेनर ने साबरमती आश्रम की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्रोमो
2: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: विश्व दर्पण में आपका एक बार फिर स्वागत है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कम करने के समन्वित प्रयास के अंतर्गत G7 देशों ने 4 महीनों में रणनीतिक भंडारों से 10 करोड़ बैरल तक तेल जारी करने पर सहमति प्रकट की है। इसमें विशेष रूप से डीजल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये तेल जारी करने का समन्वय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा किया जाएगा और पहले 20 दिनों के भीतर ही पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। G7 देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक के बाद जारी बयान में ये जानकारी दी। इस बैठक में ईंधन की आसमान छूती कीमतों तथा अमेरिका तथा यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच वैश्विक डीजल आपूर्ति पर चर्चा की गई। G7 के मौजूदा अध्यक्ष फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देशों में पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से डीजल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने पर सहमति व्यक्त की है। बैठक के दौरान G7 नेताओं ने रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन को अधिक लचीला बनाने का भी निर्णय लिया और सहयोगी देशों के बीच ऊर्जा और तेल उत्पादों के व्यापार को प्रतिबंधित न करने का वायदा किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 1.86 लाख करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC3 के तीसरे चरण को मंजूरी देने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। इसे देश की जनता और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। इससे देश को व्यापक लाभ प्राप्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल ने कहा कि ये पहल भारत को अपनी बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने, बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के साहस की सराहना की। G7 देशों ने डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय भंडार से 10 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smith Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts, Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. G7 countries agree to release 100 million barrels of oil from strategic reserves to ease diesel prices amid US diesel export ban threat. India calls for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at G20 trade ministers meeting in United States. UN climate chief hails India's Green Energy Corridor 3, says grid strengthening will deliver big dividends. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lavlina Borgohain and Ankush Panghal also clinch gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings with tally rising to 76, including 16 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
5: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, aur aapki soojbujh ne. अने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मैं तब मैं आपसे

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, मोहब्बत की भी अजीब कहानी है। कभी किसी की आवाज में मिल जाती है तो कभी किसी पुराने गाने में छिप जाती है। कभी एक मुलाकात उम्र भर याद रहती है और कभी उम्र भर का इंतजार सिर्फ एक गीत में सिमट जाता है। आज रात हम उसी मोहब्बत की बात करेंगे जिसे कहने के लिए कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं और सुनने के लिए सिर्फ एक गीत ही काफी होता है। ठीक इस गीत की तरह जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: रात कभी कभी।
1: एक जमाना था जब मोहब्बत का इजहार खतों में हुआ करता था, मुलाकातों का इंतजार दिनों में नहीं बल्कि महीनों में हुआ करता था, और किसी के नाम से चेहरे पर अगर मीठी सी मुस्कान आ जाए तो उसे ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा जाता था। वक्त बदल गया, अंदाज बदल गया, मगर मोहब्बत, मोहब्बत आज भी वही है, बस उसे महसूस करने के बहाने बदल गए हैं। तो आइए आज लौट चलते हैं उन्हीं सुनहरे दिनों में, जहां हर धुन में एक कहानी थी और हर गीत में किसी का नाम था और हर धुन में यह भी था किसी से मुलाकात करने के कुछ बहाने थे।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम हर सिंगार में, जिसे आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका दोस्त शमीम।

आज एक सवाल है आपसे। अगर इस वक्त आपको किसी एक इंसान से बात करने का मौका मिले तो आप किसे याद करेंगे? कोई ऐसा जिससे बरसों से बात नहीं हुई हो, या कोई ऐसा जो आज भी आपके दिल के बेहद करीब है, या कोई ऐसा जिसे आपने कभी बताया ही नहीं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं? जवाब मुझे मत दीजिएगा, बस अपने दिल में रखिएगा, क्योंकि आज की ये शाम, आज की ये रात के गीत शायद आपके उस जवाब को आवाज़ देते हैं।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत में सबसे खूबसूरत बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बल्कि वो होती है जो बिना कहे समझ ली जाती है। किसी का चुपचाप आपका इंतजार करना, आपकी छोटी से छोटी परेशानी को समझ जाना और बिना कुछ बताए आपका हाल पूछ लेना, ये सभी तो मोहब्बत ही है। और इसी एहसास में मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ लफ्ज अधूरे रह गए, कुछ ख्वाब आंखों में ठहर गए, हम कह ना सके जो बात कभी, वो गीत बनकर बिखर गए। तो अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें एक अनकहा सा कच्चा सा प्यार है।

दोस्तों कार्यक्रम हर श्रृंगार में आज यहीं तक। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं कि आपके जीवन में मोहब्बत के ऐसे ही खूबसूरत गीत हमेशा बजते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट

स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
1: Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
0: वेलकम विशाल।
2: धन्यवाद धन्यवाद अमरीश जी। थैंक यू राजेश।
1: और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख।
0: यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल कॉल्स फॉर WTO कंप्लायंट अप्रोच टू एड्रेस ग्लोबल ट्रेड डिस्टॉर्शंस एट G20 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग। Asian stock market indices close mixed and global crude oil prices decline.
1: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए WTO आधारित नियमों के पालन का आह्वान किया। एशिया के शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा और तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to our first story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity in production, Mr. Goyal said, India is the fastest growing large economy in the world with a domestic demand driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. Mr. Goyal said India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. How do you evaluate what the Commerce and Industry Minister has called upon the WTO compliant approach so that the global trade distortions can be corrected?
2: Well, this is really important, Rajesh, because India, in all matters, be it trade, economy, or diplomacy, and even conflicts as well, has maintained one consistent stand, and that is that the international rules, the international orders, must be abided, must be followed. When it comes to trade, WTO, of course, is the guiding authority. You know, everybody, all countries do respect the guidelines which are there from the WTO, and going against them will, of course, create a imbalance within the economic system as well, and that is where the entire crisis of dumping and trade distortions comes into effect. And this is really important right now as well, because given the constraint which is there right now on the global supply chains because of the ongoing conflicts, both in the European theater and the Middle Eastern theater, this becomes really important, because there will be economies, there will be countries which will not be able to withstand these kind of economic onslaughts if they continue for long in such conditions.
0: Concerns about dumping and also about the predatory pricing as well.
2: Yes, indeed. That's what I'm saying. So in the present situation, wherein the smaller economies are already trying to stay afloat in the face of rising energy prices, in the face of undue pressure on global supply chains, and a lot of uncertainty as well in the trade and economy aspect globally, given the fact that the world powers, so-called economic world powers, are changing the rules of the games almost on a daily basis, if not weekly basis. Statements coming in, they change a lot of stuff. So in that situation, it is imperative for everybody, all the countries specifically, to adhere to these principles which are already in place, so that the troubles for the lesser economically fortunate countries, or you know, the developing economies, so to specifically, are not under undue duress or pressure.
1: और चलते हैं अगली खबर की ओर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई. फ्रांस के विदेश मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना है. विशाल जी, आप क्या कहेंगे, G20 के साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं भारत की तरफ से की जा रही हैं, जैसा कि अभी खबर में हमने देखा फ्रांस और कनाडा के साथ खास तौर पे. इससे भारत का जो अभी व्यापार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, उससे भारत को किस तरह का लाभ पहुंचने की उम्मीद है?
2: देखिए, भारत ने बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक बेहतरीन आर्थिक रणनीति यहाँ अपनाई है, और आर्थिक मामलों में ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेड के लिहाज से, यानी कि व्यापार के लिहाज से, आप जितने ज़्यादा देशों के साथ अलग अलग तरीके से अपने समझौते बना पाएँ, अलग अलग तरीके से उनसे बातचीत करके उनका फ़ायदा और अपना फ़ायदा दोनों एक देख पाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है. जो मल्टीलेटरलिज्म जिसे कहा जाता है, उससे इतर जाके अब थोड़ा सा बायलेटरल

0: कोऑपरेशन जो है उस पर जोर ज्यादा है, इसीलिए FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर जैसे कनाडा के साथ CEPA जो बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस तरह के एग्रीमेंट्स पे चर्चा और इस तरह के एग्रीमेंट को मूर्त रूप देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पिछले 3 से 4 साल में हमने देखी है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उस पर ज़्यादा मोमेंटम हुआ है। कनाडा से बातचीत अभी जारी है, उसमें अलग अलग और किस तरह की उसमें जमाया घटा किया जा सकता है उस एग्रीमेंट में। उसके अलावा चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, या फिर और यूरोपीय जो बाकी देश हैं उनके साथ हो, ब्रिटेन के साथ हमने एक समझौता किया, और भी ऐसे कई देश हैं, और अमेरिका के साथ एक अलग समझौते पे लगातार बातचीत चल रही है। उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ पर ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। तो ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि हर इस वक्त आज की स्थिति में हर इकोनॉमी की तरह, हर देश की तरह भारत भी ये चाहता है कि उसके ऑप्शंस खुले हों, उसके विकल्प खुले हों, और उसकी जो जो व्यापारिक संगठन हैं या देसी कंपनियां हैं जिन्हें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कहें या हमारी जो बड़ी कंपनियां वो कहें, उन्हें और बेहतरीन मौके मिले, और हमारे देश में जो कंज्यूमर बैठा है उसको केवल बाजार के तौर पे न देखा जाए बल्कि उसे भी बेहतरीन क्वालिटी वाले विकल्प चुनने को मिले।
1: जी, और अगर खास तौर से हम यूरोपीय यूनियन की बात करें, जो भारत के साथ समझौता जो FTA हुआ है, उसके क्या क्या आपको भारत के पक्ष में क्या परिणाम दिखाई देते?
0: देखिए, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा संगठन है, और सीधे तौर पर अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ FTA करते हैं तो यानी कि EU के अंडर आने वाले जितने भी देश हैं वो बाध्य होते हैं उस समझौते को मानने के लिए। अलग अलग देशों का अपना अलग अलग, जिसे कहा जाए, एक्सपर्टीज है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज है, कहीं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, किसी के पास साइंटिफिक जो R&D जिसे कहा जाए उसमें वो आगे बढ़कर काम कर रहा है। फ्रांस जैसे देश हैं जिनके साथ हमारा रक्षा समझौता अलग से है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, तो इन सब चीजों को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में बल मिलता है, और ना केवल भारत का जो कंज्यूमर है उसे, या चाहे कंज्यूमर में आप चाहे सरकार मान लें या हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी माने क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा एक रक्षा समझौता है, बल्कि हमारी जो कंपनियां हैं उनके लिए बाजार एक नया बाजार खुलता है, उनको अपने जो क्वालिटी प्रोडक्ट है यानी कि अपनी गुणवत्ता को सुधारने के बाद बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो अपनी एक पहचान बनानी है उसके लिए एक अलग बाजार मिलेगा, अलग मौका मिलेगा। केवल ये नहीं माना जा सकता कि आप अब सामान, अगर आपकी कंपनी का सामान अगर अमेरिका में बिकता है तो ही आप बड़ी कंपनी है, तो अगर उसके लिए विकल्प ज्यादा खुलते हैं तो यानी कि मौके ज्यादा मिलेंगे कंपनियों को और उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को।
2: The signal that he would like to join the EU, the country might, and we already have an agreement with UK, and that is going to be a feather in our cap.
0: Well, it's going to be really interesting as well, because you know that's a separate a battle of wits which is going on there. Yeah. Because let's not forget that this was one particular topic on which the United Kingdom was almost split in between, and this time around perhaps they're taking a turnaround because of their internal domestic politics as well, because there are two parts of the kingdom perhaps which have not been in favor since day one, and seemingly they're still not in favor as well. So domestic issues, domestic pressures do tend to make international calls being made by sometimes leaders of the free world as well. Let's see how far the British Prime Minister can push this through.
2: So, and the minister is also focused quite a bit on the India EU free trade agreement and also CEPA. He wants these to be expedited.
0: That's
2: rightfully so, because
0: yes indeed, and it serves the purpose for both. When we talk about CEPA, it serves the purpose for both India and Canada, because let's not forget that the Canada was also on the short end of the stick when President Trump was going around brandishing his tariff stick. So and there was a lot of not so healthy exchange of words between both sides, so of course Canada would also want to go ahead and hedge its bets. That's one, and two, look for more sustained partnerships with perhaps more larger markets. That's one from their angle. And two, of course, they would also want to be there on the table and say that, okay, fine, if it's not going our way, then we have somebody else to fall back upon. And in current economic scenario, I think apart from China, India is

0: other market to fall back upon.
1: और चलते हैं शेयर बाजार का हाल भी जान लेते हैं. आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर शेयर इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार नहीं हुआ. बाजार सोमवार को फिर खुलेंगे. अवकाश से पहले बेंचमार्क सूचकांकों पर लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा और इनमें लगातार आठवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. इस अवसर पर आज भारतीय मुद्रा बाजार भी बंद रहे. पिछले कारोबारी सत्र में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 96.31 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था. विशाल जी, आप क्या कहेंगे? आज हालांकि शेयर बाजार बंद है, लेकिन लगातार आठ हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव बना हुआ है और गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट को आप सिग्निफिकेंट तो है, बट देन इसका इम्पैक्ट किस तरह का आप देखते हैं?
0: देखिए, आंकड़ों को दो तरीके से देखा जाता है. हर बार जब हम इस कार्यक्रम पे आंकड़ों पे चर्चा करते हैं, और मैं हमेशा आंकड़ों के आधार पे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि लेकिन आंकड़ों को देखने का भी अपना नजरिया है. अब अगर गिलास को आप देखें तो आधा गिलास खाली भी हो सकता है और आधा गिलास भरा भी हो सकता है. निश्चित रूप से जो आंकड़े आपने अभी बताए और जो आंकड़े जिन पर चर्चा भी की जा रही है, जिन पर लिखा भी जा रहा है, वो दुरुस्त हैं. यानी कि लगातार आठ हफ्ते तक बाजार में गिरावट दर्ज की गई, और ऐसा लगभग दो दशक के बाद ऐसा देखने को मिला है. लेकिन वो गिरावट कितनी है? नंबर एक, वो गिरावट लगभग 9% के आसपास है अगर मोटे तौर पे देखें तो. हाँ, इसमें यह भी सच है कि 52 वीक हाई, यानी कि पूरे 52 हफ्ते का जो सबसे ऊंचा आंकड़ा था, उससे आप बहुत नीचे आ गए हैं. लेकिन अब इनके कारणों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान डालें तो समझ में आएगा कि क्या कोई नया फैक्टर ऐड हुआ है. जी नहीं, ये सब वही फैक्टर हैं जो लगभग पिछले एक साल से इन सभी फैक्टर से बाजार जूझ रहा था. चाहे वो FII का आउटफ्लो हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो जिसे कहा जाए हम सिग्नल्स जो आते हैं, इंटरनेशनल सिग्नल्स जिसे कहा जा सकता है, मार्केट को क्यूज मिलते हैं, जो क्रूड ऑयल की कीमतों की हम बात करें, उसमें जिस तरह से कोई स्टेबिलिटी नहीं है. क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ दिनों के लिए ऊपर जाती हैं, और अगर वहां माहौल थोड़ा सा शांत रहता है तो कुछ दिनों के लिए नीचे आती हैं. यानी कि कोई एक सस्टेन्ड क्यू मार्केट को नहीं मिल रहा था, नंबर दो. और नंबर तीन अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे जैसे अब मोटे तौर पर कल से जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े उनमें सब में ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अगर आंकड़े देखें तो उनमें उनके आंकड़े, उनकी जो बिकवाली है, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स की जो बिकवाली है, सेल जिसे सेल का आंकड़ा से कहें, वो तो बहुत ऊपर गया. लेकिन जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं थे जिस एक्सपेक्टेशंस पे शायद इन्वेस्टर्स चाहते थे. दूसरा, अगर वापस हम FII की तरफ जाएं तो वहां भी एक थोड़ी सी डाइकोटॉमी है. डाइकोटॉमी इसलिए है कि सितंबर के महीने में लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बाजार से FII ने निकाला, यानी कि इक्विटी बेचकर निकाला, लेकिन प्राइमरी मार्केट में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उन्हीं FII ने इन्वेस्ट भी किया. अब वो इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि US की जो बॉन्ड मार्केट है वहां उनको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है. लेकिन फिर कहा जाएगा कि इक्विटी मार्केट से क्यों हटाया गया, तो हो सकता है, और हो सकता है कि ये आंकड़े भी बताते हैं कि जो लार्ज कैप जो है हमारे भारत के बाजार में, उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन्वेस्टर्स चाहते होंगे. तो ये पैसा लगाना और पैसा निकालना ये बाजार में निरंतर लगा रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा. इसीलिए मेरा कहना है गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये अपने नजरिए पर निर्भर करता है, और ये आपके रिस्क एपेटाइट पर भी निर्भर करता है कि आप किस हद तक होराइजन की किस हद तक आप देख पाते.
1: सो देयरफॉर विशाल, व्हिच डोमेस्टिक ट्रिगर्स शुड इन्वेस्टर्स वॉच आउट फॉर this next week? The RBI policy and its commentary, the FPI flow data, early Q2 earnings signals, or the macro data, as you elucidated quite a bit on them. So what should I look out for while I'm thinking of investments next week?
0: When you talk about macro data, all of these are the factors. You can't overlook either of these factors. That's one. But two, if you're an investor, what are you looking out for? You're looking out for investing in a particular company, in a scrip, in a small cap company, in a mid cap company, in a large cap company. Somewhere you're looking to invest. So the larger part which you should look out for is to look for that particular company's financial health. That's one. It's capacity building. That's two. It's future horizon. That's three. And what does the sector say? The particular sector to which the company belongs. What do the policies say? All the other larger data is creating a larger picture. But we are not investing into the larger picture as investors. We're small investors, retail investors. I'm looking at it from their perspective. I'm not looking at it from FII's perspectives here. So I should be looking as an investor to the individual script which I'm going to invest in, and then take a concerted decision, because ultimately the entire atmosphere which is being created, that will of course affect my investment, but that will of course affect the investment of the entire market as well. Largely what will affect my investment more is whether the company which I've invested in has the potential to grow, has the wherewithal to grow, does its management has the willpower to go ahead and take those calls which need to be taken in that particular sector.
1: Okay. Now, very important is that the key concern for the market is, I believe, not oil pressure alone, but the combined pressure from elevated bond yields, tight global liquidity, and the geopolitical uncertainty. While softer crude prices, can improve shipments, can be constructive, higher yields raise the cost of capital, compress equity valuations, and make fixed income assets relatively more attractive. So, how should I react when I talk about the elevated bond, or look at the elevated bond yields?
0: I think this can be answered in just two, three sentences, because the bond yields is something which is a larger game played well beyond the control of even the markets as well, because there are larger economic interests of specific countries which are involved, which then drive the bond yields of either on this end or on that end as well. We should be on the lookout, be concerned about it as well. But that's not the only factor. So, of course, we should not be very worried about it, unless we are, unless somebody is a huge FII investor and perhaps maybe, moving
1: should
0: in.
1: Should I be worried about FII's leaving?
0: No, not at all.
1: 26,000 crores is what not a big picture.
0: Not a big picture, I must tell you, because, in the past, there have been days wherein 30,000 crore rupees have moved out of the market. Next day, 25,000 crore rupees have come in.
1: Okay. हाल भी जान लेते हैं। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग 2.6%, जापान का निकेई 0.9% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% नीचे रहा। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और ताइवान का ताइएक्स 0.2% चढ़ा। इस बीच अवकाश के कारण चीन के बाजार बंद रहे। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे एशिया और यूरोप के बाजारों की जो आज की परफॉर्मेंस है उसके बारे में?
0: देखिए, मिश्रित नतीजा है, और मैं कहूंगा कि ना ही तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद से बढ़ के है किसी मार्केट में, और ना ही उम्मीद से बहुत ज्यादा कम है। हालांकि अमेरिकी बाजार का जो रुख है वो थोड़ा पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि वहां से हो सकता है कि सोमवार को जो है कुछ क्यू भारतीय बाजारों को भी मिले, और खासतौर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं जिनमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है अमेरिकी बाजार में, और फेडरल रिजर्व का जो हाल ही का जो फैसला था वो, और थोड़ा सा जो एक प्रेशर जो बन रहा है वहां पे, क्योंकि अभी भी वहां के एनालिसिस के मुताबिक लगभग 25-30% उम्मीद ये है कि जो अक्टूबर में एक बार फिर से फेड की बैठक होगी तो उसमें फिर थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो सकती है जो ब्याज दरें हैं उनमें। तो ये सब क्यूज हैं जिनका बेनिफिट मिल सकता है। बाकी निक्के, हैंगसेंग और कॉस्पी, इन सब में जो चल रहा है वो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है प्लस और माइनस में, तो यह माना जा सकता है कि सब ठीक है, नजर बनाए रखें।
1: जी, मूविंग ऑन, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड शार्पली टुडे। Brent crude was trading 2.6% down at $99.64 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 4% lower at $89.13 per barrel at the time of writing this report. Vishal, India imports most of its crude.
0: Yeah, now, more than 80%.
1: Yeah. So how does a $10 move in oil mean for inflation, the current account deficit, or the GDP growth?
0: It's a huge number to add if you look at it that way. But then there are countermeasures also which are always put in place. The Indian oil marketing companies do absorb most of the shock as the government has pointed out time and again. But to what extent and up till what level will it happen? Because just recently, you know, the ATF prices

0: and the commercial LPG prices were increased. So slowly and slowly, you know, the pressure on these oil marketing companies also need to be released. They can't always, you know, foot the bill. But yes, these numbers might seem small, but given, you know, if you take a look at the larger bill, it looks like it's pretty huge.
1: और चलते हैं अगली खबर की ओर. नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचा इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा. इसके तहत ₹2000 तक के UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगेगा. भुगतान शुल्क को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक खबरों के बीच सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपुष्ट संदेशों को आगे न भेजें. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.
2: Countries' foreign exchange reserves declined $18.3 billion to $747.5 billion during the week ended 25th of September. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, dropped by $15.5 billion to $615.4 billion during the week. Gold reserves dropped by $2.5 billion to $108.7 billion. Special drawing rights fell by $97 million to $18.64 billion. Country's reserve position with the International Monetary Fund dipped by $86 million to $4.8 billion. Vishal, how do you see this? Very, very briefly.
0: Well, again, this is cyclical because, you know, you're looking at this data. When you say fell by, then of course we are looking at what the last figure was. But then the last figure was much higher than what the previous last figure was.
2: Okay.
0: So let's look at it in context also.
1: और कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का पांचवा संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है. इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार 3 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुड़ेंगे. इसमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
2: The government has reduced the stock holding period for sugar dealers to 15 days and fixed the stock holding limit at 1,000 quintals with effect from 15th of this month. It will remain effective till November this year. Consumer Affairs Ministry said that the government has revised the sugar stock holding norms to prevent hoarding and ensure smooth supply to consumers during the festive season.
1: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: Thank you, Vishal, for being with us. And before we close, the headlines once again. Union Minister calls for WTO compliant approach to address global trade distortions at G20 trade ministers meeting. Asian stock market indices closed mixed and global crude oil prices declined. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। ये गीत है फिल्म वारिस से।

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। समाचारों के उस पार मंजू आ गई है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में कल विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गई। GDPDP पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर 2.42 लाख से ज्यादा विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी, ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके।

स्वादिष्ट प्ले वीक मेगा हट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 27 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगाज करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

वाकई मिलन की रुत तो है, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो ऐसे दिल जुड़ते हैं, ये वो वक्त है जब दो ऐसे दिल जुड़ने का समय होता है जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। हेलो हाय, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप भी अच्छे हैं, तो फिर स्माइल करिए, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं, और जब आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं तो फिर मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ही के लिए।

जब दिल की महफिल सजी हो और हम जुड़े हों दिल से दिल तक, तो फिर बातें भी जज्बाती होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। रात का हसीन समा है और इस हसीन समा में नींद कैसे आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रात भी हम लोगों के लिए एक जश्न ही है, जहाँ रात है, चांद है, तारे हैं और साथ में है खूबसूरत गीत। अगला गीत अभी के लिए।

चोरी सी नहीं बाबा, खुल्लम खुल्ला साथ चलने का ऐलान है। मोहब्बत में इंसान कितना बेपरवाह हो जाता है ना। उसे ना दुनिया की फिक्र होती है, ना कल की चिंता होती है। उसे बस एक ही ख्वाहिश होती है कि ये रात, ये पल यहीं ठहर जाए। जब वो मोहब्बत में होता है और अपने के साथ, अपनों के साथ होता है, तो एक ही तमन्ना होती है कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाए, ये रात यहीं रुक जाए। और वो उन सब लम्हों को कैद कर लेना चाहता है, उस पल को जी लेना चाहता है। और सच बताऊं तो ये जो थोड़े से पल होते हैं हमारी ज़िंदगी में, यही कीमती होते हैं। और ऐसे लम्हों में अगर निगाहें मिल जाए तो फिर क्या कहना। अगला गीत आप ही के लिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान

एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा विसाल भी इतना हसीन नहीं होता। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपके रात के हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:41 और 20 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप और अगला गीत रफी साहब और लता जी की आवाज़ में।

मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे खास एहसास किसे कहा जाए। कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर इस दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज या कीमती एहसास की अगर बात करें तो उसे क्या कहा जाए। कोई बहुत महंगी चीज को कीमती कहा जाए, फिर जवाब आता है कि नहीं, एक ऐसे इंसान का हमारी जिंदगी में होना जो हमेशा हमारे साथ है, एक ऐसी दो जोड़ी ऐसी आंखों का होना जो सिर्फ हमारे लिए इंतजार करती है, ऐसी चीजों का होना, ऐसी निगाहों का होना, ऐसे एहसास का होना, मुझे लगता है कि जिंदगी में इससे कीमती चीज और कुछ भी नहीं हो सकती। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

गीत आप सुन रहे थे रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। आप इतने प्यार से बुलाएं और हम आए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जिंदगी कितनी फिजूल सी लगती है ना, जिसमें किसी ऐसे इंसान की कमी हो जिसकी आवाज हमें बुला सके, तो वो जिंदगी बेमायने सी लगती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर ऐसे आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है तो उसे संभाल के रखिए, और अगर नहीं है तो उसकी तलाश कीजिए। अगला गीत लता जी की आवाज में।

0: समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। शिपिंग कॉरपोरेशन के कामकाज के 65 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री सोनोवाल ने भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को बनाए रखने में शिपिंग कॉरपोरेशन की भूमिका पर जोर दिया। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने तरन तारण सेक्टर में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षा कर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, इसलिए BSF को गोली मारनी पड़ी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। सौदेशमलव एक मेगा हर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11:34। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की रफी साहब की आवाज के साथ।

फिल्म का नाम तेरे घर के सामने और ये जादुई आवाज थी रफी साहब की, संगीत एस जी बर्मन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। ये फिल्म 1963 में आई थी और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसे लिखा और निर्देशित किया था विजयानंद ने और निर्मित किया था देवानंद ने। ये फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म ओरा थके ओधारे पर आधारित थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, नूतन, राजेंद्रनाथ, ओम प्रकाश और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। अगला गीत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

मैं जब भी इस गाने को सुनती हूँ ना तो मैं पहाड़ों में पहुंच जाती हूँ और ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा मौसम है और कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और फिर वहां से खुद को वापस लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सच में इस गाने में को जो पिक्चराइज किया गया है ना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दमदार है। अगर इस फिल्म की बात, गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, फिल्म का नाम शगुन, और ये फिल्म आई थी 1964 में, जिसको निर्देशित किया था नज़र साहब ने, और फिल्म में अभिनय किया था वहीदा रहमान, कमलजीत, नज़ीर हुसैन, अचला सचदेव, चांद उस्मानी ने। और इस फिल्म की शूटिंग को बॉम्बे और नैनीताल के महबूब स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, और इस फिल्म को संगीत से सजाया था खय्याम साहब ने और बोल लिखे थे साहिर साहब ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मधुमति से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत सलील चौधरी का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म को निर्मित किया था बिमल रॉय ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर ने निभाई थी। इस फिल्म को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला गीत फिल्म तुमसा नहीं देखा आप सभी के लिए रफी साहब और अर्शा जी की आवाज़ में।

आत्मलो के रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे आत्मलो के रूठ के।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:35 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर, रफी साहब और मुकेश की आवाज़ में।

ये सदाबहार गीत आपने सुना फिल्म श्री 420 से, और आवाजें थी मुकेश, लता मंगेशकर और रफी साहब की। संगीत से सजाया था इस फिल्म को शंकर जयकिशन ने, और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1955 में, और इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था राज कपूर साहब ने, और इस फिल्म को लिखा था ख्वाजा अहमद अब्बास ने, और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नरगिस और नादिरा ने। ये फिल्म 1955 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में।

14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। वक्त हुआ है 1:50 और आप सुन रहे हैं रात, आप सुन रहे हैं गीत सुहाने।

0: झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भी भक्ति गीत गाए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 3 ऑपरेशन में बारीकी से नक्काशी की गई हाथी दांत की 4 चीजें, 1 तेंदुए की खाल, 2 जिंदा पेंगुलिन, 3 किलो बाघ की हड्डियां और बाघ के 2 केनाइन दांत जब्त किए हैं। इन 3 ऑपरेशन में 11 लोगों को पकड़ा गया है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना गोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Mchhar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Mchhar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.

ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को आमीज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। एक मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 41 सेकंड। रात सुरभि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

इसमें ऐसा ही होता है, कोई इंसान जो हमारे पास नहीं होता, हमारे करीब नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें ऐसा एहसास होता है कि वो इंसान हमारे आसपास ही है, हमारे साथ साथ कहीं ना कहीं उसका एहसास हमेशा साथ चलता है। सलाम इश्क बच चुका है, लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग से उस इंसान का खुमार नहीं उतरा है, वो अभी भी आपके दिलो दिमाग में छाया है, तो यकीन मानिए आप प्यार की गहराइयों में। और सच कहूँ तो जब इश्क का खुमार चढ़ता है तो पूरी दुनिया का शोर एक तरफ हो जाता है और उस अकेले इंसान की आवाज़ आपको जहाँ के तमाम शोर में अलग से सुनाई देती है, और सुनाई ही नहीं देती, महसूस भी होती है, क्योंकि इश्क बहुत लंबा चौड़ा नहीं, दो लफ्ज़ों का है। अगला गीत आप ही के लिए।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

लेकिन जो बात वो दो लफ्ज कह पाते हैं वो हजार हजार पन्नों की किताबें नहीं कह पाती। वही दो लफ्ज जो किसी की आंखों से बयां होते हैं, किसी के चेहरे से बयां होते हैं, किसी की झुकी हुई नजरों से बयां होते हैं। और जब हम ऐसी फीलिंग से गुजर रहे होते हैं तो हम चाहे कितनी भी बुद्धू हों, कितनी भी अनाड़ी हों, शायर बन ही जाते हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

ये तो सच बात है कि जब इंसान प्यार में होता है, मोहब्बत में होता है, तो वो शायर के साथ साथ सिंगर भी बन जाता है, और वो अपने प्यार को गीतों में, गजलों में, शब्दों में ढूंढने लगता है, तलाशने लगता है। और सच कहूँ तो शायरी आए या ना आए, पर दिल में जब कोई इंसान उतर आता है, दिल में कोई इंसान समा जाता है, तो हमारा जो अंदाज है, चाहे वो देखने का हो, समझने का हो, किसी भी मामले में, वो हमारा जो अंदाज होता है, वो अंदाज अपने आप बदल जाता है। दुनिया की सारी चीज़ें हमें अचानक खूबसूरत लगने लगती हैं। तो प्यार संसार का वो सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो इंसान को इंसान बनाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

कल रात तुम सपने में आए थे, कल रात तुम सपने में आए थे, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर हंसी मजाक कर रहे थे। हैरानी की बात है ये कि तुम्हारा चेहरा जो जहन में धुंधला पड़ गया था, रात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, आवाज़ भी बिल्कुल वही, खुशबू भी बिल्कुल वही। मैं सपने से उठकर एक साथ इतना खुश और उदास कभी नहीं हुई। एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:49 और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत लता जी की आवाज में।

वैसे कहा तो ये जाता है कि दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। किसी इंसान का हमारी ज़िंदगी में आना, ख़ास बनना पहले से ही तय होता है। जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, हमें मिल जाता है, तो सच कहूँ तो ज़िंदगी की सारी थकान और सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती है।

भाई जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगे फिरोज। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पलक

0: क्षेत्र के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात की। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए चल रहे तस्करी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एयरपोर्ट का एक कर्मचारी, 6 ट्रांजिट यात्री और विदेश जाने वाला एक भारतीय यात्री शामिल है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाज के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। आज लक्षद्वीप, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसला कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11:12। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात के इस खामोश फिजा में जहां तारे इस विशाल आसमान को अपनी रोशनी से रोशन कर रहा है और उसी प्रकार हवाओं में घुली है कुछ मीठी सी बेहद खूबसूरत खुशबू और उसकी नमी, वहीं हम हाजिर हैं आपके साथ कुछ खूबसूरत नगमों और दिल को छू लेने वाली यादों के नगमों के साथ। कहते हैं कि मोहब्बत भी बड़ी अजीब शय है, कभी किसी की मुस्कुराहट में नजर आती है तो कभी किसी पुराने गीत के अल्फाज में अपना अक्स ढूंढ लेती है। और जब बात हो पुराने फिल्मी गीतों की तो हर नगमा अपने साथ एक खूबसूरत दास्तान लेकर आता है। आज की इस हसीन रात का आगाज करते हैं साल 1970 के एक बेहद खूबसूरत फिल्म आन मिलो सजना के एक बेहद दिलकश नगमे से, जिसे अपनी पुरकशिश आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। अल्फाज हैं आनंद बख्शी साहब के और संगीत बेहद खूबसूरत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का। तो जरा अपनी यादों के गुलशन में उतरिए और इस नगमे के साथ महसूस कीजिए मोहब्बत के तमाम रंग, क्योंकि हर फूल का रंग अपना रंग होता है और हर गीत का अपना एक अलग एहसास। तो आइए आज के सफर का आगाज करते हैं इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में नगमा था फिल्म आन मिलो सजना से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल सजी है आपके अपनी पसंदीदा बेहद खूबसूरत प्यार भरे नगमों के साथ हमराही, और हमराही में मैं हूँ आपका हमराही फिरोज। तो आप सभी का रात के इस खामोश फिजा में एक बार फिर से खैर मकदम है। जहां लफ्जों से ज्यादा एहसास बोलते हैं और खामोशी भी कभी कभी किसी से गुफ्तगू करने लगती है। कहते हैं ना दोस्तों, मोहब्बत में सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब कोई आपसे यूं ही बात करता रहे बिना किसी खास वजह के, और आप बस उसकी आवाज में अपनी पूरी दुनिया तलाश रहे हो। कभी कभी किसी की छोटी सी बात चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है, और किसी की आवाज रातों को और भी हसीन बना देती है। तो आज के इस बेहद खूबसूरत रात में क्यों ना कुछ ऐसा ही बेहद खूबसूरत प्यारे एहसासों को याद किया जाए। ऐसे एहसासात जो हमेशा के लिए आपके दिल में बस गए, जहां ना कोई शिकवा हो ना कोई शिकायत, बस हो तो मीठी सी गुफ्तगू और दिल में छुपी मोहब्बत। ऐसा ही एक नगमा है 1970 में आई फिल्म सच्चा झूठा से, जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने एक बार फिर से। इंदिवर साहब के खूबसूरत बोल और कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत इस गीत को एक ऐसा एहसास देते हैं जो आज भी दिल के बेहद करीब है, और आप ही उसे गुनगुनाने पर

0: हमेशा मजबूर हो जाते हैं जब भी इसे सुनते हैं। तो अपने किसी खास शख्स को याद कीजिए, उनकी बातों को महसूस कीजिए और इस सदाबहार नगमे के साथ खो जाइए मोहब्बत की हसीन वादियों में। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा लेट नाइट शो, जहां हर नगमा एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक बेहद खूबसूरत एहसास।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। मोहम्मद रफी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में।

रात की इस हसीन फिजा में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े वादों और इजहार का नाम नहीं होती। कभी किसी का यूं सजना सवरना, कभी नजरों का चुपके से मिलना, तो कभी एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी दिल में हजारों ख्वाब जगा देती हैं। और जब कोई अपने महबूब के लिए काजल लगाए, गजरा सजाए, तो यकीन मानिए उस सादगी में भी एक अलग ही कशिश होती है। आज की इस खुशनुमा रात में हम आपको ले चलेंगे उन सुनहरे दिनों की तरफ, जहां रोमांस में नजाकत थी, गीतों में शरारत थी और मोहब्बत में एक अलग सी मिठास हुआ करती थी। ऐसा ही एक नगमा 1972 में आई फिल्म अपना देश का, एक ऐसा चुलबुला और रोमांटिक नगमा जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है किशोर कुमार साहब और हम सबकी प्यारी लता जी ने। आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत अल्फाज और आरडी बर्मन साहब का मस्त मौला संगीत इस गीत को आज भी उतना ही खास बना देता है जितना आज से तकरीबन 50 साल पहले था। तो जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने किसी खास को याद कीजिए और महसूस कीजिए वो मीठी सी शरारत, वो प्यार भरी नजाकत, क्योंकि कुछ गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, सीधे दिल में उतर जाते हैं। इसी प्यार, इसी एहसास और इन्हीं सुरीली यादों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि रात अभी जवां है और मोहब्बत के नगमे अभी बाकी हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:35 और 3 सेकेंड। तो जनाब, आपको कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा और आप अपने दिल की बात हम तक ज़रूर लिख कर भेजिएगा। और उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा मेल आईडी नोट कर लें। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldeirdaily@gmail.com। इट्स fmgoldeirdaily@gmail.com। हमें आपके पैगामात का इंतज़ार है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हमराही के इस बेहद खूबसूरत सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज़ कोई तोहफा नहीं, कोई कसम नहीं, कोई वादा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत एहसास होता है। जो एक दिल दूसरे से जाकर मिलता है तब वो एहसास पैदा होता है। जो एक ऐसा वादा करता है जिसमें भरोसा भी होता है, इंतज़ार भी, और उम्र भर साथ निभाने का खूबसूरत ख्वाब भी। कभी किसी की कही हुई एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी की सबसे हसीन याद बनकर रह जाती है, और कभी एक वादा दुनिया में भी दो दिलों को करीब रखता है और उसके जाने के बाद भी। तो आज की इस रूमानी रात में जरा उन लम्हों को याद कीजिए जब किसी ने आपसे कोई वादा किया था और आपने उस वादे को अपने दिल में बड़े प्यार से सहेज कर रखा था। आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसे ही मीठे एहसासात से जुड़ा है। साल था 1971 का और एक फिल्म आई थी कारवां। इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक गीत है जिसमें अपनी जादुई आवाज इस गीत को सजाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के दिलकश अल्फाज और आर डी बर्मन साहब का बेहद सुरीला संगीत इस गीत को एक ऐसा खूबसूरत एहसास बना देता है जो आज भी मोहब्बत करने वालों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा है। तो आइए अपने किसी खास को याद कीजिए जिसे आप चाहते थे, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, उस मुस्कुराते हुए चेहरे को, अपनी उस प्यारी सी बातों को और उस वादे को जो शायद आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए हुआ है। इसी एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में।

रजा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में नगमा था फिल्म कारवां का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल की बातें उतनी ही साफ सुनाई देने लगती हैं। दिन भर की भाग दौड़ थम चुकी है, शहर की रौनक कुछ कम होने लगी है, लेकिन शायद इस वक्त किसी के दिल में किसी की याद पहले से कहीं ज्यादा रोशन है। कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स आता है और उसके आने के बाद हमें खुद समझ नहीं आता कि दिल को हुआ क्या है। उससे मिलना अच्छा लगता है, उसकी बातें याद आती हैं, उसकी मुस्कुराहट बार बार आंखों के सामने आती हैं, और फिर दिल खामोशी से पूछता है, आखिर ये कैसा एहसास है। शायद यही मोहब्बत की पहली दस्तक होती है। ऐसा एक बेहद खूबसूरत नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की इस बेहद खूबसूरत महफिल में, आज की इस रुमानी रात में। 1985 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म प्यार झुकता नहीं का एक बहुत ही प्यारा नगमा, शबीर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों से सजा है ये गीत, जिसके अल्फाज हैं SH बिहारी साहब के और संगीत है लक्ष्मी का प्यारे लाल साहब का। तो अगर इस वक्त आपकी आंखों के सामने भी किसी खास का चेहरा है, अगर किसी मुलाकात की याद आपके दिल में आज भी महफूज है, तो उस एहसास को जरा महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में बस मिलते नहीं, दिल में उतर जाते हैं इस नगमे की तरह।

तुमसे मिलकर न जाने क्यों कुछ याद आता है, और यादों की बात जब चली है तो फिर दिल उन्हीं यादों की तरफ मचलता हुआ चला जाता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ एहसास इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें जोर से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर, एक मुस्कुराहट और एक खामोश सी अदा, और दिल सब कुछ समझ लेता है। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है दोस्तों, दिल पर पड़ने वाली एक हल्की सी दस्तक जिसे महसूस तो किया जा सकता है मगर बयां करना आसान नहीं होता। और जब सामने हो कोई खास तो उसके हाथों से आई छोटी सी शरारत बस सब कुछ एक अलग तरह के माहौल में बदल देती है। फिर दिल बस इतना ही कहना चाहता है, जरा आहिस्ता, ये दिल बहुत नाजुक है। आज की इस रूमानी रात में, इस बेहद खूबसूरत संगीत के सफर में, अगला नगमा आप ही की पसंद का, 1975 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म प्रेम कहानी से। मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, गीत आनंद बख्शी साहब के और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत। तो अगर इस वक्त आपके पास भी कोई खास यादें हो मौजूद, जैसे कोई पुराना खत, कोई मुलाकात या किसी की मुस्कुराती हुई कोई तस्वीर, तो उसे ज़रा अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए और इस नगमे को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ एहसासात बस आहिस्ता आहिस्ता महसूस करना ही अच्छा लगता है। तो आइए इन्हीं एहसासात को आप भी महसूस कीजिए इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, जहां रात की खामोशी में भी मोहब्बत की एक मीठी सी गुफ्तगू जारी है।

योगेश साहब और लता जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। हमराही से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 4:10 पर लेकर अगला प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय वे लोग नहीं है जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं।

0: अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षा कर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, इसलिए बीएसएफ को गोलीबारी करनी पड़ी। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस त्रिशूल 30 सितंबर को स्पेन के वालेंसिया बंदरगाह पहुंचा। ये भूमध्य सागर, अटलांटिक और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में उसकी तैनाती का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान आईएनएस त्रिशूल स्पेनिश नौसेना के साथ क्रॉस डेक भ्रमण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा। पाकिस्तान सरकार और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेताओं के बीच आज फिर बातचीत होगी। पीटीआई नेताओं के इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले मतभेदों को सुलझाने के लिए सरकार से कल बातचीत हुई थी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाज के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और मोहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़ा एड्रेस से और मेरे को इसे कॉल करके मेरी फ्राइज़ कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight, travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, U.S. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest-growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains.

सुनी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11:03 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात जितनी खामोश होती जाती है दिल उतनी ही साफ आवाज में हमसे बातें करने लगता है। दिन भर की भाग दौड़ में हम न जाने कितनी बातें पीछे छोड़ आते हैं, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ अनकहे जज्बात और कुछ ऐसे लोग जिनकी याद अचानक रात के किसी पहर दस्तक देती है। लेकिन आज की रात उन अधूरे ख्वाबों को मायूसी से नहीं उम्मीद की नजर से देखने का है, क्योंकि जिंदगी भी तो एक बगिया है। कभी इसमें धूप खिलती है, कभी बारिश होती है, कभी कोई फूल मुरझाता है, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। नई सुबह के साथ कोई नई कली भी फिर से मुस्कुरा उठती है और शायद इसी खूबसूरत एहसास को बहुत ही सादगी से कहता है आज का ये हमारा पहला नगमा। फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। इस गीत को लिखा है नीरज साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा है एसटी बर्मन ने। तो जो लोग इस वक्त जाग रहे हैं, हमें सुन रहे हैं या सफर कर रहे हैं किसी की याद में, किसी ख्वाब में या बस अपने पास से मिलने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, इस गीत को अपने नाम कीजिए और याद रखिए, आज अगर रास्ता थोड़ा मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल खूबसूरत नहीं होगी। ख्वाबों को जिंदा रखिए, दिल में थोड़ी सी रोशनी रखिए, क्योंकि जिंदगी की बगिया को महकने में कभी कभी बस एक उम्मीद की छोटी सी जरूरत होती है।

जी हाँ, यकीनन जीवन की बगिया महकेगी। दिल में सच्ची लगन और मेहनत हो, सच्चे प्यार के साथ आप कदम आगे बढ़ाएं तो यकीनन जीवन की बगिया तो महकेगी ही। रात के इस खूबसूरत पहर में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी भी एक सफर है, कभी सीधी राह, कभी कोई अनजान मोड़, और कभी ऐसा हम सफर जो पूरे सफर का मतलब ही बदल दे। दोस्तों, जिंदगी में आने वाला हर मोड़ हमें डराने के लिए नहीं होता, कई बार वही मोड़ हमें एक नई राह, एक नया ख्वाब और एक नई उम्मीद दिखाता है। अगर आज का रास्ता थोड़ा मुश्किल है तो परेशान मत होएं। याद रखिए, एक मुश्किल मोड़ पूरी जिंदगी का रास्ता नहीं होता, बस चलते रहिए, क्योंकि हो सकता है अगला मोड़ आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए। और इसी एहसास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक बेहद खूबसूरत नगमा सुनवाएंगे। मेरे हमसफर फिल्म का ये सदाबहार गीत किसी राह में किसी मोड़ पर। 1970 की इस खूबसूरत फिल्म में जो आवाज है, इस नगमे में जो आवाजें हैं, वो है मुकेश साहब और लता जी की। गीतकार हैं आनंद बख्शी साहब और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। तो इस रात अपनी फिक्र थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इस गीत के साथ अपने ख्वाबों की राह पर निकल पड़िए हमारे साथ इस बेहद खूबसूरत सफर में जिसका नाम है अरुणिमा। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र। हम सफ़र वो होता है जो हर हाल में आपके साथ होता है, हर मुश्किल हालात में आपके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। और जब ऐसा हम सफ़र हो तो ये ज़िंदगी बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लगने लगती है। रात के इस खामोश पहर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। कभी कभी जिंदगी में अंधेरा बाहर नहीं, हमारे ख्यालों में होता है, हमारे अंदर होता है। और ऐसे वक्त में किसी अपने की एक मुस्कान, एक प्यारी सी बात दिल में उम्मीद का चिराग जला देती है। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, अपने पैगामात के ज़रिए, अपने खूबसूरत अल्फाजों के ज़रिए। आपको करना ये है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। साथ ही साथ आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अपने ख्यालात का इजहार इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा fmgoldeardaily@gmail.com, इट्स fmgoldeardaily@gmail.com। और साथ ही साथ अगर आप हमें चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर हमें अपने पैगाम पहुंचाएं, तो उसके लिए हमारा नंबर नोट कर लें। नंबर है 9868687853, इट्स 9868687853। ये वो नंबर्स है जिस पर आप अपने ख्यालात का इजहार हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आज का अगला ये खूबसूरत नगमा बेहद खूबसूरत एहसासात से भरा हुआ, एक ऐसा वादा जिसमें प्यार के साथ साथ भरोसा भी है और साथ निभाने की चाह भी, कि चाहे हालात कैसे भी हों, किसी भी हाल में अपने के चेहरे की रोशनी को कम नहीं होने देंगे। ऐसा ही एक नगमा है 1972 में आई फिल्म

से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। गीत लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है एसटी बर्मन साहब का।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:00।

31 मिनट और 28 सेकंड। महफिल सजिए आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। रात के इस खामोश पहर में हम और आप मिलकर चल रहे हैं इस बेहद खूबसूरत सफर पर। कुछ लोग हैं जो हमें पढ़ते हुए सुन रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमें सफ़र करते हुए सुन रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमें अपना काम करते हुए सुन रहे हैं, और कुछ हैं ऐसे जो किसी को याद करते हुए सुन रहे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी याद खुद ब खुद दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। कभी कोई खुशबू, कभी कोई पुराना रास्ता और कभी कोई गीत हमें उन खूबसूरत लम्हों तक वापस ले जाता है। कहते हैं मोहब्बत में सिर्फ किसी का साथ होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी किसी की याद भी दिल को रोशन रखने के लिए काफ़ी होती है। और जब दिल में किसी की याद बस जाए तो लगता है जैसे फिजा का हर रंग हर पत्ता उसी का जिक्र कर रहा हो। जैसे अगला ये नगमा, और ये नगमा है 1972 में आई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म एक नज़र से, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। तो आज रात अपनी कुछ पुरानी यादों को मायूसी से नहीं, मुस्कुरा कर याद कीजिए, क्योंकि हर गुजरा हुआ लम्हा एक सबक है और हर आने वाला पल एक नया मौका। और याद रखिए, दिल में मोहब्बत, ज़वा पर शुक्रिया और आने वाले कल के लिए उम्मीद, यही जिंदगी की असल खूबसूरती है। तभी तो ऐसे नगमे बनते हैं।

पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। यकीनन हर चीज में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, और ये जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ये जिंदगी का सफर भी कुछ ऐसा ही है। ये जिंदगी का सफर भी कभी कभी अजीब सा लगता है। कभी हम किसी रास्ते पर चलते हुए सोचते हैं कि ये हमारी मंजिल है, और फिर अचानक कोई मोड़ आ जाता है जो हमें एक बिल्कुल नई राह पर लेकर चला जाता है। कुछ मोड़ हमें किसी से मिलाते हैं, कुछ किसी से दूर कर देते हैं, और कुछ मोड़ हमें खुद से रूबरू करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ता बदल जाना हमेशा कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी वही नया रास्ता हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है। आज के इस महफिल में अगला बेहद खूबसूरत नगमा भी कुछ ऐसा ही है, जहां रास्ते अलग हो सकते हैं मगर यादें और एहसासात दिल में अपनी जगह बनाए रखते हैं। ऐसा ही एक नगमा है 1975 में आई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आंधी से। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने और संगीत है आरडी बर्मन साहब का। तो इस गीत के साथ आज अपने सफर को याद कीजिए, और अगर जिंदगी के किसी नए मोड़ पर खड़ी है तो घबराइए मत। हर मोड़ मंजिल से दूर नहीं करता, कुछ मोड़ हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो आइए पुरानी राहों को सलाम कीजिए, मगर नई राहों से अपनी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अक्सर अगले मोड़ के बाद ही शुरू होता है।

किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये नगमा था, बेहद खूबसूरत फिल्म फरार से, और ये फिल्म आई थी 1975 में। इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। रात के इस खामोश पहर में जब दुनिया थोड़ी थम सी जाती है, तब दिल की आवाज कुछ ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। ऐसे ही दिल की आवाज नगमों में बदलकर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके लिए। कभी आपने गौर किया है, दिन भर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात होते ही दिल चुपके से उन पुराने लम्हों की तरफ लौट जाता है, जहां शायद जिंदगी थोड़ी और आसान और खूबसूरत लगने लगती है। मुस्कुराहट थोड़ी सच्ची और खुशियां बिल्कुल बेफिक्र सी। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ तो देते हैं, मगर दिल उन्हें कभी अलविदा नहीं कहता। आज का ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है, उन्हीं पुरानी यादों को सहेजे हुए एक खूबसूरत तस्वीर की तरह है। फिल्म मौसम का ये नगमा 1975 में आई है फिल्म, जिसको लिखा है गुलजार साहब ने, और आवाजें हैं भूपेंद्र और हम सब की प्यारी लता जी की, संगीत मदन मोहन साहब का। तो आज रात कुछ पल के लिए अपने फिक्र किनारे रख दीजिए और उन लम्हों को याद कीजिए जिन्होंने आपको कभी बेवजह मुस्कुराना सिखाया था। बीते हुए कल को याद करना खूबसूरत है, मगर आने वाले

की उम्मीद छोड़ देना नहीं, उसे उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। जो सुकून कभी मिला था वैसा सुकून फिर मिल सकता है, शायद किसी नए लम्हे में, किसी नई राह पर, इस खूबसूरत गीत की तरह।

भूपेंद्र सिंह और लता जी की नई आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अरुणिमा से आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर भोर सुहानी ठीक 5:10 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार के उपचार का प्रबंध करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवाकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने तरनतारण क्षेत्र में 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षाकर्मियों के चेतावनी दिए

0: केंद्रों की स्थापना करना है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी है। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। जापान में एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound fly-Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान देने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं सर, और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी ऑफिसर कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest-growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, yesterday called on the Shipping Corporation of India to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark SCI's 65 years of operation, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy and trade security, particularly during the recent Strait of Hormuz crisis. In Punjab, Border Security Force, BSF,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। तो एक नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई जिंदगी को एक बार फिर खूबसूरत बनाने का एक नया मौका। कभी कभी हमें लगता है कि रास्ते बहुत मुश्किल है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन शायद जिंदगी का असली सबक यही है कि रास्ते आसान हों ये जरूरी नहीं, हमारा हौसला मजबूत जरूर होना चाहिए। आज की सुबह एक छोटी सी दुआ अपने दिल में जरूर रखिए कि हमारे अंदर इतनी रोशनी हो कि हम किसी के अंधेरे का सबब नहीं बल्कि उसकी उम्मीद बन सकें। हमारी जबान में मिठास हो, दिल में इंसानियत हो और मुश्किल वक्त में भी सब्र बना रहे। और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ याद आता है 1957 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म दो आंखें 12 हाथ का ये अमर गीत, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये गीत नहीं बल्कि हम सब के दिलों की ये आवाज है। वैसे क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उस ईश्वर, उस खुदा के नाम से सबसे पहले करते हैं और उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। इस गीत को अपनी आवाज दी लता जी ने, गीतकार हैं भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई साहब का। तो आइए इस सुबह कुछ पल ठहरते हैं, अपने दिल को सुकून देते हैं और याद करते हैं कि बेहतर इंसान बनने की कोशिश ही शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत इबादत है। तो दोस्तों, सुबह की इस पहली रोशनी के साथ इस

को याद रखिए कि हर नया दिन हमें बदलने का नहीं, खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। मुस्कुराइए, शुक्रगुजार रहिए उस ईश्वर का, उस खुदा का जिसने हमें इंसान बनाया जो सर्वश्रेष्ठ है।

मालिक तेरे बंदे हम, यकीनन हम तेरे बंदे हैं। ये संसार भी तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, और तुम्हारा ही दिया हुआ ये सब कुछ है, ये सांसें, ये जिंदगी, ये जिस्म, ये जान। सुबह की पहली किरण के साथ एक खूबसूरत ख्याल आपके दिल तक पहुंचता है। हमारी पहचान सिर्फ हमारे नाम से नहीं, हमारी पहचान इस बात से भी होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, फिर क्यों न इसे नफरत से नहीं मोहब्बत से जिया जाए। शिकायतें शिकायतों से नहीं शुक्रिया से जिया जाए, और फासलों से नहीं भाईचारे से जिया जाए। अगर हम में ये तमाम चीजें हैं तो हम एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। सोचिए, अगर हम किसी अनजान इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, किसी परेशान शख्स की बात सुन सकें, किसी जरूरतमंद का हाथ थाम सकें, तो शायद यही इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े काम जरूरी नहीं होते, कभी कभी एक अच्छा लफ्ज, एक छोटी सी मदद और दिल से निकली हुई दुआ भी काफी होती है।

तो आज की सुबह एक छोटा सा वादा अपने आप से कीजिए, जहां मुमकिन हो वहां मोहब्बत बांटेंगे, जहां जरूरत हो वहां मदद करेंगे, और जहां दिलों के बीच फासला हो वहां भाईचारे का पुल बनाएंगे, क्योंकि आखिर में हम सब की खुशी, हमारी इंसानियत और हमारा सुकून एक दूसरे से ही तो है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही हो हमारी सुबह की दुआ और यही हो हमारी जिंदगी की खूबसूरत पहचान। आपका दिन खुशियों से भरा हो, दिल में सुकून हो और हर मुलाकात में इंसानियत की खुशबू हो, इस नगमे की तरह।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:21 और 49 सेकंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, सुबह की ये पहली किरण हमें हर रोज एक खूबसूरत बात याद दिलाती है। वक्त कभी ठहरता नहीं, पल आता है, मुस्कुराता है और फिर खामोशी से आगे बढ़ता चला जाता है। कभी हम बीते हुए कल की फिक्र में उलझे रहते हैं और कभी आने वाले कल की चिंता में आज को ही भूल जाते हैं। लेकिन जिंदगी तो इसी आज का नाम है ना। जो पल अभी आपके पास है उसे पूरे दिल से जी लीजिए। किसी अपने से प्यार से बात कर लीजिए, किसी रूठे हुए को मना भी लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आइए, क्योंकि शायद यही छोटा सा लम्हा कल आपकी सबसे खूबसूरत याद बन जाए। और अगर बीता हुआ कल आपको परेशान करता है तो उसे एक सबक की तरह देखिए और आने वाले कल से डरने के बजाय उस पर

उम्मीद रखिए, क्योंकि हर सुबह अपने आप में एक नई उम्मीद लेकर आता है। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कुछ बेहतर करने का, कुछ नया सीखने का, और सबसे बढ़कर खुद को थोड़ा और बेहतर इंसान बनाने का। इसी खूबसूरत फलसफे को बेहद सादगी और गहराई से बयां करता है फिल्म गोलमाल का ये सदाबहार बेहद खूबसूरत नगमा आने वाला पर जाने वाला है। किशोर कुमार साहब की ये बेहद खूबसूरत आवाज़, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और संगीत है आर डी बर्मन साहब का,

जी हाँ दोस्तों, आने वाला पल जाने वाला है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया है इस नकमे में। हर पल इंसान को ये मान के चलना चाहिए कि ये पल हमारा आखिरी पल है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और तभी हम अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ पाएंगे। नई सुबह अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आती है। जिंदगी में अगर कभी अंधेरा लगे तो मायूस मत होइए, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को चुनौती देने के लिए काफी होती है। किसी के रास्ते में रोशनी बनना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी उदास दिल को हौसला देना, शायद यही इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन बदलाव हमेशा बड़े कामों से नहीं बल्कि आपकी छोटी छोटी सोच, दूसरों की मदद और किसी को मुसीबत में काम आने से होती है। कभी एक अच्छा लफ्ज, एक छोटी सी मदद और किसी के लिए दिल से निकली हुई दुआ भी बहुत कुछ बदल देती है। आज की सुबह एक छोटा सा इरादा कीजिए, जहां अंधेरा मिले वहां उजाला बांटेंगे, जहां निराश मिले वहां उम्मीद जगाएंगे। इसी खूबसूरत संदेश को समेटे हुए है ये बेहद खूबसूरत नगमा। मुकेश साहब की बेहद खूबसूरत आवाज में ये नगमा है, जिसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का।